सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 38 सेकेंड हो रहे हैं। हमारी प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, संगीत और भक्ति का ऐसा संगम जहां शब्द सीधे हृदय से निकलते हैं और प्रभु के चरणों तक पहुंचते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब मन किसी सहारे की तलाश करता है, तब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आराध्य को पुकारते हैं। आज हम भी इसी विश्वास के साथ स्मरण करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का, जो भक्ति, शक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं।

हनुमान जी के चरणों में की गई हमारी विनती के बाद अब समय है उस परम सत्ता का स्मरण करने का जो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो उसी प्रभु की कृपा का प्रसाद है। वही हमारे पालनहार हैं, वही हमारे दाता हैं और वही हमारे जीवन का आधार हैं। आइए अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का गुणगान करें।

श्रोताओं, ईश्वर एक ही है, बस उन्हें पुकारने के हमारे तरीके अलग अलग हैं। कभी हम उन्हें राम कहते हैं, कभी गोविंद, कभी अल्लाह तो कभी वाहेगुरु। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन भाव एक ही है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनेंगे एक सुंदर और भावपूर्ण शब्द।

गुरु की पावन वाणी के बाद अब हम उस मुकद्दस शहर की ओर अपने ख्यालों को ले चलते हैं जहां हर आशिक रसूल का दिल जाने की तमन्ना रखता है, मदीना शरीफ। मोहब्बत जब दिल में हो तो दूरी मायने नहीं रखती। दुआ यही होती है कि जिंदगी में एक बार मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब हो और कुछ वक्त वहां गुजारने का सौभाग्य मिले। इसी पाकीज़ा एहसास और मोहब्बत रसूल के साथ पेश है एक खूबसूरत नात।

मदीने की पाक फिजाओं में मोहब्बत और श्रद्धा का एहसास लेने के बाद अब हम पुनः अपनी भक्ति की इस सुंदर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति के इस मंच पर हमने अलग अलग रूपों में उसी परम शक्ति का स्मरण किया। अब बारी है संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने की। श्रोताओं, कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भय और संकट टिक नहीं सकते। तो आइए कार्यक्रम वंदना का समापन करें हनुमान जी की इस आरती के साथ।

हनुमान जी की इसी आरती के साथ वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति, और संगीत सतीश भाटिया का है।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध लिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: सभी मेरे कार्यों को देखें, महत्व दे, मेरी बातों को मूल्य दिया जाए। सब मेरी बात को समझते क्यों नहीं, सभी मुझे अवश्य जान जाएंगे। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। यह सोच, ये दिखावा, ये दमित अहंकार आज हम में से बहुतों पर हावी है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये दोहरा व्यक्तित्व पारदर्शिता से कोसों दूर है। इसी छद्मवेशी प्रवृत्ति के चलते वो प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान तथा सफलता की छाया को पकड़ने की कोशिश करता है। प्रशंसा की भूख ही हमें आत्म प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में प्रदर्शन एक कला है, लेकिन स्वार्थवश उसे हित अहित की परवाह नहीं होती। परिश्रम के बिना प्रशंसा प्राप्ति की पिपासा रहती है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने हेतु तमाम ऊटपटांग हथकंडे अपनाने लगते हैं। योग्यता के बिना प्रशंसा अधिक समय तक नहीं टिक सकती, बल्कि कुछ हालातों में तो सम्मान के स्थान पर अपयश ही हाथ लगता है। उसका समय, संकल्प और सामर्थ्य यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या ही अच्छा हो कि लोग प्रशंसा पाने के लिए लोक सेवा की ओर मुड़ा जाए, झूठे अहम का लबादा उतारकर विनम्रता को जीवन में स्थान दिया जाए। प्रशंसा की तृष्णा अनुचित नहीं, पर प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना के साथ उचित प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि प्रशंसा या पारितोषिक न भी मिले, पर अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। प्रशंसनीय कार्य करें, न कि गले में ढोल बांधकर अपनी ही महिमा गाने लगें और तब भी तृप्ति ना हो तो दूसरों की ढोल की पोल खोलते रहें। अपने को साफ सुथरा समझना और दूसरों को बुराइयों का पिटारा, ये परचिंतन पतन की जड़ है। जैसा चित्र मन में होगा वैसा ही चरित्र निर्मित होगा। हम स्वयं से बात करें कि क्या हमारा लक्ष्य यही है, इससे क्या प्राप्त होगा। खाली मन शैतान का घर होता है। तभी तो निठल्ला व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करने लगता है, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए उसके पास नवीनतम लेखा जोखा रहता है और सतत सक्रिय रहता है उनका सूचना तंत्र। दोनों आंखों और कानों के साथ मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल जाए, जिससे किसी का भंडा फोड़ करके सबकी वाहवाही लूट सकें। यही नहीं, विडंबना तो ये है कि जरूरी गैर जरूरी दृश्यों, क्रियाकलापों और दूसरों की दिनचर्या को कैमरे में कैद करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना आज सर चढ़कर बोल रहा है। ये प्रवृत्ति सर्वथा आत्मघाती है। ये दलील देना कि ये हमारा व्यवसाय ही है लोगों के गुण दोष जांचना और परखना, ये मात्र प्रदर्शन और उसका रसास्वादन ही होगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार के कीचड़ को मात्र कुरेदने और फैला देने से दुर्गंध ही फैलती है। अवगुण ग्राही प्रवृत्ति जैसा परिवर्तन करने का मनोबल कभी नहीं जुटाया जा सकता। सबसे पहले अपने मन की इस शुद्ध प्रवृत्ति को समझकर स्वयं से वार्तालाप करना आज आवश्यक बन पड़ा है। मेरे मन, अब तो इधर उधर भागना, इधर उधर की हांकना छोड़ दे। बहुत गई, थोड़ी रही, कब तक यूं ही सर्वनाश का खेल खेलता रहेगा। हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ियों के पीछे क्या यूं ही गंवाता रहेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता शर्मा का काव्य पाठ।
2: सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ, कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ मैं जमी पर हर कदम के साथ अपनी एक पहचान रखती हूँ कि दिल में जज्बा और होठों पर तमन्ना रखती हूँ। मैं जमी पर हर कदम के साथ अपनी एक पहचान रखती हूँ और यूं मुमकिन तो नहीं सब कुछ पा लेना जग में, यूं मुमकिन तो नहीं सब कुछ पा लेना जग में। मैं अपनी हर चाह को माँ भारती के नाम लिखती हूँ, मैं अपनी हर चाह को माँ भारती के नाम लिखती हूँ। एक छोटी सी रचना है मेरी धरती माता के लिए, उन्हीं के सम्मान में मैंने एक रचना लिखी है कि सहती है भार सारी दुनिया का, सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से उसके। शक्ति है सहन करने की उसमें अपार, कि शक्ति है सहन करने की उसमें अपार, इसीलिए कहलाती है ये धरती माँ सारे जग में, इसीलिए कहलाती है ये धरती माँ सारे जग में। कभी हंसती है तो कभी रोती भी है ये, कभी हंसती है तो कभी रोती भी है ये, देखकर दुनिया का ये अजीब दस्तूर, छाया है ये कैसी कलयुग की जिसमें हो गए अपने ही अपनों से दूर। सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से इसके। कि फर्क है विचार विचारों का, फर्क है विचार विचारों का, मानते हैं कुछ लोग यहाँ माँ है हमारी प्रथम धरती, कि अच्छे हों या बुरे हों इसके बच्चे, फिर भी सम्मान देती है अपने आंचल में सबको भरती, फिर भी संभाल लेती है सबको अपने आंचल में भरती। सहती है भार सारी दुनिया का, फिर भी उफ भी नहीं निकलती मुख से इसके। कि कहते हैं नहीं डगमगाते कभी इसके कदम, करती है सब कुछ निस्वार्थ वो, कि नहीं डगमगाते कभी इसके कदम, करती है सब कुछ निस्वार्थ वो। तभी तो उतारते हैं सरहद पर पड़े सैनिक भाई कर्ज, उतारते हैं सभी मिलकर उनके। कि यदि बन जाए इंसान भी सहनशील धरती माँ के जैसा, तो जग से हिंसा खत्म हो जाएगी, हर इंसान सोचेगा खुद से पहले यदि सबके बारे में, तो ये दुनिया स्वर्ग से कम कहाँ रह जाएगी। कि हर

0: इंसान सोचेगा खुद से पहले यदि सबके बारे में, तो ये दुनिया स्वर्ग से कम कहाँ रह जाएगी कि जन्म देने वाली माँ संभालती है केवल अपने ही अंश को, कि जन्म देने वाली माँ संभालती है केवल अपने ही अंश को। लेकिन नियत तो पहचानो धरती माँ की तुम ध्यान से, हो चाहे किसी भी नीति के इंसान का भार इसके ऊपर, फिर भी ये उन्नति से उन्नत करती है हर इंसान के वंश को, फिर भी ये उन्नति से उन्नत करती है हर इंसान के वंश को। और एक रचना है मेरी कि आजकल तो सामाजिकता है, उसमें माता पिता की उम्मीद कहीं खो गई है, तो एक माता पिता की क्या उम्मीद होती है अपने बच्चों से, और बच्चों का क्या फर्ज होता है उसके लिए। संवारा था बचपन मेरा बाबुल ने बड़े चाव से, कि संवारा था बचपन मेरा बाबुल ने बड़े चाव से, मेरी हर छोटी बड़ी यादों को रखा था उन्होंने तो संभाल कर बड़े भाव से। अब आई है बारी मेरी देने को तोहफे माता पिता को, कि अब आई है बारी मेरी देने को तोहफे माता पिता को, करूंगी कोशिश मैं भी पूरी उनके देखे सपने पूरा करने को। अब सोच लिया है हमने भी जग में खुद को साबित करने को, अब घर से निकलेंगे हम भी दुनिया में अपनी पहचान बनाने को। अब ना तुमको अफसोस होगा माँ खुद पर बेटी पैदा करने को, मैं भी करूंगी नाम रोशन तेरा करके मेहनत सक्षम बनने को। अब बेटों की भांति मैं भी उड़कर आकाश को छू लूंगी, करूंगी कर्तव्य मैं भी अब ऐसे सबकी तारीफें बटोर लूंगी, कि कदम से कदम मिलाकर चलना है अब ना ये उम्मीद छोड़ूंगी। होगा जिस दिन उस गर्व मेरे माता पिता को मुझ पर, होगा जिस दिन गर्व मेरे माता पिता को मुझ पर, उस दिन मैं खुद को काबिल समझूंगी। क्या अब तो हक है मुझे जग में सम्मान पाने का, कि क्या अब तो हक है मुझे जग में सम्मान पाने का, लेकर मन में नेक इरादे मैं इस जग रूपी दर्पण से पूछूंगी, कि लेकर मन में नेक इरादे मैं इस जग रूपी दर्पण से पूछूंगी। संवारा था बचपन मेरा तो बाबुल ने बड़े चाव से, मेरी हर छोटी बड़ी यादों को रखा था उन्होंने तो संभाल कर बड़े भाव से। और अब जीवन में पिता का महत्व, कि करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा, कि दिखता है दुख माँ का तो सब कुछ पर त्याग पिता का नहीं देखा, कि करते हैं गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा, दिखता है दुख माँ का तो सबको पर त्याग पिता का नहीं देखा, कि माना हमने करती बहुत कुछ माँ, कि माना हमने करती बहुत कुछ माँ पर आराम पिता भी नहीं करता, कि करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। माँ और बच्चों की जरूरत का क्योंकि भार पिता के कांधे पर, माँ और बच्चों की जरूरत का है भार पिता के कांधे पर, पिता अपनी जरूरत का पर भार रखे किसके कांधे पर। बच्चे रोए माँ के सामने, कि बच्चे रोए माँ के सामने, और माँ भी रो देती पिता के सामने, और पिता को सोचना सबसे ज्यादा फिर भी वो सदा मुस्कुराए, कि करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। करने को परिवार की जरूरतें पूरी, किसी भी रास्ते को पिता अपनाए, कि करने को परिवार की जरूरतें पूरी, किसी भी रास्ते को पिता अपनाए। बच्चों के जीवन में अधिकार जितना है माँ का, पर बच्चों और माँ पर उतना ही अधिकार है पिता का। करते हैं गुणगान सब माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा। हो जितना भी भार जीवन में, पर पिता है सब सह लेता, पर हो जितना भी भार जीवन में पिता पर, पिता सब सह लेता, पर नाजायज है ये बात जब परवरिश में बच्चों की पिता का नाम कोई नहीं लेता। माता पिता हैं वो गाड़ी के दो पहिए, माता पिता हैं गाड़ी के दो पहिए, जिनकी सवारी करके ही बड़े होते हैं सब बच्चे। करो माता के साथ पिता का आदर और सत्कार, वरना दुनिया के सब तीर्थ करने हैं बेकार। करते हैं सब गुणगान माँ के प्यार का, पिता को कर दिया अनदेखा, दिखता है दुख माँ का तो सबको पर त्याग पिता का नहीं देखा। और इसी श्रेणी में एक रचना है, जिसको नहीं मिलती है उसके लिए कीमत क्या होती है रोटी की, कि कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन, कि कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन भूखे पेट चलते चलते कट गए जब दो दिन, कि अनजान था सफर मेरा और अनजान थी मंजिल मेरी, अनजान था सफर मेरा अनजान थी मंजिल मेरी, कदम डगमगा रहे भूखे चला न जाए अब। फिर रुक गए कदम मेरे, तलाश थी अब तो केवल रोटी की, सब जरूरत से ऊपर जरूरत केवल रोटी की। कभी समय था ऐसा मौज रहती थी सब फल फ्रूट की, बादाम छुआरे काजू के आगे कीमत ना समझी थी हमने कभी रोटी की। कि समय का बदला फेर अब आ गए कहाँ से कहाँ हम, कि समय का बदला फेर अब कहाँ से कहाँ आ गए हम, कहाँ ना चलते थे एक कदम भी पैदल और अब चले जाते हैं मीलों भी हम। कीमत समझ आई हमें सूखी रोटी की उस दिन, कि भूखे पेट चलते चलते कट गए जब दो दिन, अब आ जाए गरीबी तो बदल जाते हैं सब अपने, जब आ जाए गरीबी तो बदल जाते हैं सब अपने, गरीबी तो एक श्राप है जिसमें बिखर जाते हैं सब बुने सपने, कि आ जाती है गरीबी जब तो बिखर जाते हैं सब बुने सपने, गरीबी की कोई जात न पूछो इसकी कोई औकात न पूछो, कि गरीबी की कोई जात न पूछो इसकी कोई औकात न पूछो, सहारा लगता है एक एक टुकड़े का पर रोटी देने वाले का कभी ईमान मत पूछो। कि भूख ने निचोड़ दिया शरीर के हर हिस्से को, भूख ने निचोड़ दिया शरीर के हर हिस्से को, रोटी कमाने के लिए चलना पड़ता है लेकिन हाथ पैरों को, अमीरी के साथ साथ जरूरी है एहसास गरीबी का।
1: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संगीता शर्मा का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार सुनवाए जाएंगे।
2: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यैः शंघाई सहयोग संघटनस्य नेतृभिः सह ह्यः सायं किर्गिस्तानस्य राजधान्यां बिश्केक इत्यत्र आयोजिते षष्ठे वर्ल्ड नॉमेड गेम्स इत्यस्य आधिकारिकोद्घाटने भागं गृहीतवान्। अयं कार्यक्रमः यायावर सभ्यतानां समृद्ध क्रीडा परंपराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, आर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जल प्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जलशक्ति मन्त्रालयेन विभागीय शिखर सम्मेलनम् आहूतम्। दिनद्वयं यावत् प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्यां विविध राज्यानाम् अधिकारिणः सहभागितां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं एषः मञ्चः राष्ट्रिय जलनीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारंभो विधीयते। सितंबर मासस्य पञ्चदश दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 7.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यम् उद्देश्यं पर्यावरण संकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन मन्त्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां ईषमः अंडर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन नगरे सीरिया देशं 1-0 इति अंकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
3: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुटीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमेरिका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है जिगर के सामान्य रोग और उपचार।
5: जिगर जो है एक शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। जिगर को इंग्लिश में हम लिवर कहते हैं और ये जो लिवर होता है ये पेट का एक अंग है जो सीधी तरफ होता है और इसका सबसे जो काम है वो है कि गंदे खून की सफाई करना, शरीर की पाचन क्रिया को बढ़ाना और इसके जो रोग होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। लिवर की जो बीमारियां होती हैं, जो अक्यूट कंडीशन होती हैं, उनको हम हेपेटाइटिस कहते हैं और कुछ लोगों में जब लिवर सुकड़ जाता है तो उसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर की सूजन आ जाना। इसके कई कारण होते हैं जिसमें सबसे मुख्यतः जो कॉमन कारण हम देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो होता है इन्फेक्शन और उसमें भी कॉमन कारण है वायरसेस, जैसे हेपेटाइटिस बी का आपने नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस सी और वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। फिर कुछ दवाइयों के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है, खासकर टीबी की दवाओं के कारण और दर्द निवारक गोलियों के कारण। तीसरा जो जरूरी कारण हम देखते हैं वो है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। देखिए, 2 प्रकार से संक्रमण हो सकता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो होता है खून के आदान प्रदान से और वो आदान प्रदान किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे सुइयों के द्वारा, खून के संपर्क से, ऑपरेशन के द्वारा। जो औजार हैं उनकी सफाई सही से ना की जाए तो जो मरीज जिसका इन्फेक्शन था उसका खून अगर लगा रह जाए तो वो दूसरे मरीज में संक्रमण हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी शारीरिक संबंधों से भी फैल सकता है। जहां तक हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की बात है वो खराब पानी के संक्रमण से हो सकता है। देखिये, लिवर जो जिगर रोग है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम देखने को मिलता है वो है जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं पीलिया। ये एक कहना गलत होगा कि पीलिया अपने आप में कोई बीमारी है। पीलिया लिवर की बीमारी का एक सिम्टम है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी के मरीजों में जो एक महत्वपूर्ण जो सिम्टम आता है वो होता है पीलिया। उससे पहले उन पेशेंट्स को बुखार हो सकता है, खांसी, जुखाम, जोड़ों में दर्द, उसके बाद पीलिया का आगमन हो जाता है शरीर में। पीलिया का पता कैसे चलेगा? कि आंखें पीली हो जाएंगी, पेशाब का रंग गाढ़ा पीला आने लगेगा, पूरा शरीर पीला पड़ सकता है। उसके अलावा फिर और जो सिम्टम होते हैं वो होता है कि भूख ना लगना, उल्टियां होना, पेट में दर्द होना। देखिए, एक तो खून का टेस्ट होता है जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पीलिया है तो उसकी मात्रा कितनी है। फिर कुछ लिवर एंजाइम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि उस पीलिया की सीवियरिटी कितनी है। तीसरी चीज होती है कि जैसे मैंने बताया कि ये कई प्रकार के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो इनके स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि ये इन्फेक्शन है। कुछ मरीजों में जब लिवर पे चोट काफी लंबे समय तक चलती रहती है, जैसे शराब के अत्याधिक सेवन, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जिसका निवारण ना किया हुआ हो, जिसका इलाज ना किया हो, तो समय के साथ वो लिवर सुकड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। इस सिरोसिस के होने से कई और कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण होता है पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी हो जाना, पीलिया हो जाना, बेहोशी की स्थिति में चले जाना और गुर्दे फेल हो जाना।
6: तो इसके लक्षण और उपचार क्या हो सकते हैं डॉक्टर?
5: देखिए, सबसे जरूरी है बचाव। अगर बचाव किया जा सके, जैसे शराब का अत्याधिक सेवन ना किया जाए, शराब को जितना कम से कम सेवन हो सके उतना अच्छा है, जो नहीं पीते हैं वो ना शुरू करें, जो बहुत ज्यादा पीते हैं वो कम कर लें। और बचाव के बाद अगर एक बार बीमारी हो गई है तो हमें ये पता करना होता है कि इसका कारण क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो उसका फिर अलग दवाइयां और टेस्ट किए जाते हैं जिससे वो निवारण किया जा सके। लिवर की जो एक इंजरी होने के बाद रीजेनरेशन की कैपेसिटी है, मतलब उसको वापस नॉर्मल होने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे एक व्यक्ति जिसको शराब के कारण लिवर डैमेज हुआ है, तो अगर हम उसको एडवाइस करें कि वो शराब का सेवन बंद कर दे, तो काफी मरीजों में हमने ये देखा है कि 6 महीने, 3 से 6 महीने बाद लिवर के फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये जो लिवर जो है, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो जितने भी पेट से खून जो है वो लिवर के रास्ते फिर पूरे शरीर में जाता है। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के कीटाणु वगैरह भी होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो लिवर का काम ये होता है कि वो एक फिल्टर की तरह काम करता है और वो उन सब चीजों को अपने शरीर से साफ कर देता है। फिर वो जो चीजें हैं वो या तो पित्त के सहारे या मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकल जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जा रही थी जिगर के सामान्य रोग और उपचार के बारे में। आकाशवाणी का यह नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है खेती की बातें।
7: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और लाभ भी कमाते हैं। अगर इस समय की बात करें तो बरसात का समय चल रहा है और बहुत सारी फसलें हमारे खेतों में खड़ी हैं, तो सितंबर माह का पहला जो पखवाड़ा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है इस पखवाड़े हमारे किसान भाई क्या करें। किसान भाइयों, सितंबर माह का प्रथम पखवाड़ा चल रहा है और ये खरीफ फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय वर्षा की स्थिति, तापमान और खेत में नमी के अनुसार फसलों की देखभाल करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, अगर इस समय की बात करें तो धान की फसल हमारे खेतों में खड़ी है और धान की फसल की देखभाल हमारे किसान भाइयों को करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों सितंबर के प्रथम पखवाड़े में धान की फसल में बालियां निकलने और फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है। खेत में आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखें। तेज हवा या अधिक वर्षा से भैया फसल गिरने की आशंका रहती है, इसके लिए भैया खेत में जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखें। भैया इस समय एक चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारी फसलों में जो बढ़वार की स्थिति होती है तो रोग और कीट लगते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि भैया इस समय देखो धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक और रोगों की नियमित हमें निगरानी करनी है। अगर भैया हमें कोई कीट या रोग की समस्या दिखाई देती है तो हमारे किसान भाई कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उसका उचित नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसान भैया बात करें मक्का की, तो भैया ये समय मक्का के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें भैया खेत में जलभराव ना होने दें, पौधों में भैया तना छेदक या भैया फॉल अर्मी बर्म जैसे कीटों की निगरानी करें। अगर हमारे किसान भाई के खेत में खरपतवार अधिक हो तो उन्हें नियंत्रित करें और उसकी निराई गुड़ाई जरूर करें। किसान भाइयों, ये कपास की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पखवाड़ा है। किसान भाइयों, कपास में इस समय फूल और टिंडे बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। पौधे की नियमित निगरानी हमारे किसान भाइयों को करनी है, जैसे भैया गुलाबी सुंडी हो या अमेरिकन सुंडी, सफेद मक्खी और अन्य रस चूसक कीटों का हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। खेत में अत्यधिक नमी ना होने दें और भैया गिरे हुए पत्तों को और संक्रमित पौधों के अवशेषों को खेत से बाहर निकाल दें। और भैया इस महीने का जो प्रथम पखवाड़ा है गन्ने की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने में सितंबर के दौरान अच्छी बढ़वार होती है। भैया खेत में अगर पानी जमा हो तो भैया उसकी निकासी कर दें और भैया गन्ने की पत्तियों पर लगने वाले रोग तथा तना भेदक जैसे कीटों की निगरानी हमें करनी है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। इस समय भैया देखो जो अरहर, उड़द और मूंग जैसी दलहनी फसलों में कीट और रोगों की समस्या पैदा होती है, तो भैया उसके लिए हमें निगरानी करनी है। और भैया जहां अगर हमारे किसान भाइयों को लगता है कि इसमें खेतों में खरपतवार हो रहे हैं तो उसका भी नियंत्रण हमारे किसान भाई निराई गुड़ाई के माध्यम से कर सकते हैं या रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। मगर रासायनिक दवाओं का उपयोग करने से पहले हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह जरूर ले। किसान भाइयों, सितंबर माह का प्रथम पखवाड़ा सब्जियों की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर के प्रथम पखवाड़े में किसान मूली, सलजम, पालक, धनिया, मेथी इन सब की बुआई की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि भैया देखो आने वाला जो समय है वो सर्दियों का है। भैया सब्जियों के लिए खेत की अच्छे से तैयारी हमारे किसान भाइयों करनी है। सड़ी गली जैविक खाद या भैया कंपोस्ट खाद अपने खेतों में डालनी है। किसान भाइयों, ये महीना खरपतवार नियंत्रण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ फसलों में वर्षा के कारण खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं और खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए समय पर निराई गुड़ाई करें। जिन किसान भाइयों ने पशु पाल रखे हैं उनके लिए भी महीना बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, इस मौसम में पशुओं के रहने के स्थान को साफ और सूखा रखें। वर्षा के पानी को भैया पशुशाला में जमा न होने दें और भैया पशुओं को स्वच्छ पानी और भैया संतुलित आहार दें। और भैया हरे चारे के साथ हमारे किसान भाई को सूखा चारा और खरी मिश्रण भी अपने पशुओं को देना है। और भैया पशुओं में बीमारी के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो भैया हमें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना है और भैया उसकी सलाह लेकर उसका उपचार करना है। और भैया अपने पशुओं का समय समय पर टीकाकरण भी कराना जरूरी है। सितंबर माह का प्रथम पखवाड़ा जल और मिट्टी संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खेत से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था हमें भैया करनी है। भैया मेड़बंदी और जल निकासी की व्यवस्था हम मजबूत करनी है। उसके साथ भैया खेत की मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भैया हम उचित उपाय भी करने हैं। भैया जहाँ तक संभव हो सके तो भैया इस जो वर्षा का जल वो भैया तालाब में या झीलों में हमें संरक्षित करना है, जिससे आने वाले भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो भैया कुल मिलाकर बात यूँ निकल आती है कि सितंबर माह का जो प्रथम पखवाड़ा वो खरीफ फसलों की सुरक्षा और रबी फसलों की तैयारी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि हमारे किसान भाई फसलों की नियमित निगरानी करें, खरपतवार और कीट रोगों का समय पर नियंत्रित करें और भैया जल भराव से बचाव करें और रबी की बुआई के लिए भैया बीज, खाद और खेत की तैयारी समय से शुरू करें। भैया इससे एक तो फसल की लागत जो कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा और हमारे किसान भाई को बेहतर आय भी प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण का राज्य स्तरीय प्रसारण, जिसमें आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी वाराणसी की। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर, जिसके प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम जिले की हलचल का समय रहेगा सुबह 9:15, जिसमें आज एटा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल सुनवाई जाएंगी। श्रोताओं, ये तीनों कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा द्वारा संचालित कवि गोष्ठी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात्रि 9:30 पर। गोष्ठी में प्रतिभागी होंगे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और नरेंद्र वर्मा। आज दोपहर 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में आज श्रीमती मनु श्वेता काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय अभिनीत फिल्मों के गीत। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 2:30। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में आज निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन हेतु मुख्य शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी देंगे डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक हैं BEDF मेरठ में। आपसे बातचीत करेंगे सुवेंद्र सिंह। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:31। इस कार्यक्रम में आज हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार के बारे में चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर

0: अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक मजबूत समृद्ध और विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत को चिप निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50,000-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50,000-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
2: निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद कल नई दिल्ली में

0: मसौदा सूची को जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। कौशाम्बी के पुरामफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने बताया कि घायलों के उपचार, राहत और बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कल बहराइच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड से वाराणसी सिटी विशेष रेलगाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों की आवाजाही अधिक आसान होगी और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई।
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सबके साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे, उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है। उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक रिपोर्ट।
3: जिले में 24 बार चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से जौनपुर और चंदौली में कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक संकट के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की पहली तिमाही में 7.8% की दर्ज हुई वृद्धि। पिछले वर्ष इसी अवधि में ये वृद्धि 6.9% की गई थी दर्ज। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा नए रेलखंड और रेल कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र के विकास को मिलेगी मदद। और प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
5: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
6: ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:31 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार साथियों, सुबह की इस खूबसूरत बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। मैं हूं आपका साथी नमित राज, और हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे परिवार की खुशियों से भी जुड़ी हैं। साथियों, आज बात शुरू करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय से, वो विषय है पोषण। आपने अक्सर सुना होगा अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, लेकिन क्या सिर्फ पेट भर लेना ही पर्याप्त है? नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसे चाहिए संतुलित और पौष्टिक आहार। क्योंकि जब शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते ना, तो धीरे धीरे इसका असर हमारी सेहत पर दिखाई देने लगता है। इसका एक बड़ा असर पड़ता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर। सोचिए, अगर हमारा शरीर अंदर से मजबूत है तो सामान्य संक्रमणों से लड़ने में वो बेहतर तरीके से सक्षम होगा। लेकिन अगर भोजन में ज़रूरी विटामिन, खनिज, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों की कमी है, तो शरीर की प्रतिरक्षा भी कमज़ोर पड़ सकती है। यानी ऐसी स्थिति में ये होगा कि हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, और जब कभी कोई हानिकारक संक्रमण हमें हमारा शरीर उसके संपर्क में आएगा, तो हमारा शरीर उससे अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो यही वजह कि खराब पोषण केवल बच्चों की समस्या नहीं है, बच्चे हों, किशोर हों, गर्भवती महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, या फिर हम हों या आप, हर उम्र में संतुलित भोजन जो है वो ज़रूरी है। और साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि पोषण को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, सिर्फ किसी एक सप्ताह तक सीमित नहीं रखना। हमारी थाली में दालें, अनाज, दूध या उसके विकल्प, हरी सब्जियां, मौसमी फल, पर्याप्त पानी और ज़रूरत के अनुसार प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। एक और छोटी सी बात कि पौष्टिक खाना हमेशा महंगा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे घरों में उपलब्ध दाल, चना, गुड़, मौसमी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली और स्थानीय अनाज भी पोषण के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। तो साथियों, आज से एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि पेट भरने के साथ साथ शरीर को हमें पोषण भी देना है, क्योंकि खराब पोषण प्रतिरक्षा में कमी जाहिर करता है। स्वस्थ शरीर ही हमें ज़िंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीने की ताकत भी देता है। श्रोताओं, तो इसी अच्छी सोच के साथ अब वक्त है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत का। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, और गीत के बाद फिर लौटेंगे कुछ ज़रूरी बातों के साथ।

0: श्रोताओं, उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। और गीत के बाद अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसका संबंध दुनिया के देशों के बीच संबंधों और शांति से है। आज है गुट निरपेक्ष दिवस। नाम थोड़ा गंभीर ज़रूर लगता है, लेकिन इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद दुनिया में अलग-अलग देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य गुट बन रहे थे। तब कुछ देशों ने ये रास्ता चुना कि वो किसी बड़े शक्ति गुट के साथ आंख मूंद कर नहीं चलेंगे। वो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही करेंगे। और इस सोच से जुड़ा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। भारत ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख नेताओं में शामिल भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टिटो की इसमें मुख्य भूमिका थी। इसकी औपचारिक शुरुआत 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। और गुटनिरपेक्षता का मतलब, देखिए, ये नहीं था कि किसी देश से दोस्ती हमें नहीं करनी, बल्कि इसका मूल विचार था अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना, शांति का समर्थन करना और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आज की दुनिया में भी जब अलग-अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय तनाव दिखाई देते हैं, तब संवाद, सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान की ज़रूरत और भी ज़्यादा महसूस होती है। तो साथियों, गुट निरपेक्ष दिवस हमें एक बात ज़रूर याद दिलाता है कि फैसले अपनी समझ और अपने हितों के आधार पर लेना और दुनिया में शांति और सहयोग को महत्व देना। रुकते हैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी संदेश के लिए और बाकी की बातें बाद में होंगी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का?
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनकी कलम ने आम आदमी की आवाज़ को बहुत मजबूती से शब्द दिए। बातों की शुरुआत करते हैं उनकी सबसे पॉपुलर रचना से कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है और बहुत ही पॉपुलर कविता है और लिखी है प्रसिद्ध कवि और गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने। आज 1 सितंबर है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि दुष्यंत कुमार को इतना ख़ास क्यों माना जाता है, तो जैसा कि उनकी कविता हमने आपको सुनाई, तो इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी लेखनी। उन्होंने कविता और गज़ल को सिर्फ प्रेम और भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने आसपास के समाज को देखा, आम आदमी की परेशानियों को महसूस किया और फिर अपनी रचनाओं में उन्हें आवाज दी। उनकी रचनाओं में व्यवस्था के प्रति सवाल हैं, समाज की बेचैनी है, उम्मीद है और बदलाव की चाहत भी है। यही कारण है कि उनकी गजलें आज भी पढ़ी और सुनी जाती हैं। दुष्यंत कुमार की भाषा की सबसे खास बात हमें ये लगती है कि वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हैं, उनकी बात सीधे दिल तक पहुँचती है। आप उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो लगता है ये तो हमारे आसपास की ही बात है। ये तो वही सवाल है जो हम कभी कभी अपने मन में पूछते हैं, और शायद यही किसी बड़े रचनाकार की पहचान भी होती है कि वो अपने समय की आवाज़ को शब्द दे दे और उसकी बात समय बीतने के बाद भी लोगों को अपनी लगे। दुष्यंत कुमार जी का साहित्य हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहता बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। उनकी एक और खूबसूरत कविता थी, बड़ी ही पॉपुलर कविता थी, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। लिखते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ ऐतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। तो आज उनके जन्मदिवस पर हम उन्हें याद करते हुए यही कहेंगे कि उनकी कलम ने हिंदी साहित्य को एक ऐसी आवाज़ दी जो आम आदमी की बेचैनी और उम्मीद दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। दुष्यंत कुमार जी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। और अब कार्यक्रम में आपको एक गीत सुनवाते हैं। ये एक ऐसा गीत है जिसमें दुष्यंत जी की कविता का प्रयोग भी हुआ है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है फिल्म हल्ला बोल से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद आइए कार्यक्रम सूरज के साथ साथ को कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर लेकर चलते हैं, जिसका नाम है तिथि विशेष। ये सेगमेंट बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है आज की तारीख के इतिहास के बारे में कि आज की तारीख क्यों खास है, साथ ही आज के समाचारों की सुर्खियां भी आपको सुनवाई जाती हैं। तो चलिए सेगमेंट तिथि विशेष को शुरू करते हैं 1 सितंबर के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के साथ। साथियों, 1 सितंबर 1947 में भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। इससे पहले तक भारत में अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय समय और रेलवे समय का इस्तेमाल किया जाता था। प्रमुख रूप से बॉम्बे टाइम, मद्रास टाइम और कलकत्ता टाइम जैसे समय प्रचलित थे। भारत के लिए एक मानक समय निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को आधार बनाया गया, जो प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। श्रोताओं, 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय देश की 245 निजी बीमा कंपनियों और भविष्य निधि कंपनियों का विलय करके इसे एक सरकारी निगम बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1997 में 1 सितंबर को ही साहित्यकार महाश्वेता देवी और पर्यावरणविद MC मेहता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। महाश्वेता देवी बांग्ला भाषा की साहित्यकार थीं, जिन्हें 1996 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने अपने लेखन कार्यों के साथ साथ स्त्री अधिकारों, दलितों और आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। वहीं दूसरी ओर MC मेहता भारत के लिए एक प्रसिद्ध जनहित वकील और पर्यावरणविद थे। उन्हें भारत में पर्यावरण न्याय का हरित योद्धा यानी ग्रीन एवेंजर भी कहा जाता है। साल 1574 में 1 सितंबर को ही सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का निधन हुआ था। गुरु अमरदास जी ने ही छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परंपरा को बढ़ावा दिया था। आज भी ये प्रथा देश के कोने कोने में विद्यमान है। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। 1 सितंबर को ही साल 1901 में जन्म हुआ था श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय का। वो एक जाने माने भूगोलवेत्ता थे। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के रहने वाले थे। 1878 में 1 सितंबर को ही एम्मा नट ने बोस्टन में दुनिया की पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम शुरू किया था। उन्हें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने नियुक्त किया था। शांत और विनम्र आवाज के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी। उनकी बहन स्टेला भी बाद में ऑपरेटर बनी। श्रोताओं, ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो 1 सितंबर के इतिहास में दर्ज हैं। अब जल्दी से कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों ने हरियाणवी गायक अंकित की हत्या करने वाले 2 शार्पशूटर्स की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की खबर को प्रमुखता से छापा है। मुठभेड़ में SOG के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अर्जेंटीना के महानतम फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने कैरियर में कुल 207 मैचों में अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार में 7.8% की तिमाही वृद्धि दर्ज। पहली तिमाही में भारत की सबसे तेज विकास दर खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। टैक्स से लेकर बैंक FD तक आज से होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव। LPG सिलेंडर, एडवांस टैक्स भुगतान, GST रिटर्न, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सितंबर में बदलेंगे कई वित्तीय नियम। आम लोगों की जेब पर होगा सीधा असर। और उत्तर प्रदेश में गन्ना ढुलाई वाहनों की होगी GPS ट्रैकिंग। गन्ना विभाग ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम। तो ये थी कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज के तिथि विशेष सेगमेंट में बस इतना ही। अब चलते हैं एक बार फिर से संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपको सूरज के साथ साथ कार्यक्रम का आज का अंक पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही फिर से होगी मुलाकात, नमित राज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
6: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
4: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
6: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
4: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
0: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
4: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
7: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
7: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
9: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
10: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
11: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
12: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
11: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
13: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
11: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital, Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in first quarter of current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
14: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with the Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, Ms. PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
6: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सेमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज, मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। नेपाल में इमदादी कारकुनों ने पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले कारकुनों को तलाश करने के लिए पहाड़ी हिस्से पर धमाका किया। और लियोनेल मेसी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किर्गिज़िस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। SCO की इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने दौरे के पहले दिन कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत की, महात्मा गांधी को खराज-ए-अकीदत पेश किया और दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा 6ठे वर्ल्ड नोमेड गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जनाब मोदी ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दो तरफा मीटिंग की। जनाब पुतिन के साथ बातचीत में जनाब मोदी ने मुसलसल जंग के बजाय जंग खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए आलमी तनाज़ात के सिफारती हल की हिमायत की।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: बातचीत के दौरान भारत और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा समेत दो तरफा तआवुन के अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इत्मीनान की बात है कि भारत और रूस के दरमियान तआवुन मुसलसल नई बुलंदियों तक पहुंचा है।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ईरान, जम्हूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी की। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किर्गिज़िस्तान के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन कल रूस, ईरान, जम्हूरिया किर्गिज और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें की। इन मीटिंगों में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शाम बिश्केक में दीगर SCO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 6ठे वर्ल्ड

0: राजनाथ सिंह का बयान। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं। नेपाल में तालीमी इदारों के 200 से ज्यादा तलबा लापता, हलाकतों की तादाद 900 से मुतजावज।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किर्गिजिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम SCO की सरबरा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.8% रही, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 7% रहने का अंदाजा लगाया था। अमरीका ने भारत को एक वलवला अंगेज मजबूत और मुस्तहकम मईशत वाला मुल्क करार दिया। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुहिदे के बारे में सालिसी से मुतालिक अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और लियोनेल मेसी ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह अर्जेंटीना की कौमी टीम के साथ 21 साल से जारी सफर भी खत्म हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का ये पहला गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में फिल्म धमाका से। संगीत जे कौशिक का था और शब्द रचना थी निदा फाजली की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको जल्द सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के सुर में फिल्म चंपा कली से। संगीत हेमंत कुमार का है और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

चंपा कली, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत हेमंत कुमार का था और शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार और अजीज नज़्म और साथियों की आवाज में फिल्म फकीरा से। गीत के बोल रविंद्र जैन ने लिखे हैं और संगीत भी रविंद्र जैन का ही है।

किशोर कुमार और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म फकीरा से ये गीत। रविंद्र जैन का संगीत था और शब्द रचना भी रविंद्र जैन की ही थी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गैम्बलर से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। नीरज के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है RD बर्मन ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म गैम्बलर के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में ज़िले की हलचल पेश की जाएंगी।

0: हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: महिला बंदियों को आत्मनिर्भर और रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की कार्यवाही शुरू कराने के निर्देश जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दिए हैं। DM और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन जी जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण करने जेल पहुंचे थे, जहां दोनों अधिकारियों ने बाल बंदी और महिला बंदी बैरक के साथ साथ पाकशाला का निरीक्षण किया और साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता समेत बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बाल बंदी बैरक में बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके अधिवक्ताओं की व्यवस्था की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। बरसात के मौसम को देखते हुए जेल परिसर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और मौसमी तथा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने चीनी की कीमतों और भंडारण की स्थिति पर प्रभावी निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि चीनी का अनावश्यक और अत्यधिक भंडारण नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यापारी को एक स्थान पर 30 दिन से ज्यादा अवधि के लिए चीनी का भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। एक ही परिसर में अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी चीनी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को अनिवार्य रूप से घोषित करनी होगी। स्टॉक घोषणा के बाद इसकी सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी को भी देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी अथवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश चारा नीति के तहत जिले के गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। प्रथम चरण में 10 गौ आश्रय स्थलों से जुड़ी चरागाह भूमि पर नेपियर घास की रोपाई कराई जा रही है। प्रत्येक चयनित गौ आश्रय स्थल की 0.2 हेक्टेयर चरागाह भूमि में नेपियर घास लगाई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक गौ आश्रय स्थल को 6000 नेपियर रूट्स स्टैम्प की निशुल्क आपूर्ति राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र बाबूगढ़

0: ये बहुत ही लाभदायक है किसान के लिए। सरकार ने गांव गांव प्रचार किया है तो मुझे पता लगा है, और बहुत सारे लोग लाभार्थी भी हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो सरकार का बहुत बहुत आभार।
1: जल जीवन मिशन के तहत खारे पानी और फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। जलेसर, सकीट और शीतलपुर विकासखंड के कुल 214 गांवों को नहर आधारित सतही जल स्रोत पेयजल योजना से जोड़ने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इससे करीब 4.5 लाख ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आवागमन को बेहतर बनाने और संकरी सड़कों से होने वाली परेशानी को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार दोनों मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और कम चौड़ाई के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
3: अंबेडकर नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की स्मृति में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का नेतृत्व विधायक धर्मराज निषाद, जिलाधिकारी सप्रिया एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने किया। मार्च के दौरान उपस्थित लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बलिदान को नमन किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व जनपद अम्बेडकर नगर में पूरे उत्साह उल्लास एवं राष्ट्रभक्त की भावना के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने एकलव्य स्टेडियम अकबरपुर में ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रध्वज को सलामी दी और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों एवं अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता हमें असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुई है। उनके आदर्शों एवं राष्ट्र सेवा की भावना को आत्मसात करना ही उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि है। जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ पूरा वातावरण देशभक्त एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महापुरुषों एवं राष्ट्रनायकों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों, संघर्ष एवं सेवा की भावना को नमन किया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का उत्सव नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने का भी संकल्प है। हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों के अनुरूप एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अंबेडकर नगर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। इस योजना में कुल 12 लाभार्थियों का चयन किया गया है। अंबेडकर नगर में हथकरघा बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के अंतर्गत 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों का चयन किया गया है। जिलाधिकारी ईसा प्रिया ने बताया कि इन 30 बुनकरों को प्रथम किस्त के रूप में 27 करोड़ 90 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 20 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। शासनादेश के क्रम में परिक्षेत्र अयोध्या के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों के पक्ष में प्रथम किस्त के रूप में कुल 27,90,000 रूपए की धनराशि आहरण एवं वितरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र हथकरघा बुनकरों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके कार्य को और अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है, जिससे बुनकरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सके। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शिव बाबा धाम में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद में विभिन्न विकास खंडों एवं नगर निकायों से आए 292 जोड़ों का विवाह उनकी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत सम्पन्न कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अम्बेडकर नगर के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 926 विवाहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 292 कन्याओं का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के

0: अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख की धनराशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। सावन के महीने में अंबेडकर नगर में काफी धूम रही। कांवड़ लेकर निकले शिवभक्तों से सड़कें गुलजार रही। शिवभक्तों को कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शिव बाबा टांडा के झारखंडी महादेवा मंदिर और महादेवा घाट पर बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने जलाभिषेक। अंबेडकर नगर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, उनका तिलक किया। स्कूली छात्राओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, डीएम ईशा प्रिया और मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला सहित कई अधिकारियों के कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा का लाभ महिलाओं ने उठाया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष चंद्र और साथियों की गाई रागनी। तो लीजिए पेशे खिदमत है कार्यक्रम की पहली रागनी।

लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष चंद्र और साथियों की गाई रागनी। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की अगली रागनी।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं सुभाष चंद्र और साथियों की गाई रागनी। आकाशवाणी का ये नजीबा बात केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण का राज्य स्तरीय प्रसारण, जिसमें आज प्रस्तुति होगी आकाशवाणी वाराणसी की। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर, जिसके प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा द्वारा संचालित कवि गोष्ठी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात्रि 9:30 पर। गोष्ठी में प्रतिभागी होंगे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और नरेंद्र वर्मा। कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय अभिनीत फिल्मों के गीत। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 2:30। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में आज निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन हेतु मुख्य शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी देंगे डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक

0: हैं BEDF मेरठ में, आपसे बातचीत करेंगे सुवेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नमित राज
1: और मेरा यानी फैजुर रहमान का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे आपका पसंदीदा कार्यक्रम हमेशा से रहा है, क्योंकि इसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपने संदेशों के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से, और जो भी फरमाइशी पत्र आप हमें लिखकर भेजते हैं, जो भी फरमाइश उसमें लिखकर भेजते हैं, उसे हम आपके नाम के साथ कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उस संदेश को शामिल करते हैं और वो गीत भी सुनवाने का प्रयास करते हैं। तो ये है ये कार्यक्रम। और
1: नमित जी, मैं जी। चाहूँगा कि हम अपने श्रोताओं को एक बार अपना नंबर बता दें ताकि वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकें।
0: जी बिल्कुल,
1: हमारा नंबर है 9457078288 और हमारे श्रोता हमें लगातार मैसेज कर भी रहे हैं। तो नमित जी, ये पहला मैसेज कहाँ से आया है?
0: पहला मैसेज मोहाली पंजाब से हमें लिखकर भेजा है, फरमाइश करता है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा।
1: जी नमित जी, एक और मैसेज हम तक आ पहुंचा है और आप हैं पीतल नगरी ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और ज़िला अमरोहा से भी हमें जो है मैसेज आ चुका है। व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, आप हैं ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से। बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी। एक और मैसेज हमारे पास है नमित जी, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून का, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। और एक पत्र हमारे पास आया है, ये पत्र है हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी का। और नमित जी, मेरे हाथ में एक और पत्र है, ये पत्र है नेहरू चौक पैठण से प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ से है। पत्र भेजने वाले हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और जालना शहर से भी एक पत्र हमें मिला है। सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव का आपने हमें बहुत ही सुंदर करके ये पत्र भेजा है। और एक और पत्र हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिक, पलक, करण, गीतू, निहारी का, हार्दिक और वंश बत्ता का। और एक और मैसेज है नमित जी, ये कहाँ से है ये मैसेज, जरा पढ़ेंगे।
0: ये मैसेज हमें मिला है श्रोताओं मजनू का टीला से, सतना MP, क्षमा कीजिए, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से।
1: जी ये इन्होंने मैसेज किया है, ये हैं
0: उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।
1: जी
0: एक मैसेज हमें ग्राम व पोस्ट राहु नंगली से प्राप्त हुआ है, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान का। अगला मैसेज विलेज गडरोना डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी, विमला गिरी, बलराम, भरत, सोनिया, मधु, रमन, दिव्या गिरी।
1: जी व्हाट्सएप मैसेज हम तक और पहुंचा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने हमें ये मैसेज भेजा है। साथ ही एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है सालार पहलगाम से, कश्मीर से हमें मैसेज कर रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन और नजमुद्दीन और कैसर कैसरुद्दीन। और आपने हमें एक और मैसेज भेजा है, भेजने वाले हैं भतिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग ने भी हमें मैसेज किया है। और एक और व्हाट्सएप मैसेज हम तक आ पहुंचा है, लिखने वाले हैं सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी और अनमोल मिगलानी, आपने मलोट पंजाब से हमें ये मैसेज भेजा है। और हमारे मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से जुड़ चुके हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिद रानी और हिना कौसर ने व्हाट्सएप मैसेज हमें किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। एक और मैसेज हम तक आ पहुंचा है, ये लिखने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ाना। और आपने हमें मैसेज किया था ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ दंतरेगी से हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने हमें मैसेज किया है। इसके साथ ही एक और मैसेज है हमारे पास,
0: शास्त्री नगर बीट शहर से ये मैसेज हमें मिला है
1: जी,
0: किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल का
1: जी। और एक और मैसेज हम तक आ पहुंचा है नमित जी,
0: जिला बदायूं ग्राम गनगोला से ये मैसेज हमें मिला है। फरमाइशकर्ताओं के नाम है इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान
1: जी। और एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है व्हाट्सएप माध्यम से,
0: मारहरा दरवाजा एटा से ये मैसेज हमें मिला है। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रोग से उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

0: रोग फिल्म से अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये खूबसूरत सा गीत। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म लोफर का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें हमें हमारे किन श्रोताओं ने भेजी है
1: जी, ये व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आया है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं। मोहम्मद कलीम जख्मी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नाजमा बेगम नाज, बेगम शबनम अनवार और भाभी सरिता गौतम। नमित जी, एक और हमारे पास मैसेज है, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से ही हैं। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। अब्दुल गफ्फार और अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से व्हाट्सएप माध्यम से जुड़े हैं सोहन जोशी जी। नमित जी, एक और व्हाट्सएप मैसेज हम तक आ पहुंचा है। आप हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने हमें मैसेज किया है। कोरासी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जो है हमारे साथ जुड़े हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू और सुष्मिता साहू और दीपिका साहू।
0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें मिली है श्रोताओं जनकपुरी सहारनपुर से। और ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने।
1: जी नमित जी, और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपतु साहू और कुंती साहू ने व्हाट्सएप मैसेज किया। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जो हैं हमारे साथ जुड़े। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। ज़िला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से हैं राजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन और मोहम्मद रियाज ने हमें मैसेज किया है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवारकर, निर्मला नवारकर, विशाल नवारकर और मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायणी इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुनहेकर ने भी हमें मैसेज करके इस गाने को सुनना चाहा है। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ज़िला अमरोहा से नई बस्ती से पतई खालसा से हमारे साथ जुड़े हैं बहारुल हसन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सिफान, यूसुफ, अनाबिया, अली शाह, शकील, अफ़ान और यासीन अंसारी। वडिंग खेड़ा पंजाब से नमित जी, मिंटू, टॉमस, पिंकी और लवली और आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
0: परी महल कासगंज से ये संदेश हमें मिला है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरसराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान का मैसेज भी हमें प्राप्त हुआ है और उसे हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे जी। अगला मैसेज
1: जी नमित जी, ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं, भेजने वाले हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम और शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख ने हमें मैसेज किया है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मंसूरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भाई सत्यदेव कुमार राणा, विष्णु कुमार राणा, इस्लाम नगर, पब सरा जिला बदायूं से हमारे साथ जुड़े व्हाट्सएप माध्यम से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता हमारे साथ जुड़े हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से।
0: और ये अंतिम फरमाइश इस गीत के लिए दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हमें मिली है। फरमाइशकर्ताओं के नाम है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी के स्वर में लोफर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, और कार्यक्रम है गीत तुम्हारे। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमारा नंबर नोट कर लें और हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, हमारा नंबर है 94-570-78-288, यानी 9457078288। और नमित जी, अब कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म से ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सोनू कुंभार, अर्चना कुंभार, और कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवाड़े।

0: करिश्मा सोनवाड़े, अविका सोनवाड़े और साइशा सोनवाड़े।
1: आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये मैसेज हमें भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा ने। इसी गीत के ख्वाहिशमंद आप लोग भी हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज़ अब्बासी, सरफराज़ अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनका पूरा परिवार।
0: जी, ये मैसेज है नमित जी, व्हाट्सएप मैसेज है डॉक्टर विवेक सर और जी
1: गौतम नगर नांदेड़ से ये मैसेज हमें भेजा
0: जी
1: है
0: जी जी
1: फैजुर रहमान जी,
0: जी
1: और फरमाइश करता है प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले।
0: और
1: और
0: ये महाराष्ट्र से हमें
1: जी
0: मैसेज कर
1: जी
0: रहे हैं नमित जी।
1: जी
0: जी, दूसरा मैसेज कहाँ से आया है?
1: ये मैसेज हमें बलराम गेट कासगंज से लिखकर भेजा है एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी, आबाद खान जी ने।
0: जी, और नमित जी ये पत्र मेरे पास आया है, ये पत्र है चौक खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, ममता बमारकंडे और संजय और बेबी किट्टू ने हमें ये पत्र लिख के भेजा है। दुर्गा कॉलोनी हासी से ये पत्र हमारे पास आया है, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने हमें ये मैसेज जो है पत्र लिख के भेजा है। एक और पत्र है मेरे पास लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी का, स्वर्ण सिंह गांव दौले वाला जिला मोगा पंजाब से व्हाट्सएप मैसेज हमें कर रहे हैं। सब्जी मंडी झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है कार्यक्रम के इस गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, उत्तम नगर दिल्ली से आपने हमें मैसेज किया। पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुश दिल परिवार चकला बाजार सामना शहर पंजाब से हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं।
1: ये मैसेज हमें बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से लिखकर भेजा है अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार ने। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से आप हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: जी, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने हमें मैसेज किया है। ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और इन्हीं के साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना ने हमें मैसेज किया है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। आप लोग जुड़े हमारे साथ। धनोरा विटाली, तहसील नांदूरा, जिला बुढ़ाला, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी हमारे साथ जुड़े हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से। कोल सिटी बरका काना से हैं अफजाल, ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। एक और व्हाट्सएप हम तक आ पहुंचा है, आपने हमें मैसेज किया है। झारखंड से हैं बेबी मुस्कान, आलम राही, अली राही, लड्डू और सभी मित्रगण इनके जो हैं व्हाट्सएप मैसेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम सहारनपुर कुमार हेड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप मैसेज हमें कर रहे हैं। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप माध्यम से।
1: शिवाजी चौक कटनी से आप हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, सुनील जैन, विपिन गुप्ता, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और इनका पूरा परिवार। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है। और एक मैसेज नाला सोपारा मुंबई महाराष्ट्र से हमें लिखकर भेजा है बेगम नजमा शेख, रूमा शेख, आसिफ शेख, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख और मोहम्मद कलीम ने। श्रोताओं चलिए अब, क्योंकि बहुत सारे संदेशों को हमने शामिल कर लिया है, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं उमराव जान फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और संदेश, व्हाट्सएप संदेश मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे जो नए श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं, पुराने श्रोता भी लगातार मैसेज कर रहे हैं। और अगली फरमाइश जिस गीत की हमें मिली है, वो गीत है फिल्म मौसम से राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। और इसकी फरमाइश किन किन लोगों ने की है फैज़ुर रहमान जी?
2: जी नमित जी, व्हाट्सएप मैसेज आया है, खेल बाज़ार पानीपत से हैं। लिखने वाले हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और पापा जी हैं इनके नानक चंद मल्होत्रा। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इसी मैसेज के साथ जुड़े हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का ने भी हमें मैसेज किया है। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी नई बस्ती गंज डुंडवारा से हमारे साथ जुड़े हैं। नगीना से हैं अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा और सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा, कनिका अरोड़ा ने भी हमें मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है। और ज़िला रामपुर खेड़ा टांडे से फिज़ा, शिफा, अमायरा, अनायशा और मंतशा ने भी हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी हमारे साथ जुड़े हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी गांव फ्रांसी हिसार से व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक ने और मधु नायक ने हमें मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़े। मुंदीचक भागलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंदू लाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी क्रिस्टी पटवा।
1: ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से ये मैसेज हमें भेजा है
2: जी।
1: एक मैसेज हमें मालियान सरधना मेरठ से मिला है और फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम जैन। गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से आप हैं मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। इसी गीत के ख्वाहिशमंद अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी
2: जी। और नमित जी, एक और मैसेज हमारे पास आया है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। लिखने वाले हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमार प्रणाली देशमुख, कुमार कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख। जिला किशनगंज बिहार से व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया ने हमें मैसेज किया है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हमें मैसेज किया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और अनोखे लाल वर्मा दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आमिर हुसैन बेगम, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल अरहान और परिवार के सभी सदस्य पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़े। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमारे साथ जुड़े हैं।
1: एक मैसेज हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से प्राप्त हुआ है फरमाइश करता है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।
2: जी, और नमित जी ये मैसेज आया है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन का, आपके साथ मैसेज कर रहे हैं फैज़ानुल्ला, फरहानुल्ला और समायरा आजमीन गुड़िया ने हमें मैसेज किया है। आकाशवाणी निज़ामाबाद केंद्र प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं, सक्षम ज्योति, लता, राजाराम और चांदनी ने हमें मैसेज किया है महाराष्ट्र से।
1: ये अगला संदेश हमें
2: जी
1: प्राप्त हुआ है गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से, ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और इनके मम्मी पापा का। इसी गीत की फरमाइश ये भी करते हैं। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से आप हैं डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी और शनाया इब्राहिमी, बरकाकाना से इफ्तिखार इब्राहिम, नाजनी, तबस्सुम अफजल और इब्राहिम।
2: नमित जी ये मैसेज हमारे पास आया है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान और इरफान खान का, आपने हनुमानगढ़ टाउन से हमें मैसेज किया राजस्थान से। और एक और मैसेज है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने भी हमें मैसेज किया है, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे ने वरवड बकाल बुरडाला से हमें मैसेज किया है। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योतिषी और शिवांश वर्मा जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अल शिफा अंसारी, जसपुर रोड दूल्हापुर ज़िला मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और महबूब दुकानदार हमारे साथ जुड़ गए हैं व्हाट्सएप माध्यम से।
1: व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से इस गीत की अंतिम फरमाइश हमें मिली है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, साथ ही कुलदीप कंवल। तो लीजिए श्रोताओं, फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: मौसम फिल्म से अभी आप ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। और अगला गीत जो अब हम कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सपने साजन के से कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। और इस गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी अब्दुल गनी अलमीर और मोहम्मद जैन और जन्नत ने
1: जी। और नमित जी, एक पत्र हमारे पास आ पहुंचा है। आप लिखने वाले हैं ग्राम झुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
0: गांव कैरो, जिला तरनतारण।

0: पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद ने भी कार्यक्रम में संदेश भेजा है इसी गीत की फरमाइश के लिए। गम्हरिया जमशेदपुर से आप हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला कटरा मंडी धनौरा जिला अमरोहा से महफूज हसन, फिरदौस अंसारी, हुमा हिफ्जा, जिक्रा हबीबा, हसन और चिट्टू
1: जी। ओल्ड लिसनर ग्रुप ऑफ इंडिया से हैं महेंद्र मोदी, रविंद्र सिंह और सभी सदस्य। आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयशा, अनम, मुदसर हुसैन, सब्जी मंडी बुढ़ाना से हमारे साथ जुड़े। और ये मैसेज हमारे पास आया है किशोर नगर अमरावती से, आप हैं हीरामण और सिद्धार्थ गुंडाने। शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने हमें मैसेज किया है जागोद राजस्थान से। गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबिरा शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, रानी बिटिया मदीहा, आपने हमें मैसेज किया है। और धर्मदास, मोहल्ला धर्मदास नजीब आबाद से आपने हमें मैसेज किया। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने व्हाट्सएप मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़े हैं और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष और विनोद खड़ से।
0: ये अगला संदेश हमें लिखकर भेजा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: श्रोता रघुवीर नगर से नमित जी हमारे साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप माध्यम से। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नयाब और लड्डू।
0: ये मैसेज हमें मगनपुर झारखंड से लिखकर भेजा है अब्बास आलम, अमजद अली और निशा ने।
1: वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना और रचिता खुराना और केशव रिधान खुराना, आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहार, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल और रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। पुरानी भिलाई तीन चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार हमारे साथ जुड़ा है। मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमांश, रमेश चंद्र चौहान, कोड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज जेवरा हिसार से और एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है, आप हैं अनित
0: तेलंगाना से ये संदेश हमें लिखकर भेजा है और फरमाइशकर्ताओं के नाम है राजेश खन्ना, चीना पासी, अनिता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और इनकी अम्मी। ये मैसेज हमें सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से प्राप्त हुआ है, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी का। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सपने साजन के फिल्म से ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

अभी आप श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म उम्मीद से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, रवि का संगीत है और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म उम्मीद का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, रवि का संगीत था और गीतकार थे शकील बदायूनी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओ। और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है वो कौन थी। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, मदन मोहन का संगीत है, शब्द रचना है राजा मेहंदी अली खान की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को फिल्म वो कौन थी में। मदन मोहन का संगीत था और शब्द रचना थी राजा मेहंदी अली खान की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओ, अब जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। इस गीत को आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आरडी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था रामपुर का लक्ष्मण। आर डी बर्मन का संगीत था और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गीतकार हैं नरेंद्र शर्मा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गीतकार थे नरेंद्र शर्मा। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दो रास्ते। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

और श्रोता आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है आया सावन झुमके। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 होने को है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT और श्रोताओं, आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का भाग 1362।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज NCERT के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
1: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकनाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकनाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए। वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
2: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
2: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
2: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
2: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
2: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
2: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
2: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए, लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली। उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
2: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माय नेम।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
3: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
4: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
3: The fly went near the cow and asked,
4: Dear cow, do you know my name?
6: No.
4: I don't know. You may ask the grass I ate.
3: The fly went to the grass and asked,
4: Dear grass, do you know my name?
7: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
3: The fly asked a leaf fallen on the grass.
7: Dear leaf, do you know my name?
3: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
5: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
6: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
5: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
6: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
7: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
8: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
7: हाउ आर यू?
9: हैप्पी बर्थडे स्टीफन। थैंक यू।
7: कांग्रेचुलेशंस।
9: थैंक यू डॉन। थैंक यू सो वेरी मच। Hi, yes. Martin. How are you?
7: Oh, fine.
9: Thanks for coming in. Please come in.
8: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
7: Come. Yay.
8: Come.
7: John, please come here.
8: Oh, sure.
9: Join us for a drink, please.
5: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं नहीं,
2: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से।

0: मन में होती है।
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ।1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
4: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
3: ग्रेट। धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से

0: बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
5: नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT और कार्यक्रम का आज आपने सुना भाग 1362। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ देर बाद यानी 12:05 पर हमारे सैनिक भाई सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। महिला जगत का प्रसारण समय रहेगा आज दिन में 1:15 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा का प्रसारण समय रहेगा आज दिन में 1:45 पर। कार्यक्रम में होंगे श्री भगवती प्रसाद पोखरियाल के गाए गढ़वाली लोकगीत।

अभिनेता विवेक ओबराय अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत हमारे श्रोता सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार, समय रहेगा आज दिन में 2:30 पर। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 होगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। कार्यक्रम में जानकारी के विषय होंगे कुपोषण से बचाव के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 और मिड डे मील योजना।

युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा आज शाम 5:15 पर, और कृषि जगत किसान भाइयों का ये दैनिक कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:05 पर। 6:50 पर हम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर होंगी जनाब मोहम्मद जफर की गाई चंद गजलें।

आज रात्रि 9:30 पर कवि गोष्ठी प्रसारित होगी, जिसमें प्रतिभाग करेंगे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और नरेंद्र वर्मा। कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। आज रात्रि 10 बजे हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 6:30 पर। चिंतन प्रसारित होगा कल सुबह 6:40 पर। कल सुबह 6:45 पर काव्यधारा में होगा श्री चंद्रवीर का काव्य पाठ, और कल सुबह 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी दी जाएगी। विषय होगा अम्ल पित्त का प्राकृतिक उपचार। तो श्रोताओ, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म आदमी और इंसान से ये गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। संगीत था रवि का और शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की। सैनिक भाइयों, आइए आप सुनते हैं एक और गीत लक्ष्य फिल्म से। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और साथियों की आवाज़ें हैं। संगीत है शंकर एहसान लॉय का और शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

सैनिक भाइयों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लक्ष्य का ये गीत। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म आशिकी का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। नदीम श्रवण का संगीत है और गीतकार हैं समीर।

सैनिक भाइयों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं सैनिक भाइयों एक और गीत, फिल्म का नाम है यस बॉस। आवाज़ें हैं अभिजीत सिंह और अलका याग्निक की, जतिन ललित का संगीत है।

सैनिक भाइयों, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक को फिल्म यस बॉस में। कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म ड्रीम गर्ल से। जोनीता गांधी और नक्श अजीज की आवाज़ें हैं, मीट ब्रदर्स का संगीत है और

अभी आप सुन रहे थे सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम का ये पहला गीत है फिल्म राज से। अलका याग्निक की आवाज़ है, नदीम श्रवण का संगीत है, शब्द रचना है समीर की।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं

0: prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत है फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। जसविंदर नरूला और साथियों की आवाज़ें हैं, अनु मलिक का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से ये गीत जसविंदर नरूला और साथियों की आवाज़ों में। अनु मलिक का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म साया से ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। अनु मलिक का संगीत है, शब्द रचना है सईद कादरी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म साया से ये गीत। उदित नारायण की आवाज़ थी, अनु मलिक का संगीत था, गीतकार थे सईद कादरी। कार्यक्रम का ये अगला गीत है फिल्म दाग द फायर से। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, राजेश रोशन का संगीत और शब्द रचना है समीर की।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म दाग द फायर से एक गीत। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में राजेश रोशन का संगीत था, गीतकार थे समीर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म गजनी से। जावेद अली और सोनू निगम की आवाज़ें हैं, ए आर रहमान का संगीत है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: अरे वक्त हो गया है समाचारों का। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर

0: celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. And with that, we end this news bulletin. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट और दोस्त रिया. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज इस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे. उस फिल्म का नाम है करीब. जी हाँ, करीब वर्ष 1998 में बनी एक.
1: वजारत के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने कहा कि तमाम शोबों में तरक्की इंतहाई मस्बत है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने GDP की तरक्की को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है. वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत की तरफ एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है.

जीडीपी की तरक्की को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता भारत की तरफ एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: ने नेपाल के सानेहे में अपनी जानें गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेल सेक्शन के खुलने से मुसाफिरों की नकलो हरकत में आसानी होगी और इलाकाई रेल रबते और तरक्की को फरोग मिलेगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि गेज तब्दीली से नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज बड़े रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएंगे। उन्होंने नेपाल में कुदरती आफत से मुतासर खानदानों से इजहार ताजियत किया।
1: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर की कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी, जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे, उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कौशाम्बी में पुरा मुफ्ती थाना इलाके के तहत मोहम्मदपुर गांव में कल एक पटाखे की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फजाइया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तकरीबन 200 अहलकार राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित पाल ने बताया कि जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस अलमनाक वाकये पर गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी महलूकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। रियासत में जारी बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से 17 अजला में 1,70,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वाराणसी में गंगा नदी की आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से गंगा नदी के किनारे कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। ACP दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इंतजामिया ने सैलाब से मुतालिक इमदादी चौकियां कायम की हैं और ड्रोन के जरिए सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। इस दरमियान चित्रकूट के रामघाट पर मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यमुना नदी की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे राजापुर और मऊ के दर्जनों देहात सैलाब के खतरे से दो चार हैं। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। नतीजतन जिला इंतजामिया ने जौनपुर और चंदौली में 8वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 में हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को भावना कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बहनें अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगी। लेकिन बहनों, बदलते हुए इस बरसात के मौसम में हमें अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में नमी और तापमान में बदलाव के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं, जिसमें संक्रमण रोगों का जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि रोगों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में हमें उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए और मच्छरों से बचने के लिए फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा भी बहनों, कई ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम बरसात में होने वाली समस्याओं से बच सकें।

और बहनों आपको बता दें कि आज 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की भी शुरुआत हो चुकी है। बहनों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत वर्ष 1982 में खाद्य व पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, स्वच्छ खान पान और उचित पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। वैसे तो बहनों सितंबर महीने को पूरे तौर पर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। बहनों अगर पोषण शब्द के बारे में बात करें तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि विकास तथा शारीरिक मरम्मत के लिए करता है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन पोषण कहलाता है। यह पोषण ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा को बेहतर रखता है। पोषण के मुख्य 6 भाग यानी आवश्यक पोषण तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। दूसरे शब्दों में पोषण का अर्थ भरण पोषण पालन और पुष्टि है। बहनों पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार करना और कुपोषण को दूर करना है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कम वजन, बोनेपन और अल्प पोषण के स्तर को चरणबद्ध तरीके से कम करना, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी के मामलों को घटाना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष जोर देना ताकि स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। बहनों अगर हम पोषण के जनक के बारे में बात करें तो पोषण विज्ञान के जनक एटोनी लिवोजियर को कहा जाता है। वह 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यह समझाया कि शरीर भोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा कैसे यानी मेटाबॉलिज्म कैसे बनता है। श्रोता बहनों वर्ष 2026 के पोषण दिवस की थीम हम आपको बता दें, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है। यह विषय प्रारंभिक बचपन में सही पोषण देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर केंद्रित है। श्रोता बहनों पोषण सप्ताह का उद्देश्य है कि स्वस्थ शरीर और बेहतर विकास के लिए संतुलित आहार तथा पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करें। साथ ही यह हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए केवल पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि थाली में दाल, हरी सब्जी, फल और अनाज का सही संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। पोषण दिवस के सफल होने से, कुपोषण को खत्म करने से देश के आर्थिक विकास और उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ता है। तो बहनों ये तो हमने कुछ जानकारी दी आपको 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में, और अब समय हो चला है हमारे अगले क्रम आधी आबादी से का। बहनों संगीत के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संगीत जहां माहौल को अच्छा बनाता है वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास भी करता है। मधुर आवाज भला किसको अपनी ओर नहीं खींचती। जी हाँ, ऐसी ही एक मधुर गायिका के बारे में आज हम बात करेंगे। बहनों आज हम बात करेंगे आधी आबादी से क्रम में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और संगीतकार मीना मंगेशकर के बारे में, जो कि लता

मैनू मीना मंगेशकर को मीना खडीकर के नाम से भी जाना जाता है। मीना मंगेशकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में कई गाने गाए हैं। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया के लोकप्रिय गाने दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा अपनी बहनों लता और उषा के साथ अपनी आवाज से सजाया है।

मीना मंगेशकर ने मराठी संगीत उद्योग, उन्होंने बच्चों के लिए कई लोकप्रिय गीतों और संगीत की रचना की है। उनका मराठी गाना सान सांग बोलना काफी प्रसिद्ध हुआ। मीना मंगेशकर ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के 90वें जन्मदिन पर उनकी यादों और संघर्षों को समर्पित करते हुए एक संस्मरण लिखा, जिसका शीर्षक लता दीदी और मैं, मूल मराठी पुस्तक मोटी तीची सांवली का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक में उन्होंने लता जी के बचपन, उनके कड़े संघर्ष और परिवार के लिए महान त्याग का बहुत ही सुंदर और भावुक वर्णन किया। बहनों, मीना खंडीकर ने 1953 में फिल्म फरमाइश में मोहम्मद रफी के साथ एक युगल गीत गाया था। वर्ष 1954 में मीना खंडीकर ने पिल पिली साहिब फिल्म में उनके साथ एक और युगल फागुन गीत गाया था।

मीना खंडीकर को मराठी बच्चों के गाने और मराठी भाषा में अस्वा सुंदर चॉकलेटिया बंगला नामक एल्बम लिखने के लिए जाना जाता है। यह एल्बम रिलीज होने के तुरंत बाद बंगाली और गुजराती भाषाओं में भी इसने रिकॉर्ड हासिल किया था।

इस एल्बम के मूल गीत मीना खंडीकर के बच्चों ने गाए थे। वर्ष 2018 में मीना खंडीकर द्वारा लता मंगेशकर का एक जीवनी स्केच मोती तीची सावली शीर्ष में लिखा गया था। मीना मंगेशकर ने 1952 में अपने गायन कैरियर की शुरुआत की और 2000 में गाने गाने

0: बंद कर दिए थे। बहनों, 26 मार्च 2021 में उन्हें रेडियो मिर्ची के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीना खंडीकर को मुख्य रूप से मराठी बाल गीतों और संगीत रचना के लिए जाना जाता है।
1: नमस्कार, मी मीना खंडीकर। अंतर्नाथ कला अकॅडमी येत्या महिन्यात काव्यांगण नावाची एक भव्य मराठी स्वलिखित काव्य सादरीकरण स्पर्धा आयोजित करीत आहेत। नवोदित कवींना ही उत्तम संधी आहे। या संधीचा फायदा त्यांनी जरूर घ्यावा, त्यांना माझा भरभरून आशीर्वाद आहे।
0: बहनों, अभी हम सुन रहे थे मीना मंगेशकर के बारे में अपने क्रम आधी आबादी से, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।

0: श्रोता बहनों, अपनी बात को कहने के कई अंदाज होते हैं। कोई अपने विचारों को बोलकर बता देता है, कुछ गाकर बता देता है, कुछ शायरी का रूप दे देते हैं, तो कुछ कविता के माध्यम से अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। ऐसी ही कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता हमारा अगला क्रम काव्य पाठ। तो आइए बहनों, सुनते हैं काव्य पाठ, जिसमें हमारी आज की कवित्री हैं श्रीमती मनु श्वेता।
1: यूं ही आंगन में बैठकर, यूं ही आंगन में बैठकर बारिश को होते देखा, यूं ही आंगन में बैठकर बारिश को होते देखा तो मन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो आई। यूं ही आंगन में बैठकर बारिश को होते देखा तो मन में कुछ पुरानी यादें ताजा हो आई। बारिश में वो माँ के हाथों से बने पकोड़े, बारिश में वो माँ के हाथों से बने पकोड़े और उनका स्वाद जैसे मन झूम उठता था। बारिश में वो माँ के हाथों से बने पकोड़े और उनका स्वाद जैसे मन झूम उठता था। और हो भी क्यों ना, और हो भी क्यों ना, माँ पूरी शिद्दत से तलती पकोड़े, और हो भी क्यों ना, माँ पूरी शिद्दत से तलती पकोड़े, बेसन में घोल देती अपना प्यार, बेसन में घोल देती अपना प्यार, फिर परोस देती अपनी सारी ममता, बेसन में घोल देती अपना प्यार, फिर परोस देती अपनी सारी ममता। हम सब बैठकर बरामदे में, हम सब बैठकर बरामदे में माँ के हाथ के बने खाते पकोड़े, हम सब बैठकर बरामदे में माँ के हाथ के बने खाते पकोड़े और भरपूर आनंद थे उठाते, और भरपूर आनंद थे उठाते। फिर वो नाव बना कागज की, फिर वो नाव बना कागज की आंगन में हम दौड़ लगाते, फिर वो नाव बना कागज की आंगन में हम दौड़ लगाते, छोटे छोटे पानी के गड्ढों में, छोटे छोटे पानी के गड्ढों में नाव चलाकर खूब इतराते। सच बारिश की बूंदे, सच बारिश की बूंदे आज भी मन को भाती हैं, सच बारिश की बूंदे आज भी मन को भाती है। माँ के हाथों की खुशबू यादों में फिर लौट आती है, माँ के हाथों की खुशबू यादों में फिर लौट आती है, यादों में फिर लौट आती है। मेहंदी, मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की रोली तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की रोली तेरे नाम की, पायल तेरे नाम की चूड़ी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की रोली तेरे नाम की, पायल तेरे नाम की चूड़ी तेरे नाम की, बिछवे तेरे नाम के नाम भी तेरे नाम का, बिछवे तेरे नाम के नाम भी तेरे नाम का, मैंने तुमको अपने में, मैंने तुमको अपने में ही हर तरह बसा लिया, मैंने तुमको अपने में ही हर तरह बसा लिया, अपने मन के आंगन में तुमको मैंने बसा लिया, अपने मन के आंगन में तुमको मैंने बसा लिया, लेकिन तुम इतने तंगदिल निकले, लेकिन तुम इतने तंगदिल निकले, मुझे अपने में समा

0: हित भी न कर सके। लेकिन तुम इतने तंगदिल निकले, मुझे अपने में समाहित भी न कर सके। तुम भी क्या याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे, क्या मेरा एहसान करोगे, तुम भी क्या याद करोगे, क्या मेरा एहसान करोगे। हर दर्द सहकर भी मैंने तुमको आज़ाद किया है, हर दर्द सहकर भी मैंने तुमको आज़ाद किया है। यही तो फ़र्क है तुझ में और मुझ में, यही तो फ़र्क है तुझ में और मुझ में। मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ जो सब सह लेती है, मैं एक औरत हूँ जो सब सह लेती है। टूटे सपनों के टुकड़ों से भी नई जिंदगी बुन लेती है, टूटे सपनों के टुकड़ों से भी नई जिंदगी बुन लेती है। आज थोड़ी मौज मस्ती हो जाए, आज थोड़ी मौज मस्ती हो जाए, कुछ भूली यादें ताजा हो जाएं, चलें उन गलियों की सैर करने जिनमें श्वेता का बचपन लौट आए, चलें उन गलियों की सैर करने जिनमें श्वेता का बचपन लौट आए। बचपन की भी अपनी मस्ती थी, हर चीज खेल के आगे सस्ती थी। बचपन की भी अपनी मस्ती थी, हर चीज खेल के आगे सस्ती थी। कितना भोलापन था उन शरारतों में, कितना भोलापन था उन शरारतों में, हरदम रहते थे हवा के हाथों में। कितना भोलापन था उन शरारतों में, हरदम रहते थे हवा के हाथों में। वो खट्टी इमली का स्वाद बड़ा अनोखा था, वो खट्टी इमली का स्वाद बड़ा अनोखा था, एक दूसरे के टिफिन का स्वाद चोखा था। या यूं कहे कि बचपन भेदभाव से परे था, या यूं कहे कि बचपन भेदभाव से परे था। झूठ या सच का ताना बाना क्या था, झूठ या सच का ताना बाना क्या था। हर पल बस खुशियों का ही ख्याल था, हर पल बस खुशियों का ही ख्याल था। बस अपनी ही धुन में जीते थे, बस अपनी ही धुन में जीते थे, छोटी सी खुशी में भी खुश होते थे। बस अपनी ही धुन में जीते थे, छोटी सी खुशी में भी खुश होते थे। काश फिर से लौट आए बचपन सुहाना, काश फिर से लौट आए बचपन सुहाना, फिर मिल जाए वो यादों का खजाना। काश फिर से लौट आए बचपन सुहाना, फिर मिल जाए वो यादों का खजाना। आज भी दिल कहता है बार बार, आज भी दिल कहता है बार बार, बचपन था जीवन का सुंदर उपहार। आज भी दिल कहता है बार बार, बचपन था जीवन का सुंदर उपहार। वो मस्ती वो हंसी ठिठोली वो संसार, वो मस्ती वो हंसी ठिठोली वो संसार, यादों में रहेगा हमेशा बेशुमार, यादों में रहेगा हमेशा बेशुमार। चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है जिंदगी का निरंतर, चक्र चलता रहता है जिंदगी का निरंतर। कुछ सवाल अनसुलझे आ जाते हैं अक्सर, चक्र चलता रहता है जिंदगी का निरंतर, कुछ सवाल अनसुलझे आ जाते हैं अक्सर। कौन है हम, कौन है हम, आए कहाँ से जाना कहाँ है, कौन है हम, आए कहाँ से जाना कहाँ है। कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने मृत्यु कहाँ है और जीवन क्या है। बस एक चक्र, बस एक चक्र, जैसे पूरा एक दिन, जैसे पूरा एक दिन। बचपन सुबह सुहानी, बचपन सुबह सुहानी, दोपहर हुई जवानी, बचपन सुबह सुहानी, दोपहर हुई जवानी। जब आ जाए सूरज सर पर, जब आ जाए सूरज सर पर, ढलती सांझ बुढ़ापा, ढलती सांझ बुढ़ापा, तो मृत्यु रात हुई। चलता रहता है जिंदगी का चक्र निरंतर, चलता रहता है जिंदगी का चक्र निरंतर। आज चांद खिड़की से उतरा, आज चांद खिड़की से उतरा, कुछ चाहता है मुझसे कहना। आज चांद खिड़की से उतरा, कुछ चाहता है मुझसे कहना, चांदनी की चादर रहा फैला। आज चांद खिड़की से उतरा, कुछ चाहता है मुझसे कहना, चांदनी की चादर रहा फैला। कुछ परिंदों का कोलाहल शायद तेरा संदेश लाया, कुछ परिंदों का कोलाहल शायद तेरा संदेश लाया, अपना मन रहा बहला। कुछ परिंदों का कोलाहल शायद तेरा संदेश लाया, अपना मन रहा बहला। तेरे दर्शन को तरसती मेरी आंखें हरदम, तेरे दर्शन को तरसती मेरी आंखें हरदम, रही खिड़कियों को सहला। तेरे दर्शन को तरसती मेरी आंखें हरदम, रही खिड़कियों को सहला। चकोर भी मौन है आज, चकोर भी मौन है आज अपनों की उपेक्षा पर, चकोर भी मौन है आज अपनों की उपेक्षा पर, आज चांदनी रही बुला चांदनी की सरगोशी में, चांदनी की सरगोशी में दोनों की खामोशी में ये पल भी गया चला, चांदनी की सरगोशी में दोनों की खामोशी में ये पल भी गया चला, कैसे मैं कह दूं तुमसे, कैसे मैं कह दूं तुमसे जानो तुम अपने हृदय तल को, कैसे मैं कह दूं तुमसे जानो तुम अपने हृदय तल को, पर्दे से परे रही उठा, पर्दे से परे रही उठा, कैसे कह दूं तुम मुझसे अलग है, कैसे कह दूं तुम मुझसे अलग है, हाँ तू ही तो मेरा ईश्वर है, कैसे कह दूं तू मुझसे अलग है, हाँ तू ही तो मेरा ईश्वर है, नमन में शीश ये रही झुका, कैसे कह दूं तू मुझसे अलग है, हाँ तू ही तो मेरा ईश्वर है, नमन में शीश ये रही झुका, एक दिन ले जाओगे चांद के पार, एक दिन ले जाओगे चांद के पार बैठा चांदनी की डोली में, एक दिन ले जाओगे चांद के पार बैठा चांदनी की डोली में आशा ये हृदय में रही बैठा, एक दिन ले जाओगे चांद के पार बैठा चांदनी की डोली में आशा ये हृदय में रही बैठा, थक गई हूँ यूं ही बैठे बैठे कोई रास्ता नहीं मिलता, थक गई हूँ यूं ही बैठे बैठे कोई रास्ता नहीं मिलता, दर्द उठाती हूँ कब से अकेली, दर्द उठाती हूँ कब से अकेली कोई सहारा नहीं मिलता, थक गई हूँ यूं ही बैठे बैठे कोई रास्ता नहीं मिलता, दर्द उठाती हूँ कब से अकेले कोई सहारा नहीं मिलता, चल रही हूँ जीवन पथ पर अकेले, चल रही हूँ जीवन पथ पर अकेले कोई साथी नहीं मिलता, चल रही हूँ जीवन पथ पर अकेले कोई साथी नहीं मिलता, यूं तो भीड़ बहुत है दुनिया में, यूं तो भीड़ बहुत है दुनिया में मन का साथी नहीं मिलता, चल रही हूँ जीवन पथ पर अकेले कोई साथी नहीं मिलता, यूं तो भीड़ बहुत है दुनिया में मन का साथी नहीं मिलता, जो दूर तक मेरा साथ दे, जो दूर तक मेरा साथ दे ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलता, जो दूर तक मेरा साथ दे ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलता, मेरी नैया है मझधार में, मेरी नैया है मझधार में जो पार लगा दे, मेरी नैया है मझधार में जो पार लगा दे ऐसा नाविक नहीं मिलता, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी फिर इतना अभिमान क्यों है, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी फिर इतना अभिमान क्यों है, जो जीवन का सार समझा दे, जो जीवन का सार समझा दे ऐसा सच्चा गुरु नहीं मिलता, ये दुनिया तो एक रंगमंच जैसी हर कोई निभाए अपना किरदार, ये दुनिया तो एक रंगमंच जैसी हर कोई निभाए अपना किरदार, हंसकर जो जीवन जीना सिखाए ऐसा कलाकार नहीं मिलता, हंसकर जो जीना सिखाए ऐसा कलाकार नहीं मिलता, श्वेता खोजती रही जिसे उम्र भर, श्वेता खोजती रही जिसे उम्र भर वह बाहर कहीं भी नहीं मिलता, जिसे ढूंढा सारी दुनिया में, जिसे ढूंढा सारी दुनिया में वो साथी अपने भीतर है मिलता, वो साथी अपने भीतर है मिलता।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थी काव्य पाठ, जिसकी कवित्री थी श्रीमती मनु श्वेता, और अब करते हैं थोड़ा मनोरंजन और सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको अपने कार्यक्रम का पता बता दें ताकि आपके बहुमूल्य विचार हम तक पहुंच सके। तो बहनों, हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763, और फोन नंबर है 9457078288। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी बहन भावना कौशिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं श्री भगवती प्रसाद पोखरियाल।

श्रोता, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा, और कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गढ़वाली लोकगीत। कलाकार हैं श्री भगवती प्रसाद पोखरियाल।

0: exporters and administering authorities. Prime Minister Narendra Modi has said India's economic growth of 7.8% is a reflection of the hard work and collective resolve of 140 crore citizens. Sharing a video in a social media post today, Mr. Modi said India is progressing at a fast pace despite global problems like ongoing wars and instability since the COVID-19 pandemic.
1: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. देश खुशियों से भर गया. देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए. एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है. दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है. 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है.
0: India has shown that it can adjust to changes in the global economy without allowing its growth to be derailed, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman has said, while acknowledging the country's dependence on imported energy and fertilizers. Finance Minister Sitharaman described India as a vibrant and responsive economy capable of managing external challenges. India is among the world's large importers of crude oil and petroleum products. It also imports several fertilizers and their inputs, despite having some domestic production capacity, the finance minister said. Sitharaman highlighted India's economic performance demonstrated its ability to respond to developments overseas and protect its growth momentum.
2: I'm extremely pleased with the numbers, not because all the numbers are good and whatever. It's more to say the hard work of the Indian citizens, even against extreme challenges, and the challenges don't seem to die down at all. Despite these global challenges, if Indian economy is still growing at 7.8% in the first quarter, it's heartening that the people's hard work is bearing fruit. The GDP is growing in every sector.
0: The finance minister said the Reserve Bank of India also periodically issues its assessment of the economy, with the indicators moving in a positive direction. Ms. Sitharaman also highlighted India's recorded growth of 7.8% in the first quarter of the 2026-27 financial year. This is Akashvani giving you the news. For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel Akashvani News. Welcome back to the Midday News. The death toll from the devastating flash floods in Nepal rose to 987 today, with security forces recovering more bodies from 8 districts of the country, officials said. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. Around 4,000 people, including 583 foreigners, and several security personnel still remain missing, while nearly 12,000 have been rescued, the National Disaster Risk Reduction and Management Authority said. The Nepalese authorities have provided details of the procedures for identification and handing over of the mortal remains of foreign nationals who died in the recent devastating flash floods, the Indian Embassy in Kathmandu said today. In a statement, the embassy said the government of Nepal has outlined a series of procedures that need to be completed before the mortal remains of foreign nationals can be handed over. According to the embassy, the process includes documentation of the mortal remains, recorded photographs and details, post-mortem examination and verifying the cause of death. The authorities will also formally establish the identity of the deceased, collect fingerprints, DNA and other forensic samples and verify the passport. Akashvani's FM Gold is celebrating its 25th anniversary today, marking 25 years since its launch on September 1, 2001. Originally known as AIR FM2, the service was introduced as an infotainment channel combining news, current affairs and entertainment. More from our correspondent.
3: Oh. Over the years, FM Gold has evolved into one of Akashwani's prominent radio services, catering to listeners with a mix of information, analysis and entertainment. The channel carries regular news bulletins and headlines, along with programs covering current affairs and issues of national importance. Some of its programs include popular shows such as Surkhiyon Mein, Spotlight, Market Mantra, Sports Scan and Countrywide, among others. While programs such as Aaj Savere and Parikrama provide listeners with news, current affairs and analysis in a magazine format, reflecting FM Gold's focus on combining information with engaging presentation. FM Gold has also embraced digital platforms to expand its reach beyond traditional radio broadcasting. The channel is available at Akashwani's official live streaming services and the All India Radio Live mobile application, enabling listeners in India and across the world to access its programs anytime, anywhere. This is Vishnu PS for Akashwani News.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand and parts of northeast India till tomorrow. Heavy rainfall continues across Jharkhand, posing a risk of flooding in several parts of the state. The Met Department has issued orange and yellow alerts for several districts and warned of possible flash floods over the next 24 hours. We have a report.
4: According to IMD Ranchi, cloudy conditions with moderate to heavy rainfall and thunder showers are likely across most parts of Jharkhand today. The department has also warned of a low to moderate risk of flash floods across all districts over the next 24 hours, with waterlogging possible in saturated soils and low-lying areas. An orange alert has been issued for Garhwa, Palamu, Latehar, Lohardaga, Gumla, Simdega and West Singhbhum for heavy to very heavy rainfall. Meanwhile, in Jamshedpur, the water levels of the Kharkai and Subanrekha rivers are rising rapidly due to continuous rainfall and water being released from dams. According to the flood control cell, the Kharkai is flowing 2.52 meters above the danger mark, while the Subanrekha has also crossed the danger level. In Palamu's Husainabad, residents living along the Son River, including farmers and livestock owners, have been advised to remain alert as the river water level continues to rise. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Benchmark domestic equity indices slipped into the negative zone in the afternoon session today. The Sensex fell 43 points to 76,915, while the Nifty was down by 51 points to 24,030 when reports last came in. World number one Aryna Sabalenka brushed aside Colombia's Camila Osorio 6-2-6-4 in the first round of the U.S. Open at Arthur Ashe Stadium in New York. Top seed Sabalenka's second round clash is against Russia's Polina Yatsenko, as she looks to become only the third woman after Serena Williams and Chris Evert to win three straight U.S. Opens. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses 26th SEO summit, calls for an end to double standards on terrorism. Indian Railways approves 170 crore rupees for coverage 4.0 on the remaining 712 kilometer stretch of Moradabad Division Northern Railway. In Nepal, flood death toll reaches 987 following widespread devastation. Akashwani's FM Gold commemorates its silver jubilee today. IMD issues red alert for Chhattisgarh. Extremely heavy rainfall expected over parts of Jharkhand, Odisha and northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
5: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन

0: आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन

विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल SSB की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय SSB की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। SSB के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने SSB की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी

0: प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
1: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ AI समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स स्कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ये वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई।

0: संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम है एक ही कलाकार और आज हम आपको कुछ गीत सुनवाएंगे अभिनेता विवेक ओबराय की फिल्मों से। श्रोताओं, विवेक ओबराय का जन्म 3 सितंबर को सन 1976 में हुआ था और उनके पिता जाने माने अभिनेता सुरेश ओबराय हैं और उन्होंने विवेक ओबराय ने 2002 में हिंदी फिल्मों से अपने कैरियर की शुरुआत की, यानी कि बॉलीवुड में अपना कदम रखा और कंपनी फिल्म में वो पहली बार नजर आए। साथ ही उन्होंने और भी कुछ फिल्में की हैं, जैसे कि साथिया, काल, मस्ती आदि। इन फिल्मों में उनके अभिनय की सराहना की गई और कंपनी के लिए उन्हें 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। इसके साथ साथ ही उन्होंने फिल्म ओमकारा में भी अच्छी अदाकारा की और साथ ही फिल्म कुर्बान में वो सन 2009 में नजर आए। विवेक ओबराय के कैरियर की कुछ गिरावट भी रही और फिर इसके बाद उन्होंने वापसी की फिल्म ग्रैंड मस्ती से और क्रिश 3 में वो फिर नजर आए और साथ ही उन्होंने कुछ दक्षिण भारत की फिल्में भी की हैं जिनमें वो एक्शन फिल्मों में नजर आए, जैसे विवेगम सन 2017 में आई, लूसीफर सन 2019 में और विनय विधेय रामा 2019 में और कर्डुआ 2022 में आई, जिसमें वो खलनायक की भूमिका में नजर आए। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सबसे पहले फिल्म कंपनी का ही गीत। संदीप चावटा और का संगीत और आवाज़ है। जयदीप सहानी ने इस गीत को लिखा है।

शुदा, अभी आपने सुना फिल्म कंपनी का ये गीत। इस फिल्म में नज़र आए थे विवेक ओबराय, और आज हम विवेक ओबराय की कुछ फिल्मों के गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार में। श्रोताओ, विवेक ओबराय का पूरा नाम है विवेक आनंद ओबराय, और इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में एक पंजाबी परिवार में हुआ। और जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि उनके पिता भी एक अभिनेता रहे हैं और काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता रहे। और विवेक ओबराय की माता जी का नाम है यशोधरा, जिन्होंने 1974 में सुरेश ओबराय से शादी की, और वो भी एक पंजाबी परिवार से आती हैं, लेकिन फ़िलहाल दक्षिण भारत में वो एक व्यवसायी परिवार के साथ रहती हैं। और यहीं पर जो है उनका, यही वजह है कि विवेक ओबराय को तेलुगु और तमिल भाषाओं का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। विवेक ओबराय ने, श्रोताओं, अजमेर

के मेयो कॉलेज और मुंबई के मीठी भाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और लंदन में एक अभिनेताओं की कार्यशैली में उन्हें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के निदेशक ने देखा, जो बाद में विवेक ओबराय को न्यूयॉर्क ले गए, जहां उन्होंने फिल्म अभिनय में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। तो श्रोताओ, चलिए वक्त है एक और गीत का, और ये गीत हमने लिया है फिल्म साथिया से। सोनू निगम की आवाज़ है, ए आर रहमान का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashvaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
4: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं विवेक ओबराय की। श्रोताओं, विवेक ओबराय ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत सन 2002 में राम गोपाल वर्मा की क्राइम थ्रिलर मूवी कंपनी से की थी। इस पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद सन 2002 में ही उनकी एक रोमांटिक फिल्म आई जिसका नाम था साथिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही कामयाब रही और उसके बाद फिल्म आई रोड, दम, युवा, मस्ती, ओमकारा और शूट आउट एट लोखंड वाला। ख़ास तौर से इन सभी फिल्मों में ओमकारा और शूट आउट लोखंडवाला काफ़ी मशहूर फिल्में रहीं और विवेक ओबराय के अभिनय को इसमें काफ़ी सराहा गया। और आइए सुनते हैं फिल्म ओमकारा से ये गीत सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। विशाल भारद्वाज का संगीत है, गीतकार हैं गुलजार।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म ओमकारा में सुनिधि चौहान और सुखविंदर सिंह को। कार्यक्रम है एक ही कलाकार और आज आप सुन रहे हैं विवेक ओबराय अभिनीत कुछ गीत। और आइए अब बात करते हैं विवेक ओबराय के बारे में। और जैसे कि आपको बताया गया कि ख़ास तौर से बॉलीवुड जगत विवेक ओबराय को काफ़ी लंबे समय तक रास नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने अपना प्लान बी डेवलप किया और इसमें उन्होंने रियल इस्टेट में अपने आप को परखा। दुबई में रियल इस्टेट का कारोबार B&W डेवलपमेंट्स नाम से उन्होंने स्टार्ट किया, साथ ही लैब ग्रोन डायमंड्स नाम से, और उस डायमंड नाम की काफ़ी आउटलेट्स जो है दुनिया में हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे उन्हें एक बिजनेस वर्ल्ड खड़ा करने का मौका मिला। लगभग आज की ग्रोथ अगर हम देखें विवेक ओबराय की, तो उन्होंने अपने अदाकारी के बाद एक नया मुकाम बनाया है जो कि उनके बिजनेस क्षेत्र में रहा। विवेक ओबराय बताते हैं कि उनके पिता सुरेश ओबराय ने उन्हें बचपन से ही पैसे के मैनेजमेंट और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी थी, और यही वो मंत्र था जिससे आज वो अपने आप को काफ़ी आगे तक लेके आ पाए हैं। तो कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं ये अंतिम गीत, और ये गीत है फिल्म मस्ती से। उदित नारायण और अभिजीत की आवाज़ें हैं, आनंद राज आनंद का संगीत है और गीतकार हैं समीर।

परोपकारी व्यक्ति बनने तक का विवेक ओबराय का सफ़र कमाल का है। विवेक ओबराय को इस अद्भुत कैरियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे सदैव चर्चा करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संदर्भ में कुपोषण से बचाव के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मिड डे मील योजना, इनके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की आबादी के लगभग 2/3 हिस्से को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज देकर खाद्य और पोषण सुरक्षा देना और एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। अगर इस अधिनियम के कवरेज क्षेत्र की बात करें तो इसका लाभ 75% ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलता है और जबकि इसका लाभ 50% शहरी क्षेत्रों के लोगों को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये देश की लगभग 67% आबादी को कवर करता है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज सस्ती दरों पर मिलता है। इसमें चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज जैसे कि बाजरा या ज्वार 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलना जारी रहता है। इस योजना में राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की सबसे बड़ी महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो, इसको परिवार का मुखिया माना जाता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक मुफ्त भोजन के साथ कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलता है। तो ये तो बात हुई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में, और अब बात करते हैं मिड डे मील योजना के विषय में। मध्याह्न भोजन योजना में भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण पहल के तहत प्रदान किया जाने वाला स्कूल लंच है, जिसका उद्देश्य उनके पोषण स्तर में सुधार करना और उनकी शिक्षा में सहायता करना है। नवंबर 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करते हुए कहा, हम राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हैं कि वे प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को तैयार दोपहर का भोजन उपलब्ध कराकर मध्याह्न भोजन योजना को लागू करें। भारत में दोपहर के भोजन की व्यवस्था से स्कूलों में नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति में वृद्धि, कक्षा में भूख की समस्या को कम करना और छात्रों को कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, साथ ही छात्रों के बीच में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करना, रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों में सामाजिकरण में सुधार करना है। मध्याह्न भोजन नियम 2015 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को जो कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत है और विद्यालय में दाखिला लेकर उपस्थित होते हैं, उन्हें पोषण मानकों के अनुरूप भोजन प्रतिदिन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होने का प्रावधान है। अक्षय पात्र में दोपहर के भोजन का मेन्यू कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है, जिनमें प्रशासनिक दिशा निर्देश, क्षेत्रीय स्वाद और पोषण का महत्व आदि ये महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति कार्यक्रम खेल दर्पण और शाम 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आपसे थोड़ी ही देर बाद, यानी शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत डॉक्टर रितेश शर्मा से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा बासमती धान उत्पादन हेतु मुख्य शस्य क्रियाएं। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर मोहम्मद जफर की गाई चंद गजलें सुनवाई जाएंगी।

कार्यक्रम गीत संध्या सुनिएगा आज रात्रि 8 बजे। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभाग करेंगे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और श्री नरेंद्र वर्मा। गोष्ठी का संचालन करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। आज रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है कार्यक्रम कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल शाम 7:30 पर कानून की बात कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति सुनिएगा कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्री चंद्रवीर का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 10 बजे। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर रजनी टोंक के गाए रुहिलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल दोपहर 12:05 पर शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5 बजे। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर डॉक्टर शिव कुमार कटियार से प्रमोद सिंह की बातचीत का विषय होगा पशुओं में खुरपका मुहपका रोग कारण लक्षण और उपचार। विविधा क्रम में कल शाम 6:45 पर श्री सुलेंद्र कुमार नौटियाल की वार्ता का विषय होगा भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की वर्तमान में प्रासंगिकता। छाया गीत सुनिएगा कल शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में कल शाम 7:45 पर युगराज सिंह के गाए शब्द सुनवाए जाएंगे। कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत शाम में। जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्कुराने का और हमारा प्रोग्राम युवानी सुनने का।
1: बिल्कुल दोस्तों, नया महीना, नई शुरुआत और नई शाम। हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसमें आज होंगी ढेर सारी जानकारी, हंसी मजा, और जिसमें मैं रहूंगी आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी।
0: दोस्तों, सलोनी के साथ प्रोग्राम में मौजूद हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट मदीहा रहमान।
1: और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे में तो आपको याद आ ही गया होगा आपका आपका जी हाँ आपका ही स्पेशल सेगमेंट दिल से दिल तक, जिसमें आप करते हैं हमसे बातें अपने दिल की और हम करते हैं बातें हमारे दिल की आपसे, और जिसके लिए आज की थीम रहेगी पिया।
0: पिया
1: मदीहा, पिया प्रियतम साजन सैया बालम बलमा मीत हमदम, और अब के टाइम में कुछ पुछू।
0: ये तो सही है सलोनी। वैसे
1: हाँ मदिहा, पिया ये सिर्फ अक्षरों का ही शब्द नहीं, लेकिन इसमें मोहब्बत है, इंतजार भी है, शिकायत भी है, और किसी अपने के पास होने का सुकून भी।
0: बिल्कुल सही कहा सलोनी। दोस्तों, कभी पिया वो होता है जिसके आने से चेहरे पर मुस्कान आ जाए,
1: और कभी वो जिसके दूर जाने से हर पल दिल के सबसे करीब रहे।
0: कभी पिया वो होता है जैसे किसी पुराने गीत में पिया की पुकार सुनाई दी हो।
1: तो कभी किसी खत के आखिरी शब्दों में उसका जिक्र मिल जाता है। जिक्र से याद आया दोस्तों, आप भी तो कर सकते हैं जिक्र हमारे प्रोग्राम में अपनी जुड़ी कुछ यादों का, कि आपके लिए आपका पिया क्या है, या आप अपने पिया के लिए आज कौन सा सॉन्ग बजवाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आपको करना होगा हमें मैसेज हमारे नंबर 9457078288 पर। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ भी मैं दे दूं कि आज से हमारा एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक बात काम की, जिसमें हम आपको बताएंगे हर रोज एक छोटा सा लेकिन काम का इंटरेस्टिंग फैक्ट।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे हम पूछ लेते हैं आज का बुझ जाने का सवाल। और हमारा सवाल है,
1: दोस्तों हमारा आज का सवाल रहेगा, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता। दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता।
0: तो आपको देना होगा इस सवाल का जवाब जवाब हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजरबात पर। लेकिन सलोनी, उससे पहले जैसे तुमने थीम बताई हमारे आज के दिल से दिल तक की, जो कि है पिया, तो पिया पर मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: हाँ, तो वो कुछ लाइंस ऐसी हैं। पिया का नाम लिया तो दिल में सुकून आया, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया। ना जाने कैसी कशिश है उस नाम में, जिसे पुकारते ही हर ख्वाब मुस्कुराया।
1: मदीहा मुझे भी कुछ लाइनें याद आ रही हैं, प्लीज मैं भी बोलूंगी।
0: हाँ हाँ हाँ जरूर।
1: तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है ये दुनिया, तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है ये दुनिया, तेरी बातों में ही मिलती है दिल को ठहरी हुई दुआ। लोग पूछते हैं इश्क की पहचान क्या है, लोग पूछते हैं इश्क की पहचान क्या है, मैं मुस्कुरा के कह देती हूँ बस मेरा पिया।
0: वाह सलोनी वाह। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत लाइंस के साथ अब हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे हमारे आज की शाम के पहले गीत के साथ।
1: दोस्तों हमें मैसेज करना मत भूलिएगा, हम आपका मैसेज करेंगे हमारे प्रोग्राम में शामिल।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी कभी रिश्ते में गलती किसी एक की होती है, लेकिन उसका बोझ दोनों उठा रहे होते हैं, एक के दिल में गुस्सा और दूसरे के दिल में गिल्ट।
2: और ऐसे में एक छोटा सा शब्द बहुत कुछ बदल सकता है, और वो शब्द है जाओ माफ किया।
1: वैसे सलोनी, माफ करना इतना भी आसान नहीं होता ना।
2: मदीहा, बात तो सही है, लेकिन एक बात और भी है कि चोट शरीर पर लगी हो तो दवा लगाकर ठीक हो जाती है, लेकिन जख्म जब दिल पर लगा हो तो उसे भरने में कुछ नहीं, बहुत टाइम लगता है।
1: सही कहा सलोनी। वैसे फिर भी क्षमा वो रोशनी है जो रिश्तों से अंधेरा मिटा देती है।
2: माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही या गलत था। माफ करने का मतलब है मैं उस एक गलती को अपने उस पूरे रिश्ते से बड़ा नहीं होने दूंगा। और मदीहा, एक बात जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, बल्कि बहुत ही गहरी बात है जो मैंने बहुत क्लोजली सीखी है, कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो वो रिश्ता भूल जाओ।
1: बिल्कुल, और ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या जरूरी है।
2: क्योंकि कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं, बस दिल से निकला एक शब्द कोई बात नहीं काफी होता है। और दोस्तों, ये जो एक शब्द होता है कोई बात नहीं, या माफ करने की हमारी जो इच्छा होती है, उसी से रिलेटेड हमें मैसेज मिला है, और भेजने वाली है मोनी, और इन्होंने अपने दिल की बात हमसे शेयर की है, तो आप भी सुनिएगा जरा। रूठना भी तेरा अपना है, मनाना भी तेरा हक। रूठना भी तेरा अपना है, मनाना भी तेरा हक। गलती हो जाए तो कह दूं बस एक प्यारा सा सॉरी आज। पिया के रिश्तों में ना जीत मायने रखती है ना हार, बस साजन का हाथ रहे हाथों में और बना रहे प्यार।
1: वाह,
2: तो आपके लिए मोनी, आपने इतनी अच्छी बात बोली, एक प्यारा सा सॉन्ग तो बनता है जो शायद आपके पिया को भी पसंद आए।
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपको भी ज़रूर ये सॉन्ग सुनकर अपनी पिया की याद ज़रूर आई होगी, और कुछ ना कुछ ख्याल तो आया होगा कि शायद माफ़ कर देना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो टाइम अभी भी है दोस्तों।
1: क्योंकि सलोनी जो हमारे अपने होंगे ना, वो हमें समझेंगे और हम उन्हें समझेंगे।
0: बिल्कुल, और मदीहा कहते हैं ना कि अपना है तो जाएगा कहाँ, और जो चला गया वो अपना कैसा।
1: तो अपनों के लिए ईगो साइड में रखिए, और जब लगे कि रिश्ते को बचाने के लिए एक सॉरी बोलना है तो बोल दीजिए सॉरी।
0: और अदा कर दीजिए वो कीमत। और
1: बिल्कुल
0: देखिए, हमारे एक साथी हैं जिन्होंने ये कीमत अदा कर दी है और शायद अपने पिया से सॉरी बोल दिया और कुछ कह भी रहे हैं अपने पिया को।
1: तो दोस्तों, हमारे एक लिसनर है संजना, उन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है कि आज की पिया वाली थीम सुनकर मुझे अपने हस्बैंड की याद आ गई। वो काम के सिलसिले से मुझसे दूर रहते हैं और ऑनेस्टली पिया शब्द सुनते ही उनका ख्याल आ जाता है। पहले लगता था कि ये बस पुराने गानों में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई अपना दूर होता है तब समझ आता है कि इस एक लफ्ज में कितना अपनापन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सलोनी,
0: देखो, एक हमें आई है, मतलब मैसेज आया है चंद्रिका जी का नगीना से, और वो माफी शब्द को थोड़ा ऐसे डिस्क्राइब करती हैं कि देखिए, माफ करना डिपेंड करता है कि कितनी गुंजाइश रिश्ते में है, कितनी जान है बर्दाश्त में। कभी कहीं कहीं जरूरत होता है कि लाइन क्रॉस हो जाए तो बस उस वाक्य को सबक बना लें, क्योंकि कुछ बातें एक बार हुई हैं उस चीज पर तो आगे भी होंगी। तो ये नहीं कि तलवार छुरी से नफरत करो, बट हेल्दी डिटैचमेंट और अनलव की कैपेबिलिटी भी जरूरी है। बिल्कुल चंद्रिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैंने कहा ना कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात इतनी ही जरूरी है
1: तो
0: तो फिर
1: रिश्ता
0: वो
1: भूल
0: रिश्ता
1: जाओ।
0: भूल जाओ।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अब सुनते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला गीत।

0: दोस्तों, पिया सुनकर और शायद आपको महसूस भी हो रहा होगा, किसी ना किसी की याद तो जरूर आ रही होगी। लेकिन आपको एक बात और जरूर याद आनी चाहिए कि आज ट्यूसडे है और हमारा एक सेगमेंट जाता है जो मंडे से फ्राइडे तक चलता है, लव स्टोरी। तो आज हम लव स्टोरी में आपको सुनवाएंगे एपिसोड 2। आपको तो याद ही होगा, कल गया था एपिसोड 1 और जिसका टाइटल था दास्ताए मोहब्बत। तो दोस्तों, अब जरा थोड़ा सा संभल कर सुनिएगा दास्ताए मोहब्बत का एपिसोड 2।
1: हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा। कल हमने शुरू की थी एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसमें अभी तक मोहब्बत का नाम भी नहीं था, सिर्फ एक मुलाकात हुई थी एक किताब के बहाने। मगर कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी दिल को किसी के करीब जाने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी होती है। और उस मुलाकात के बाद जोहरा कई दिनों तक लाइब्रेरी नहीं गई। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों। शायद किताबें घर में थी, या शायद उसे डर था कि अगर वो फिर वहां गई तो कहीं फिर से उस अजनबी से मुलाकात ना हो जाए। मगर दिल भी कहीं ना कहीं चाहता था कि यह मुलाकात फिर से हो। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, जोरा, आजकल तुम कुछ परेशान सी रहती हो, क्या बात है? जोरा ने किताब से नजर उठाए बिना कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जोरा, तो फिर ये किताब पिछले आधे घंटे से एक ही पन्ने पर क्यों खुली है? जोरा चुप हो गई। उधर साहिल, जो एक जाने माने वकील मिर्जा साहब का बेटा था और खुद भी वकालत की पढ़ाई कर रहा था, ना जाने क्यों वो रोज लाइब्रेरी तो जाता मगर किताबों की जगह किसी और को ही तलाशता रहता। उसे किसी किताब की तलाश नहीं थी, उसे शायद किसी चेहरे की तलाश थी। एक शाम जोहरा फिर से लाइब्रेरी पहुंची और साहिल भी वहीं था। दोनों की नजरें मिली और फिर हया से झुक गई। साहिल ने कहा, आप फिर आ गई? जोहरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी हाँ, किताबें बुला रही थी। साहिल ने कहा, मुझे लगता था किताबें सिर्फ मुझे ही बुलाती हैं। जोहरा खिलकर हंस पड़ी और उसकी वो हंसी साहिल के दिलो दिमाग पर जादू का काम कर गई। उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी किसी किताब पर चर्चा, कभी किसी शायर का जिक्र, कभी शहर की किसी पुरानी इमारत की बात, मगर दोनों के बीच एक अदब की दीवार हमेशा कायम रही। साहिल कभी हद से आगे नहीं बढ़ा और जोहरा कभी बेवजह करीब नहीं आई, लेकिन उनकी आंखें अक्सर वो कह जाती जो उनकी जुबान कहने से डरती थी। एक शाम तेज आंधी आई, जोहरा लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसकी किताबें जमीन पर गिर गई। उसकी किताबों के बीच से एक सूखा हुआ फूल गिरा। साहिल ने कहा, ये आपका है? जोहरा ने जवाब दिया, नहीं, अब ये शायद आपका है। साहिल ने हैरानी से पूछा, मेरा? जोहरा ने कहा, जी हाँ, जिस चीज को कोई संभाल कर रखे वो उसकी ही हो जाती है। साहिल ने उसे अपने डायरी में रख लिया और पहली बार उसके दिल ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसे उसने कभी देखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उसी रात साहिल के घर में एक फैसला हो चुका था। उसके वालिद साहब उसका रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर चुके थे। साहिल के सामने उसकी जिंदगी का फैसला रखा जा चुका था। उसने किताब खोली, वही सूखा फूल देख कर कहा, काश मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं हालात पूछकर होती। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर है जहाँ एक तरफ दिल और दूसरी तरफ फर्ज है। क्या साहिल अपने वालिद के फैसले के सामने अपने दिल की बात रख पाएगा? क्या जोहरा को साहिल की मोहब्बत का एहसास होगा? इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा कल एपिसोड नंबर 3 में।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती।
4: क्या समझ में नहीं आती?
5: कि भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर,
4: थैंक यू
5: सो लो, इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया?
4: हम दोनों को मिलाने के लिए।
5: वो कैसे?
4: देखो, मैं सुंदर थी इसीलिए तुम मुझ पे फिदा हो गए, और मैं मूर्ख थी इसलिए तुम्हारे चक्कर में आ गई।
5: हाँ?
2: जी हाँ, मजा आ गया।
0: दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं आज की गिफ्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया ही था कि आज से शुरू हो रहा है हमारा एक नया सेगमेंट एक बात काम की, तो चलो चलते हैं मधिया के पास और उसको भी बताते हैं कि आज की काम की बात क्या है। मधिया मुझे बताओ कि अगर तुम्हें या किसी और को साल में एक दिन एक्स्ट्रा मिले तो तुम क्या करोगी?
5: अगर मैं अपने बताऊं सुरेंद्र, तो मैं मजे से सोऊंगी, बिना अलार्म, बिना टेंशन, पूरे दिन अपने नाम।
0: अच्छा, ये तो कोई नई बात नहीं, वो तो तुम संडे में भी करती हो। क्या हो अगर वो दिन तुम्हें चार साल में सिर्फ एक बार मिले?
5: तो भाई अगर ऐसा है तो वो दिन स्पेशल होगा, एक्सपेंसिव होगा, उसका तो मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है?
0: होता है मैडम, होता है हमारे कैलेंडर में।
5: अच्छा, कैसे और कहाँ?
0: देखो, हम सबके फेवरेट मंथ फेब्रुअरी में, फेवरेट इसलिए क्योंकि इसे हम लव मंथ भी तो कहते हैं।
5: या का मंथ,
0: बिल्कुल हमारी थीम से जोड़ दिया तुमने तो। और जिसके साथ हर साल थोड़ी सी नाइंसाफी होती है क्योंकि उसे मिलते हैं बहुत ही कम दिन।
5: तो फिर चार साल में उस पर इतनी मेहरबानी क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि असली कहानी कैलेंडर की है ही नहीं मदिहा, असली कहानी है पृथ्वी और सूरज की। देखो मदिहा, पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं?
5: ये तो सबको पता है,
0: 365। मुझे पता ही था कि तुम्हें भी इतना ही पता होगा, है ना? लेकिन बुद्धू तुम्हें भी अधूरा पता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं बल्कि लगते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे।
5: मतलब हर साल 6 घंटे बच जाते हैं।
0: हाँ जी मैडम, और यही 6 घंटे की सेविंग्स की गुल्लक जो होती है 4 साल बाद बिल्कुल फुल हो जाती है और हमें गिफ्ट के तौर पर मिलता है पूरा एक दिन।
5: अच्छा, अब समझी मैं।
0: और वो मिलता है हमें 29 फेब के रूप में।
5: पर फरवरी में ही क्यों, किसी और मंथ में क्यों नहीं?
0: वो इसलिए मदिहा क्योंकि हमारा कैलेंडर रूसी बेस पर आधारित है और उस टाइम पर लास्ट मंथ जो होता था वो फरवरी का होता था, इसलिए ये दिन जुड़ा फेब में।
5: तो दोस्तों मतलब ये दिन एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं है बल्कि पृथ्वी के 4 साल की सेविंग्स हैं।
0: बिल्कुल, तो इसी बात पर अपनी सेविंग्स से कुछ ट्रीट मुझे भी दोगी? मैंने तुम्हें आज बताई है एक बात काम की।
5: हाँ हाँ जरूर, इस प्रोग्राम के बाद।
0: देखो मदिहा, हमने तो काम की बात बता दी और हमारे एक लिसनर्स का मैसेज भी आया है जो बहुत ही काम का लग रहा है मुझे। उन्होंने लिखा है कि हर बार सॉरी कह के तुम बात खत्म कर देते हो, तुम हर बार माफ करके दिल को समझा देते हो, पर सोचो पिया कब तक ऐसा चलेगा, एक ही जख्म को बार बार सीने से कौन समेटेगा।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये लाइंस बोली हमारी लिसनर्स ने। तो दोस्तों इसी के साथ साथ चलते हैं आगे, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं हमारे इस अगले गीत के साथ।
0: नहीं नहीं मदिहा, एक फरमाइश और शायद हम दिल की शिकायत बोल सकते हैं, वो और? भी और आई है और ये हमें भेजी है नगीना से, और भेजने वालों ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही अच्छी है, सच जीवन का सच भी सपनों का राजकुमार और सावरिया बहुत ही अहम होता है। कुछ लिख रहा हूँ पिया और प्रीतम की नोकझोंक में। बिल्कुल, तो इन्होंने लिखी है, अभी तो मैं 18 का हूँ, 60 का ना समझो, बरेली वाला ठुमका लगा के दिखाऊं मगर रणबीर ना समझो, माधुरी जैसी है लचक मेरी कमर में मगर हेमा ना समझो, दिलीप जैसी आंखें मटकाऊं, गर्दन जया मुखर्जी जैसी घुमाऊं मगर अनुपम खेर ना समझो, अभी तो मैं 18 का हूँ, 60 का ना समझो। बिल्कुल, आपने तो माहौल बना दिया है हमारी थीम का। तो चलिए आज का ये अगला सॉन्ग आपके नाम।

0: दोस्तों, हमें आया है एक और मैसेज हमारे लिसनर मनोज चौहान की तरफ से, और वो हमें लिख भेज रहे हैं कि आज पिया विषय पर आपकी बातचीत सुनी तो एक बात याद आई। मेरी पत्नी मुझे कभी कभी मजाक में पिया बुलाती है। सुनने में थोड़ा पुराना सा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे शब्द कम ही सुनने को मिलते हैं। आपका कार्यक्रम सुनकर पुराने गीत और आप और अपनी शादी की शुरुआती दिनों की कुछ यादें ताजा हो गई।
1: बिल्कुल। और हमें एक मैसेज तो नहीं, शायरी भेजी है, जो मैं बताना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को कि नजरों में ख्वाब दिल में अरमान लिए, नजरों में ख्वाब दिल में अरमान लिए, लबों पर बस एक नाम लिए, कहो ना किसे याद कर रही हो, और जवाब आया पिया पिया पिया किए।
0: वाह। तो दोस्तों, ऐसी एक और शायरी सुनोनी मैं बोलना चाहूंगी कि तेरे नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तेरी एक बार दिन भर की थकान मिटा जाती है। इश्क क्या है ये तो नहीं मालूम, पर तू मिले तो जिंदगी कुछ बेहतर हो जाती है।
1: और अगला मैसेज हमें आया है नूरपुर से, और उन्होंने लिखा है, नाम पिया का है तो नखरे भी होंगे, थोड़े गिले और शिकवे भी होंगे, मोहब्बत अगर सच्ची है जनाब तो रूठना भी होगा और मनाना भी होगा। कितनी अच्छी बात कही है आपने। तो चलिए आपके लिए सुनते हैं ये आज का अगला सॉन्ग।

0: दोस्तों, अब आपका ध्यान केंद्रित करते हैं हमारे आज के सेगमेंट बूझो तो जाने की ओर। और हमने आपसे किया था एक सवाल, और सवाल था हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता, और जिसका सही जवाब है खलीदा लीज मेजो ने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे सही जवाब देने वालों के नाम। तो वो नाम है मुकेश कश्यप, हल्के जयपाल यादव, अबाद खान, विजेंद्र विश्वकर्मा, रामशरण, जाकिर मंसूरी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, धीरज भाई रबारी, लाल मोहम्मद अंसारी, हिमकेश्वर साहू, सुभाष गोदारा, विनोद नारायण कुशवा, बब्बर रामटेके, मोहम्मद रफीक पवार, विथन सुरोशे, मोहम्मद हसनैन पवार, हनुमान बोर्ड के सदाशिव थोरात, शाहजी बोर्ड के मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, गंगा सिंह रावत, वलीउल्ला अंसारी, इरशाद अहमद, अनिल बीगोट के बलवंत कुमार वर्मा, अशोक कुमार, राजेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, मुजफ्फर अली खान, फागुराम यादव, दिनेश वर्मा, बबलेश पवार और शाहरुख नूर अंसारी।
1: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर फिर से नोट कर लीजिएगा 9457078288। इसी के साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी सलोनी और मदीहा रहमान को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की राम राम। तो भाई गंगाराम
0: भैया झुमरू,
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई? सब राजी खुशी?
0: भाई देखो, बहुत दिनों से ऐसा था ना, रोज झिमझिम बारिश हो रही थी।
1: भैया
0: एक दो दिन से थोड़ा सा थम्मा लगा।
1: भाई देखो, आज भी बादल बदली है और भैया हल्की भुसार से, तो भैया आज भी थोड़ी बहुत दिखाई दी है।
0: भाई बात यू है, या तो बारिश पड़ो या फिर भैया तगड़ी गर्मी हो जा। भाई मामला ऐसे हो रहा आप तो।
1: तो भाई देखो, हम जो है अपनी खेती बाड़ी की भैया अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं और भाई धान की फसल हमारे खेत में खड़ी है भैया, गन्ने की फसल भी खड़ी है, साथ ही भाई देखो सब्जी की फसल भी है
0: जी।
1: तो भैया सब फसलों की बड़े अच्छे तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता भाई।
0: बिल्कुल भाई, देखो इन दिनों में बरसात का जब मौसम चल रहा है भैया, बहुत सारी बातें देखनी पड़ा।
1: बिल्कुल
0: विशेष रूप से भैया कोई रोग कोई कीट तो नहीं लग रहा, साथ साथ भैया हमारे फसल जो है वो ठीक प्रकार से चल रही नहीं चल रही, बहुत सारी चीजें देखनी रहती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो फसल का मामला तो यो है कि भैया अगर रोज रोज खेत पर नहीं गए
1: हाँ।
0: तो भैया खेत भी रोव है ना, भाई मेरा मालिक आया नहीं।
1: तो भाई वैज्ञानिक भी इसी बात को कहम है कि भैया खेत का लगातार निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी है
0: जी,
1: क्योंकि भाई जब हम दो चार दिन तक खेत पर नहीं जाने गए, मान लो 10-5 दिन खेत पर गए ही नहीं, तो भैया पता चला कि भैया एक हफ्ता पहले जो कोई बीमारी लगी और लगभग आधी फसल तो बर्बाद हो ही रही है।
0: सही बात है भाई, आजकल बीमारियां ऐसी लग रही हैं एक रात में चौपट कर दें। तो भैया हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, विशेष रूप से जो इस टाइम धान की फसल है और गन्ने की फसल है,
1: बिल्कुल
0: इनमें भैया बड़ी सतर्कता की जरूरत है।
1: और मेरे को बातचीत तो भैया हो ही रही है और भैया आज है मंगलवार का दिन,
0: ठीक,
1: और हर मंगलवार को हमारे बहन भाई सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला।
0: बिल्कुल, तो भाई आज सुनते हैं इसका यो अगला पाठ।
1: ठीक है भैया, तो आओ सुनते हैं इसका 14वां पाठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
0: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
0: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
2: अरे मास्टर जी।
0: हाँ भैया।
2: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
0: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
2: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
0: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
2: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती,
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
1: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला में, और इस पाठशाला के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
6: और भैया मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह।
1: तो भाई देखो, बासमती धान की रेडियो पाठशाला शुरू हो गई है।
6: बिल्कुल भैया,
1: और भाई इसमें हम अपने बहन भाइयों को बासमती धान के संबंध में पूरी जानकारी दिलवा रहे हैं।
6: जी जी जी।
1: और भाई जहां तक बासमती धान की बात है, तो भैया हमारी जो बासमती धान की फसल है
6: जी
1: भैया, वो गर्भावस्था में आने वाली है, या भैया जो हमारी अगेती फसल है वो लगभग गर्भावस्था में आ गई है?
6: अरे झुमरू भैया, गर्भावस्था में आवे क्यों ना, किसान भाई बहुत बढ़िया तरीके से बासमती धान की फसल को उगा रहे हैं, देखभाल बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
1: तो भाई देखो, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है
6: जी
1: भैया, वो यह हो कि गुणवत्ता युक्त बासमती धान का उत्पादन होना चाहिए।
6: हाँ हाँ।
1: और भैया ऐसी गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बासमती धान का निर्यात हो सके।
6: यूं है काम की बात। अब देखो भाई, वैसे तो हमारे जो किसान भाई बासमती धान की खेती कर रहे हैं भाई, अपने खेत को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, रोजाना खेत पर जा रहे हैं और जिस चीज की कमी हो रही भैया उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
6: पर किसान भाइयों को ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो हमें निर्यात करना है बासमती का, तो भैया निर्यात योग्य बासमती हम कैसे तैयार करें, इस बारे में बात होनी चाहिए।
1: तो भाई देखो, निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन हेतु
6: जी
1: भाई बहन भाइयों को जानकारी देने के लिए भैया हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर रितेश शर्मा
6: जी,
1: जो कि निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में, भाई हमारे कार्यक्रम में आ गए हैं।
6: और देखो भाई, डॉक्टर साहब थारी धोरो को बैठे।
1: अच्छा
6: भैया, डॉक्टर साहब से बात करनी शुरू करो इस बारे में।
1: तो भाई जब ऐसी बात हो तो भैया डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं।
6: तो आओ सुनते हैं निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन के संबंध में यो बातचीत।
1: किसान भाइयों, बासमती की फसल इस समय हमारे खेत में खड़ी है और हम अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं, तो बात यह आती है कि हम किस तरीके से अच्छी बासमती उगा सकते हैं, साथ ही निर्यात योग्य बासमती हम किस तरीके से उगाएं, कौन कौन सी हमें बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन शस्य क्रियाएं हैं जिनको हम कर सकते हैं, तो आज इसी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रितेश शर्मा, जो कि निदेशक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ में। तो राक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो राक साहब, देखिए बासमती की फसल हमारे खेत में खड़ी है और अच्छे तरीके से बढ़वार कर रही है, तो बात यह आती है कि अगर हमें बासमती का निर्यात करना है, विदेशों में भेजना है, तो ऐसी कौन कौन से मुख्य बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को अभी से ध्यान में रखनी होंगी?
6: देखिए, बासमती हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है
1: जी,
6: बहुत प्रमुख फसलों में से एक है, और सबसे ज्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी है कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा का भंडार भरने में कृषि क्षेत्र से कोई यदि सर्वाधिक इसमें अपना योगदान देता है तो वो बासमती की फसल है।
1: बिल्कुल।
6: और इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे किसानों को जाता है, हमारे वैज्ञानिकों को भी जाता है। तो बहुत सारी वैरायटीज बासमती की आप जानते हैं कि किसान भाई लगाते हैं, कुल 45 प्रजातियां रिलीज हैं, लेकिन जो 6-7 वैरायटी हैं जिनकी खेती सामान्य तौर पर करते हैं। तो अब ये जो सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, शुरू आ गया है, इसमें हमें ये सबसे क्रूशियल टाइम है खेती के लिए, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने खेत में उगाए गए धान से जब उसको मिल में चावल बनाकर और दुनिया को प्लेट में परोसते हैं, यानी कि उनको खाने की प्लेट में जब ये चावल जाता है, उससे पहले कई सारी जांचों से होकर इसे गुजरना पड़ता है
1: जी।
6: और यदि किसी जांच में कोई समस्या आती है तो एक तरह से वो उंगली सिर्फ बासमती की उस गुणवत्ता के ऊपर नहीं, हमारे देश के ऊपर भी उठती है और हमारे किसान भाई और वैज्ञानिकों के ऊपर। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमको अपनी बासमती की खेती में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है
1: जी।
6: क्योंकि मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं, इस क्षेत्र में जो पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 11-21 या उनके सुधार जो कि पूसा बासमती 1885 या 1847 या 1692 है, इनका जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखेंगे तो जो सबसे अच्छा मूल्य मिलता है वो हमें यूरोप के बाजार में मिलता है।
1: अच्छा।
6: काफी मात्रा में हमारा जो है खाड़ी देशों में बहुत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जब हम मूल्य की बात करते हैं तो प्रीमियम मार्केट हमारी यूरोप है
1: जी।
6: और यूरोप में जहां जो समस्याएं आती हैं वो सबसे ज्यादा वहां के जो नियम है वो बहुत कड़े हैं।
1: अच्छा।
6: वहां पेस्टिसाइड के रेजिड्यू का मतलब है अवशेष, जो किसान भाई स्प्रे करते हैं, जो उसमें स्प्रे करने के बाद चावल के अंदर यदि उस रसायन के अंश रह जाते हैं तो उनकी जांच और रह गए हैं तो उनको बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है। रसायन बने क्यों हैं? रसायन इसलिए बने हैं कि हम अपने धान के खेत में यदि कोई समस्या आती है, बीमारी आती है, कोई कीड़ा आता है, तो उसकी रोकथाम कर सके।
1: बिल्कुल।
6: उसके दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों से काम नहीं चलता तो फिर दवाई भी डालनी है, रसायन भी डालने हैं। तो मेरा किसान भाइयों से सिर्फ इतना निवेदन है कि रसायनों को आप मिठाई की तरह यूज ना करें कि नहीं साहब डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया रहेगी। इसको आप दवाई की तरह यूज करें, जो वैज्ञानिकों ने आपको बताया है कि यदि इस दवा की इतनी मात्रा डालनी है तो आपने उतनी ही डालनी है। जैसे कि हम अपने जब बीमार होते हैं, डॉक्टर यदि कहता है कि ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खानी है, तो आप ऐसा नहीं करते कि अरे ये तो 3 दिन खानी पड़ेगी, आज मैं 4-4 गोली 4 बार खा लेता हूँ, नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो नुकसान करेगी
1: जी। बिल्कुल।
6: ऐसे ही फसल के अंदर यदि आप जो संस्तुति की गई है उससे ज्यादा मात्रा में दवाई डालेंगे या उसका कंसंट्रेशन मैं क्यों कह रहा हूं, पानी स्प्रे करते हैं पानी से
1: जी।
6: कई बार क्या करते हैं, दवाई तो हमको बताई गई कि आपको 2 ml प्रति लीटर या कहना चाहिए कि 200 ml दवा 1 एकड़ में डालनी है, 200 लीटर पानी में, बट हम लगा रहे हैं 100 लीटर
1: जी।
6: तो वो जो कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी उससे उस दवाई के उस रसायन के अवशेष चावल के अंदर रह जाएंगे, और चावल के अंदर अवशेष रहेंगे तो वो निर्यात में समस्या आएगी।
1: बिल्कुल। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है और संतुलित मात्रा में हमें रसायन का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर, बात यह आती है, देखिए हमारी फसल हमारे खेत में खड़ी है और किसान भाइयों को संतुलित मात्रा में ही रसायनों का इस्तेमाल करना है। और अगर हम अपनी फसल की बात करते हैं, जो हमारी बासमती की फसल है, तो गर्भावस्था के निकट है और गर्भावस्था आने वाली है, तो इस मुख्य अवस्था में हमारे भाइयों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कैसे देखभाल करनी है डॉक्टर साहब?
6: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी।
6: देखिए, पहला तो है, सीधी बात है, जीवन में खाना और पानी वही चलता है,
1: बिल्कुल,
6: चाहे हमारा हो, चाहे पौधे का हो, चाहे जानवर का हो। तो इस समय जो हमें ध्यान रखना है, एक तो पानी की मात्रा खेत में, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है
1: जी।
6: तो आपने लगातार बहुत पानी भर के नहीं रखना है जहां ऐसे क्षेत्र, लेकिन यदि आपके खेत में बाली आना शुरू हो गया है, निसरने लगी है, तो खेत में पानी भर के रखिए। उससे क्या होगा, सारी बाली एक साथ निकल आएंगी। यदि उस समय सूखा रहेगा तो गर्दन तोड़ बीमारी आने का डर रहेगा। और आप यदि खेत में अभी बाली नहीं आ रही है और लगातार पानी भरे हुए हैं, तो कृपया उस पानी को निकाल दें, या जब तक वो सूखे नहीं दूसरा पानी ना लगाएं। बस ये ध्यान रखें कि खेत के अंदर दरार नहीं पड़नी चाहिए
1: जी, जी, जी।
6: बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो पानी का प्रबंधन इस समय पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिन किसान भाइयों के खेतों में बाली निकल चुकी है और पूरा निसर गया है और दाना पड़ना शुरू हो गया है, वैसे अभी ऐसा बहुत कम ही खेतों में होगा, लेकिन यदि हो गया है तो वहां खेत को नमी बनाए रखें, वहां भी सूखा ना लगने दें। इसके बाद बात आती है, गोब अवस्था आ गई है
1: जी।
6: कैसे हमारा उत्पादन ज्यादा हो, कैसे हमारे दाने मजबूत बढ़िया बने
1: जी।
6: जो मंडी में जाएं तो सबकी लार टपके के नहीं, ये ढेरी तो मुझे खरीदनी है। उसके लिए जरूरी है, जैसे हम अपने शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको लेते हैं
1: जी।
6: किसान भाइयों ने यूरिया भी डाल ली, डाई भी डाल ली, एनपीके भी डाल लिया, वो सब तो हो चुका, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पोटास का प्रयोग जरूर होना चाहिए। पोटास का प्रयोग कैसे होगा, देखिए एसओपी आता है, सल्फेट ऑफ पोटास
1: जी,
6: है ना। आपने क्या करना है, 2 किलो एसओपी पोटास, जो पाउडर फॉर्म में आता है, जो इफको, क्रबको और बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, उसको आप लीजिए, 200 लीटर पानी में उसका घोल बनाइए 1 एकड़ के लिए
1: जी।
6: और पूरे खेत में बाली निकलना जैसे ही शुरू होने को हो, उससे जस्ट पहले आप स्प्रे कर दीजिए। ये जो आपका स्प्रे होगा, इससे क्या होगा, पोटास काम एक तो करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपके खेत में बीमारियों को कम लगने देगा, नहीं लगने देगा, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी
1: जी।
6: और दूसरा जो ये काम करता है पोटास, जैसे यूरिया हम डालते हैं तो यूरिया डालने से क्या होता है, पौधा बढ़ता है, हरा दिखने लगता है, बहुत सुंदर लगने लगता है। तो हमने अपनी खेती करनी है धान की पत्ती और पराली पैदा करने के लिए तो नहीं करनी, हम खेती कर रहे हैं दाने के लिए, और दाने को भरने का जो काम करता है वो करता है पोटास
1: जी।
6: और यदि इस पोटास के साथ बोरॉन भी आप ले लो तो समझ लो सोने पे सुहागा,
1: बिल्कुल।
6: तो पोटास और बोरॉन ये दोनों का स्प्रे कर दीजिए, आप देखेंगे दाने में चमक अच्छी आएगी, दाने का भराव अच्छा होगा, दाने का साइज बढ़िया बनेगा और आपकी फसल अलग तरीके से नजर आएगी। तो अभी गोव अवस्था में पानी के साथ साथ भोजन की बात करें तो इसका जो आपको मैंने बताया पोटास का स्प्रे जरूर करें,
1: बिल्कुल। तो हमारे किसान बहन भाइयों को पोटास और बोरोन का इस्तेमाल करना है, इसका स्प्रे करना है, जिससे कि अच्छे दाने हो और हमें बासमती की फसल से बढ़िया उत्पादन मिल सके। और डॉक्टर साहब देखिए, हम देखते हैं अपने खेत में कि कुछ हमारे जो पौधे होते हैं वो सामान्य खेत से लंबे हो जाते हैं और उसमें बालियां भी जल्दी ही निकल जाती है, तो ऐसे पौधों का हमारे भाइयों क्या करना है डॉक्टर साहब?
6: बहुत अच्छी बात है। देखिए कहानी सारी खेती में क्या है
1: जी,
6: खेती में ये है कि जो भी फसल में पैदा कर रहा हूँ वो अच्छे रेट में बिकनी, और अच्छा रेट कोई देना नहीं चाहता,
1: बिल्कुल।
6: देखिए ये ईमानदारी की बात है, यदि मैं व्यापारी हूँ और आप किसान लेके आए तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम मैं खरीद लूं,
1: बिल्कुल।
6: अब ये मेरे ऊपर है, ये किसान के ऊपर है कि मैं मजबूर करूं खरीदने वाले को, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा देके जाए, और उसको करने के लिए क्या करना होगा, मेरी गुणवत्ता, मेरी क्वालिटी, मेरे धान, मेरी फसल ऐसी होगी जो कोई भी खरीदार तुरंत लेने के लिए लालायित रहे और चार खरीदार हैं तो वो आपस में कंपटीशन करें, नहीं ये तो मैं लूंगा,
1: मेरी बात हो गई है
6: मेरी बात। अब होता क्या है, जब आप खरीदारी करते हैं, जब आप मंडी में जाते हैं तो खरीदार क्या करता है, वो हाथ डालता है ढेरी में और उसके दाने, यदि उसके 500 दाने उसके हाथ में आए हैं, बस वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है, एक दाना मुझे कोई दूसरा मिले,
1: अलग दिख जाए,
6: अलग दिख। और जैसे ही उसे दाना अलग दिखा
1: जी,
6: सीधे कहेगा जी 4000 का रेट है, इसमें तो मिलावट है, 3.5 ही दूंगा, और आपको मजबूरी में बेचनी पड़ेगी। तो जो बात आपने कही, कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, नीचे हैं, उनके बाली भी जल्दी निकल आई, वो वाइल्ड राइस है या पिछले साल का कोई दाना गिर गया था, वो पौधे
1: जी
6: जो अलग वैरायटी होगी। तो आपने यदि उनको खेत से नहीं काटा, भले ही वो आपके 50 पौधे भी नहीं होंगे एक एकड़ में मुश्किल से, और आपको उससे 10 किलो भी अनाज नहीं मिलना है,
1: बिल्कुल,
6: लेकिन जब मंडी में बेचोगे तो वो दाना उसके हाथ में जरूर आएगा और आपका हजारों का नुकसान हो जाएगा। तो इस समय जरूर मेहनत कर लें, जो भी पौधे आपको ऐसे नजर आए जो दूसरे तरीके के हैं, ऊंचे हैं या उसकी पत्ती चौड़ी है, बाली अलग है, दाना अलग है, मतलब वो रोग प्लांट है, मतलब दूसरी प्रजाति के हैं, उसको खरीदार मिक्सिंग मानेगा, इसलिए उनको काट दें। ये ना सोचें कि हम बाद में जब कटाई करेंगे, जब अलग निकाल लेंगे, छांट लेंगे, वो नहीं हो पाता है और उस चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। तो ये देखिए आपने कितना अच्छा पॉइंट लिया, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन इसका कितना व्यापक असर है, हजारों की बात है ये,
1: बिल्कुल।
6: तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो हमारे बहन भाइयों को इन बात का ध्यान रखना है, और जो ऊंचे नीचे हमारे खेत में पौधे हैं वो हमें अलग छांटने हैं, क्योंकि हमारी अगर बासमती की फसल है, अगर हमारे चावल शुद्ध होगा, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होगी, तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, साथ ही उसका मूल्य हमें बहुत ही बढ़िया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे बहन भाइयों को, हमारे भाई किस तरीके से और किन किन बातों को ध्यान में रखें कि हमारी फसल अच्छी तरह से निर्यात हो सके और विदेशों में भी, और हमारे जो स्थानीय मंडी है वहाँ हमें अच्छा मूल्य मिल सके।
6: देखिए, मैं चलते चलते किसान भाइयों को यही कहूँगा कि ये आकाशवाणी नजीबाबाद के द्वारा जो बासमती पाठशाला चलाई जा रही है, इसमें हर मंगल को आप सुनते हैं, उन बातों को आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बातें बताई जाती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, खास तौर से पेस्टिसाइड्स।
1: जी,
6: कई सारे पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जिनका उपयोग हम मना करते हैं, उसका कारण यही है कि जब वो चावल किसी देश में जाएगा और उस देश के मानक पूरे नहीं होंगे तो वहां से वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसका असर किसान के ऊपर पड़ता है, आपका भाव नहीं बढ़ पाता। तो जो भी प्रतिबंधित रसायन हर उसमें बताए जा रहे हैं उनको आपने नहीं डालना है, और सिर्फ वही रिकमेंडेड डालने हैं। जैसे फंजीसाइड की बात करें तो एजोक्सिस्ट्रोबिन है, डाइफेनोकोनाजोल है, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। तना छेदक एक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसके लिए आप क्लोरेंट्रोनिलीप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा आप यहाँ जो आप देखते हैं कि हर महीने की लास्ट मंगल को लाइव होता है उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके अलावा BEDF का एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 86-306-41-798। या तो आप इस नंबर पर पूछिए जो भी समस्या है, या अपने कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारियों से पूछकर उनकी सलाह से ही आपने केमिकल का प्रयोग करना है, खासतौर से बासमती में। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप अच्छे से कीजिए, ध्यानपूर्वक।

0: जित कर सके, तो रक्षा वाजा हमारे कार्यक्रम में। और आपने निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम। निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन, भाई देखो किसान भाइयों ने इस संबंध में डॉक्टर रितेश शर्मा जो कि निदेशक हैं BEDF मेरठ में, भाई उनसे भैया सुवेंद्र सिंह की ये बात सुनी और भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी ये बातचीत।
0: भाई देखो डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी है कि भैया हमें संतुलित मात्रा में रसायन का इस्तेमाल करना है, साथ ही भैया उसमें जितने पानी की आवश्यकता हो
1: जी
0: उतना ही पानी हमें डालना है जो भैया उसकी निश्चित मात्रा है, ना तो भैया वो पानी ज्यादा होना चाहिए ना तो भैया वो पानी कम होना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखो डॉक्टर साहब ने एक एक बात बड़ी नपी तुली बताई, बहुत काम की बात बताई, सब भाइयों ने उसको नोट भी कर लिया क्योंकि भैया अपनी बासमती के धान को हमें विदेशों में जो भेजना।
0: बिल्कुल, और देखो भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि भैया हमें जो हमारे प्रतिबंधित रसायन है
1: जी
0: उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है।
1: हाँ
0: साथ ही भैया देखो हमारी फसल गर्भावस्था में, तो जब फसल में भैया बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उस टाइम पर अगर हमारे खेत में पानी भरा होगा तो पूरे खेत में एक समान एक साथ बालियां निकलती हैं।
1: बिल्कुल ठीक बात है, तो देखो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा तब कहीं जाकर हम निर्यात योग्य बासमती धान को पैदा कर सके हैं।
0: बिल्कुल, और भैया इसके लिए हम अपनी फसल की शुद्धता पर भी ध्यान देना है।
1: जी
0: तो भैया अगर हम अपने खेत में कुछ उच्चे पौधे दिखाई देते हैं या भैया कुछ हम असामान्य पौधे हमें दिखाई देते हैं
1: हाँ
0: तो भैया हम अपनी फसल से अलग जो पौधे दिखाई दे रहे हैं भैया हम उन्हें बाहर निकालना है जिससे कि हमारी फसल की शुद्धता बनी रहे वो।
1: बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बात कही और देखो हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर हमारे किसान भाइयों को बासमती धान का बढ़िया उत्पादन लेना है, बासमती के संबंध में और जानकारी लेनी है, तो भाई प्रत्येक मंगलवार को सुनते रहें हमारा ये विशेष कार्यक्रम
0: बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। अरे मास्टर जी।
1: हाँ भैया।
0: अरे अपना खेत तो देखो कैसा लहलहा रहा है।
2: अरे भाई लहलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सही समय सही मात्रा सही कीटनाशक का हमने ख्याल रखा है।
0: बिल्कुल, और बासमती की खुशबू को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है
2: और भैया वैज्ञानिकों की सलाह को भी मानना है।
0: हाँ, देश किसान किसान का मान बासमती धान।
3: किसान भाई करें सही समय पर सही मात्रा और सही कीटनाशक का प्रयोग। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: किसान का मान बासमती, देश किसान बासमती।
5: खूब उगाओ बासमती, देगा फायदा बासमती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
6: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
0: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
6: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला और ये था इसका पाठ 14।
7: बिल्कुल, और देखो भैया इस पाठशाला के जरिए हमें ये पता चला कि भाई हमें गुणवत्ता युक्त बासमती कैसे पैदा करनी है।
0: बिल्कुल,
7: और अभी से हमें किन किन बातों का ख्याल करना है क्योंकि भाई थोड़ा लंबा टाइम है, तो हमारे किसान भाई लगातार निगरानी रखें और अपने फसल की देखभाल करें।
0: भाई देखो सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर का महीना ही देखभाल का है, निगरानी का है, शस्य क्रियाओं का है, क्योंकि भैया अक्टूबर के महीने में तो हमारी फसल कटनी शुरू हो जाए।
7: सही बात है।
0: और भैया जो भी हमने मेहनत करी, जो भैया हमारा हो रहा है, यानी कि रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं भैया।
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भाई देखो अगर हम अपने धान की बात करें, साथ ही भाई जो हमारी फसल खेत में खड़ी है उड़द की दलहनी फसल
7: जी,
0: तो भैया हमें इनमें से घास फूस निकालनी है, खरपतवार नियंत्रण करना भाई।
7: बिल्कुल, देखो भाई वैसे तो बारिश होश नहीं लेने दे रही, लेकिन भैया यो तो हमें हर साल झेलना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
7: देखो हम खेती कर रहे हैं तो गर्मी सर्दी बरसात यानी कि मौसम की मार से तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन भाई बढ़िया ही बात यह है कि हम ऐसी फसल जो भैया हमारे लिए दाल भी पैदा कर रही है, हमारे लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर रही है, हमारी भूमि को उपजाऊ भी कर रही है, उसकी तो विशेष देखभाल करनी और उसमें अब कुछ नहीं करना, विशेष रूप से खरपतवार का नियंत्रण करना।
0: भाई देखो तेज धार वाली खुरपी हो
7: ठीक,
0: और भैया खुरपी की सहायता से भैया हम निकाय गुड़ाई होती है हमारी, तो निकाय गुड़ाई के माध्यम से भैया हम जो घास फूस हमारे खेत में हो गई हो तो खरपतवार कर सकते हैं।
7: ठीक।
0: साथ ही भाई जब हम अपने खेत में बैठे और भैया निकाय गुड़ाई काम हमारा हो वो, तो उसमें हम ये भी ध्यान रखना है कि जो घने पौधे हैं भैया उन्हें हम उखाड़ ले।
7: हाँ।

0: और भैया अगर हमारे पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो पौधे की बढ़वार बढ़िया होगी और उत्पादन हमें जो उड़द की फसल से बढ़िया मिलेगा।
1: बिल्कुल। देखो भाई, ये जो उड़द होना, इसे भदो का उड़द कह मैं,
0: हाँ भदुआ।
1: भदुआ। इसमें भैया जब ये पक्का हुआ ना, और उस टाइम ही भैया नहान का टाइम आ जा,
0: हाँ
1: तो उस समय की जो भैया स्वाद है और भी मज़ेदार रहे। तो भाई इसकी देखभाल अभी से करनी बहुत ज़रूरी है। हम ये भी देख लें कि कोई कीट भी कोई रोग तो लग नहीं रहा, अगर ऐसा लगा तो उसका नियंत्रण भी करना है।
0: बिल्कुल।
1: कुल मिला के विशेष रूप से ध्यान तो हमें खरपतवार पे देना।
0: अब देखो धान की फसल भैया हमारे खेत में खड़ी है और धान की फसल भैया हम देखो कि बिल्कुल धान जैसा पौधा
1: बिल्कुल
0: हमारे खेत में होता,
1: ठीक।
0: बस उसकी पहचान ही हो कि भाई एक तो लंबाई थोड़ी ज्यादा हो और पत्ती उसकी चौड़ी हो धान सा। तो भैया इन पौधों को बाहर निकालना, साथ ही मोथे कुल के भी कुछ पौधे हों,
1: हाँ
0: है ना। तो भैया इन्हें हम क्या काम करो भाई, देखो खेत में तो पानी रहे तो हम पैंत भर भर कर, यानी कि भैया घूम घूम के
1: हाँ
0: सारे खेत में जो है घूम जावा और
1: हाँ
0: उन्हें भैया हाथ से पकड़ कर अगर उखाड़े तो वो आसानी से निकल जाए।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो, ऐसे मोथे कुल के पौधे, और जो भैया मुंजी का भैया जैसा ही हो,
0: हाँ
1: उन्हें तो जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमने काट दिया तो भैया फिर नौरस जगह हो, और कुल मिला के ना भी नौरस है तो भैया पोषक तत्व तो ले ही रहा, वो हमारी जो मुख्य फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें जो मैनुअली, यानी कि अपने हाथ से ही जो है उस घूम कर खेत पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना।
0: और भाई जो हमारे खेत की मेड़ है
1: हाँ
0: तो भैया हमने देखा होगा कि भैया मेड़ पर भी जो घास फूस हो जा और
1: हाँ
0: वो नीले फूल वाली सड़ंदा घास
1: ठीक।
0: वो भी हो जा भैया, और उसमें जो हानिकारक कीट रहते हैं वो भैया उसमें अंडे दे वो, क्योंकि उन्हें भैया आश्रय चाहिए
1: सही बात है।
0: और आश्रय उन्हें मिलता है मेड़ पर। तो
1: हाँ
0: भैया अगर खेत के चारों तरफ की मेड़ हमारी साफ होगी तो हानिकारक अंडे भैया उसमें वो नहीं देने के हैं, तो इसीलिए मेड़ का भी साफ सुथरा रहना बहुत ही आवश्यक है भाई।
1: बिल्कुल सही आपने कहा भैया, मेन से ही सारे काम शुरू होते हैं,
0: हाँ
1: और हम उसमें लापरवाही कर दें तो पूरे खेत में वो भैया खरपतवार फैल जाती है, और फिर उसका नियंत्रण करना भी भारी पड़ रहा है। इसीलिए भैया जब धान की फसल लगाई जा है, पहले मेन का दुरुस्तीकरण करा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर वो नहीं लगेगी तो उसमें इस तरह से घास फूस ये जमने भारी पड़ते हैं। तो भैया अगर हो गई है तो निगरानी करें भैया उसकी।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो बातचीत हम भाइयों से कर रहे हैं लेकिन भैया अभी लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो गंगाराम,
2: हाँ भैया झुमरू,
1: मैं देखो संदेश तो हमने सुन लिए
2: बिल्कुल,
1: और मैं देखो हम अपने कार्यक्रम में भैया खेती बाड़ी की जानकारी के साथ साथ भैया जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं भैया उनके बारे में बातचीत करते हैं
2: बिल्कुल,
1: और किसान बहन भाइयों को उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं
2: बिल्कुल। तो भाई ऐसी एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना,
1: बिल्कुल
2: देखो ये बड़ी कारगर योजना है और यूं कहें कि भारत में बहुत प्रसिद्ध भी हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसके बारे में तो जानकारी जरूरी भैया।
1: भाई देखो ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है भाई, इसमें सौर ऊर्जा से किसान भाइयों को जोड़ा जा रहा है,
2: ठीक,
1: और भैया डीजल पंप के अलावा और भैया बिजली के अलावा सौर ऊर्जा के माध्यम से भैया हम जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे ट्यूबवेल है जो भैया हमारे पंप है वो इसके माध्यम से हम चला सकते हैं।
2: बिल्कुल देखो भाई सरकार की योजना ऐसी है कि देखो ये डीजल है चाहे भैया बिजली है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिनका एक दिन विनाश होना है यानी के नष्ट होनी है या खर्च होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन जो सौर ऊर्जा है जब तक भैया सृष्टि रहेगी सौर ऊर्जा नष्ट नहीं होनी,
1: बिल्कुल,
2: तो एक ऐसी ऊर्जा जिसे जो है कभी खत्म ही नहीं होना,
1: हाँ,
2: तो उसका अगर उपयोग कर लिया जाए
1: बिल्कुल
2: तो भैया इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई बात ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई गई थी और विशेष रूप से ये देखा कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें भैया सिंचाई की दिक्कत ना हो या घर पे भी जो पंप लगाते हैं समरसेबल पंप लगा लिए घर के खर्चे के लिए, तो उसमें भैया जो बिजली खर्च होती है या डीजल खर्च होता है या जनरेटर या जो भी समझ लो आप मतलब किसी प्रकार की भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह अगर हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें और सोलर पंप ये लगा लें भैया बहुत लाभ हो जाएगा।
1: बिल्कुल भाई देखो बिजली के इंतजार की आवश्यकता नहीं है,
2: ठीक
1: भाई जैसे ही दिन निकलना शुरू होगा हमारा पंप चलना शुरू हो जाएगा।
2: बिल्कुल,
1: तो भाई देखो ये तो बहुत ही काम की चीज है, और भाई किसान भाई ये सोचते हैं भाई ये महंगी है और इसे हम कैसे लगवाएंगे, तो भाई इसमें हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों भैया सब्सिडी दे रही है,
2: ठीक,
1: और इसमें लगभग 60% तक की सब्सिडी है।
2: बिल्कुल,
1: जिसमें भैया 30% केंद्र सरकार और 30% ही भैया राज्य सरकार इसमें अनुदान देती है।
2: बिल्कुल सही बात कह रहे हो, देखिए भाई ये अलग अलग स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए कुछ पंप तो होते हैं 3 हॉर्स पावर के,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ पंप होते हैं 5 हॉर्स पावर के, तो दोनों हॉर्स पावर के जो पंप है उन पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी है।
1: बिल्कुल,
2: तो भाई देखिए कोई भी योजना है जब उसका आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो संबंधित विभाग से संपर्क आपको करना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या क्या प्रपत्र आपको लगने हैं वो जानकारी जरूर लेनी चाहिए, और भैया विशेष रूप से तो जो हमारे किसान भाई ऐसे जिन्होंने इसका लाभ उठा लिया अगर उनके अनुभव भी जान ले तो कोई बुराई की बात ना है।
1: भाई देखो आपने बताया डॉक्यूमेंट की बात, तो भाई देखो इसमें एक तो आधार कार्ड होना चाहिए,
2: ठीक,
1: शादी आधार कार्ड जो भैया मोबाइल से लिंक होना चाहिए,
2: सही बात
1: है ना भैया, और खसरा खतौनी वो इसके लिए भैया हमारे पास में जमीन है और हमें उसके लिए पंप की आवश्यकता सिंचाई के लिए,
2: ठीक,
1: साथ ही भैया पैन कार्ड होना चाहिए,
2: ठीक,
1: और भैया बैंक में हमारा खाता हो तो बैंक के पासबुक की कॉपी लगेगी,
2: ठीक,
1: तो ये तो भैया डॉक्यूमेंट है, और भैया हमारे फोटो, तो भैया इसमें हम जो है बैंक की सहायता से भैया इसमें आवेदन कर सकते हैं, या भैया अधिक जानकारी के लिए जैसे कि जिला कृषि अधिकारी हैं या उप कृषि निदेशक हैं या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो भैया यहाँ जाकर भी हम भैया इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
2: बिल्कुल देखो भाई आजकल जो आधुनिकीकरण का युग आया है उसमें सारे फॉर्म ऑनलाइन होंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये तो आप बिल्कुल समझ लें ऑनलाइन आपको सारा करना है और प्रथम आओ प्रथम पाओ के तर्ज पे योजना जो है लाभ पहुंचाती है।
1: हाँ,
2: लेकिन आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके जो भी आवेदन होगा उस पर सुनवाई जरूर होगी, आप संपर्क करते रहें, आपका नंबर निश्चित रूप से आएगा और भैया इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो भाई देखो बातचीत हो रही है और अब तो हमारे बहन भाई चाह रहे हैं भाई थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाओ, तो बताओ भैया क्या इरादा,
2: भाई आप बताओ आज क्या सुनवा रहे हो।
1: तो भैया आज हम सुनवा रहे हैं भीम सिंह से भाई श्री कृष्ण सुदामा के किस्से की यो रागनी।
2: ठीक है भैया, तो सुनते हैं यो रागनी।

0: जा कृष्ण जी से न्यू कह दे। तो भाई ने रागनी सुनी भीम सिंह से। और गंगाराम भाई,
1: हाँ जुमरू भाई, तो
0: भाई देखो अब बारी आ गई है मौसम की चिट्ठी की।
1: भैया जल्दी से मौसम की चिट्ठी पढ़ दो भैया।
0: भाई मौसम की चिट्ठी हमें मिली है मौसम केंद्र लखनऊ से।
1: ठीक,
0: और भाई यहाँ से प्राप्त चिट्ठी के अनुसार भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि भैया कुछ स्थानों पर वर्षा
1: हाँ
0: या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
1: अच्छा,
0: साथ ही भैया कहीं कहीं पर जो भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
1: बिल्कुल कुल मिला के भैया जैसा बादल बदली का मौसम आ रहा है उसी प्रकार से भैया हल्की हल्की बारिश या कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खेती किसानी के काम करें,
0: बिल्कुल
1: या भैया आपने पशुपालन को देखा है ना।
0: बिल्कुल भाई देखो हमें अपने पशुओं की भी देखभाल करनी है और भैया अपनी फसलों की भी अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। और
1: जी
0: अगर बारिश ज्यादा हो जाती है भैया तो हम अपने खेतों से फालतू पानी निकासी की भी व्यवस्था करनी है।
1: बिल्कुल। और भाई देखो, यो आपका अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जरिए कोई खेती किसानी पशुपालन बागवानी आदि संबंधी समस्या हो तो भैया हम खत लिख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खत लिखने के लिए भैया पता बताओ दें।
0: तो भैया हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63।
1: बिल्कुल, तो भैया इस पते पे हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। इसके अलावा भैया अगर आप खत नहीं लिख सकते, कोई और बात है, तो भैया उसके लिए आप जो है हमें फोन कर सकते हैं। माह के पहले शुक्रवार को भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है हेलो किसान,
0: जी
1: माह के तीसरे शुक्रवार को होता है भैया हेलो गन्ना किसान,
0: बिल्कुल
1: माह के आखिरी मंगलवार को हमारे यहाँ होता है भैया हेलो बासमती,
0: जी
1: और भाई आपको अपनी पसंद की रागनी लोकगीत सुनने हैं तो भाई उसके लिए भी हमारा दिन निर्धारित
0: बिल्कुल
1: है।
0: भाई उसके लिए शनिवार का दिन है। और भाई इसके अलावा अगर आप चिट्ठी नहीं लिख पाते हैं तो जो हमारा मोबाइल का नंबर है 9457-07-82-88 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो कुल मिला के आपके पास ऑप्शन बते रहे हैं भैया मैसेज भेजने के लिए, और सब फोन करने के लिए फोन नंबर बता देते हैं हम 9457-07-82-88।
0: बिल्कुल
1: इस पर भैया आप चाहे तो व्हाट्सएप कर दो, और चाहे आप फोन करके जो है निर्धारित समय में और निर्धारित दिन में आप अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भाई देखो, हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से, तो आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहो, हम आपके साथ बने रहेंगे।
0: बिल्कुल भाई देखो अब हमारे कार्यक्रम संपन्न होने वाला है तो अब दोनों भैया कर लेते हैं यहीं पे।
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर मोहम्मद जफर की गाई चंद गजलें सुनवाई जाएंगी। गीत संध्या कार्यक्रम सुनिएगा आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कवि गोष्ठी कार्यक्रम में आज रात्रि 9:30 पर प्रतिभाग करेंगे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और श्री नरेंद्र वर्मा। कवि गोष्ठी का संचालन करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनिएगा आज रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। और अब एक नजर कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है कार्यक्रम आज रात्रि कल रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात कार्यक्रम कल शाम 7:30 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति आप सुनेंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्य धारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्री चंद्रवीर का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 10:00। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर रजनी टोंक के गाए रोहिलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत में कल दोपहर 12:05 पर शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी सुनवाया जाएगा। मिड डे मेलोडी आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम संदेश.com आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:00 समय रहेगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत का। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं कल शाम 5:15 पर। कल शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर शिव कुमार कटियार से प्रमोद सिंह की बातचीत का विषय होगा पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग कारण लक्षण और उपचार। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:50 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम भैया।
2: हाँ रत्ना बहनी,
1: देखो ये बरखा बूंदी मैया जो है अपने पशुओं का बहुत ध्यान रखा जरूरी रहा थे।
2: बिल्कुल ध्यान रखे के देखो, जब बरखा मौसम होते तो अच्छा तो बहुत लागत है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत बीमारी लेके आते हैं।
1: सही बात कहा, तो वो खास करके जो संक्रमण वाली बीमारी होती है ये बरखा मैया बहुत फैलती है, और कुछ अस बीमारी होती है जिनका इलाज नहीं है।
2: देखो इनते बचे खाते अपने जो हरा गोरु है उनका नियमित जो है टीकाकरण वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर नियमित हम पंचे अपने हरा गोरुन का टीकाकरण कराए रह तो आवे वाले समय में या जो उन बीमारी है या जो इस समय जो समय चल रहा है वही बीमारी नहीं हो पाती है।
1: उनमें कुछ बीमारी ऐसी है कि अगर वो हो जाए तो अपने पशु का, जिसे हम पंच मनैन मैया कुछ बीमारी होती है कि उनका इलाज नहीं है, यू ना हो पाओ इसके खातिर हम पंच टीकाकरण कराए के उनका सुरक्षित कर सके थे।
2: हाँ बहनी, और यह चीज यह है देखो, जैसे एक बुखार चलत है लंगड़िया बुखार, वो इतना घातक हो जाते है कबो कबो, अगर हम समय तेरे क्या बचाव ना करी टीकाकरण के माध्यम से तो बहुत परेशानी हो जाते। तो अगर टीकाकरण करा दो तो भैया ये सब चीजें तेरे अपने हरहा गुरु का बचाव जा सकते है।
1: सही बात कहा, तो बहुत सारी बीमारी ऐसी है, लंगड़िया है, मुँह पखा है, ये सब बीमारी जो है अगर लग जाती है तो नुकसान बहुत होता है। दूसर जो है आपो कही है कहूँ न कहूँ नुकसान उठाए पड़त है।
2: हाँ, और नुकसान तब उठाए पड़त है जब हम पंचन कहीं खबरें नहीं पता चल पाती हैं।
1: सही बात कहा, तो खबरें जरूरी है।
2: आओ जान लीजिए आज की खबरें।
3: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए योगी सरकार कृषि वानिकी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को नीति को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। कृषि वानिकी का मतलब है खेतों में फसलों के साथ उपयोगी पेड़ पौधों को भी उगाना। इससे किसानों को फसल के अलावा लकड़ी, फल और दूसरे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार करना है और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत किसानों को बेहतर पौधरोपण तकनीक, बाजार और उचित मूल्य से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा, यानी खेत में फसल के साथ पेड़ भी और पेड़ों से किसान की अतिरिक्त कमाई भी। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: रत्ना बहनी।
1: हाँ ओम भैया।
2: देखो ये बेहरा अपन धान की फसल खेत में खड़ी है, लहलहा रही है।
1: सही बात कहा तो, लेकिन उनके साथ साथ कीट जो है वह बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है।
2: तो रत्ना बहनी आज की बातें जान लीन जाए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भैया तेरे।
7: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, धान की फसल आपके खेत में खड़ी है तो उसमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एनपी मल्ल साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि धान की फसल में कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
8: धान की फसल में कीट मुख्य रूप से जो प्रदेश में हमारे लगते हैं उसमें दीमक, पत्ती लपेटक कीट है, फुदका है, तना बेधक है, गंधी बग है।
7: और बीमारियों में?
8: उसके अलावा जो प्रमुख बीमारियां उसमें पत्ती धब्बा रोग है, सीथ ब्लाइट है, झोंका रोग है, उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट और बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक और फाल्स स्मट।
7: जी,
8: यही मुख्य रूप से बीमारियां हैं जो हमारे प्रदेश में इस समय फसलों में लग रही हैं।
7: तो दीमक से शुरू करें तो दीमक की पहचान हर किसान भाई कर लेते हैं, तो इनसे नुकसान क्या होता है और इनका प्रबंधन कैसे हो?
8: असल में दीमक विशेष करके वहाँ पर इसका प्रकोप होता है जहाँ पर पानी का उथला होता है, जहाँ पर पानी एक तरह से कहिए कि जहाँ पानी का भराव नहीं होता है या पानी जल्दी उतर जाता है वहाँ पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक सफेद रंग का होता है, पंखहीन होता है। असिंचित परिस्थितियों में इस कीट के श्रमिक जड़ों एवं तनों को खाकर पौधों को सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग न करें और अवशेष जो है उसको अच्छी तरह से सड़ा दें, क्योंकि कच्चा जो कहिए सेलुलोज होता है उसी को ये खाता है। और इसके नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना विशेष करके बायोपेस्टिसाइड है, इसका 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम असड़े गोबर में मिलाकर लगभग 10 दिन बाद कई स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रखने पर उसमें वो आकर्षित होता है और वहीं पर उसको मतलब प्रभावित कर देता है। इसके अलावा अगर हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो क्लोरपाइरीफास 20% 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के पानी के साथ, तो इससे कीट का प्रबंधन हो जाता है।
7: डॉक्टर साहब, हानिकारक कीटों में पत्ती लपेटक भी लगता है।
8: जी जी, इस समय पत्ती लपेटक विशेष करके 15 सितंबर तक बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें इसकी सुड़ियां पीले रंग की होती हैं तथा पत्तियों के दोनों किनारों को जोड़कर अंदर रहते हुए पत्ती हरे भाग को खुरच खुरच के खाती है, जिससे पत्तियों में सफेद रंग की पारदर्शी धारियां बन जाती हैं। अगर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो खेत में जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे मकड़ी है, मिरिड बग है, ग्राउंड बीटल है आदि का संरक्षण करना चाहिए। और अगर प्रकोप ज्यादा हो गया है तो झरबेरी का जो बेर होता है उससे अगर उस पत्तियों को उस पर घुमा दें तो उसकी पत्तियां खुल जाती हैं और सारे कीड़े जो है वो नीचे गिर जाएंगे और इनके प्राकृतिक शत्रु उनको खा जाएंगे। उसके अलावा हम नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल विशेष करके 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कर दें तो इस कीट का मतलब एक तरह से रिपेलेंट एंटीपिडेंट के कारण उसमें उसका प्रकोप कम होगा। यदि हम दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, अगर सारे उपाय हमारे फेल हो गए हैं, तो क्विनालफास्ट 1.25 लीटर अथवा क्लोरपाइरीफास 1.5 लीटर, ट्राइजोफास 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
7: डॉक्टर साहब, धान की फसल की बात चल रही है
8: जी जी,
7: तो फुदकों से काफी नुकसान होता
8: जी जी,
7: है।
8: विशेष करके भूरा फुदका, हरा फुदका और सफेद पीठ वाला फुदका तीन प्रमुख फुदके हैं, लेकिन इसमें भूरा फुदका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। विशेष करके वहां पर इसका प्रकोप होता है जहां पानी का भराव होता है वहीं पर। इसके शीश और प्रौढ़ जो भूरे रंग के होते हैं, पंख वाले भी होते हैं, बिना पंख वाले भी होते हैं, और वानस्पतिक अवस्था में गोलाई में इसके प्रकोप से पौधे गोलाई में सूखते हैं जिसे हापर बर्न करते हैं
7: जी।
8: और ये मधुस्राव भी छोड़ता है जिससे पूरी फसल काली हो जाती है और बीच से गोलाई में सूखती है
7: जी।
8: इसके अलावा सफेद पीठ वाला भी फुदका होता है
7: हाँ।
8: ये भी मतलब उसके शीश और प्रौढ़ उसके रस चूसते हैं और इससे पौधा पीला पड़ के सूख जाता है।
7: और इसी तरह से हरा
8: फुदका भी होता है, ये हरे रंग का होता है और विशेषकर प्रौढ़ के पंखों पर जो होता है इसके काले रंग के लास्ट में एक धब्बा होता है। और ये भी विशेष करके इसका शीश और प्रौढ़ रस चूसते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नोक से सूखने लगती हैं।
7: डॉक्टर साहब, चाहे भूरा फुदका हो, सफेद पीठ वाला फुदका हो या हरा फुदका, इनका प्रबंधन हो कैसे?
8: सबसे पहले इसके अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, मतलब जो उसका मुख्य फसल के अलावा जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों से मुक्त रखना है, उसी पे पलते हैं। पहले भूरे फुदके प्रकोप दशा में समय हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए, और प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नीम ऑयल 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि 8 से 10 फुदके प्रति झुंड दिखाई दे तो इमिडाक्लोपिड 150 मिलीलीटर अथवा थायोमेथेक्सेम 100 ग्राम अथवा एस्टामिप्रिड 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है।
7: यानी 2.5 एकड़ में,
8: 2.5 एकड़ में यानी प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा दानेदार अगर कीटनाशी का हमें प्रयोग करना है तो 2 से 3 इंच पानी में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 18 से 20 किलोग्राम और कार्बोफ्यूरान 20 किलोग्राम में से किसी एक रसायन को हम 2 से 3 इंच पानी में अगर हम उसको बुरकाव करें तो इस कीट का भी नियंत्रण कर सकते हैं।
7: डॉक्टर साहब, ये तो रहा जो धान में लगने वाले हानिकारक कीट हैं।
8: जी जी,
7: बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल की पैदावार प्रभावित कर सकती हैं?
8: इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भूरा काफी देखने को मिलता है। इसमें पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल आकार के अंडाकार धब्बे बनते हैं।
7: डॉक्टर साहब,

0: अगर भूरा धब्बा की शिकायत है धान की फसल में तो उसका प्रबंधन हो कैसे?
1: इस रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 75% 2 किलोग्राम अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% गुलाचिनी चूर्ण 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
0: कहीं कहीं शीत ब्लाइट की भी शिकायत आती है।
1: शीत ब्लाइट की शिकायत वहाँ पर आती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी का भराव होता है। इसमें देखेंगे तो इसका पत्र कुंचल यानी शीत अनियमित आकार के उस पर धब्बे बन जाते हैं जिसका किनारा गहरा भूरा और बीच का भाग हल्का भूरा होता है और इस रोग का प्रकोप भरे पानी वाले खेतों में अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि संभव हो तो खेत का पानी निकाल देना चाहिए और रोग के प्रकोप की दशा में कार्बेंडाजिम 50% अथवा थायोफिनेट 70% गुलनजो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% इसी 500 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, धान की फसल में झोंका रोग की भी शिकायत होती है।
1: हाँ, झोंका रोग की भी शिकायत होती है। इस रोग में पत्तियों पर आंख के आकृति यानी धब्बे बन जाते हैं जिसके बीच में राख के रंग के किनारे कत्थई रंग के होते हैं। इसके अतिरिक्त यह डंठलों, बालियों तथा गांठों पर भी इसके काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% घुलनशील चूर्ण 1 किलोग्राम अथवा हेक्साकोनाजोल 5% इसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, धान की फसल में मिथ्या कंडुआ यानी फाल्स स्मट की समस्या आ रही है।
1: जी, विशेष करके ये देखने मिला है कि जो हाइब्रिड धान है उसमें ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। इस रोग में बाली निकलने के बाद कुछ दानों के स्थान पर पीले रंग का पाउडर भर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में यदि संभव हो तो प्रभावित बालियां को तोड़कर उसको इकट्ठा करके बाहर नष्ट कर देना चाहिए और खड़ी फसल में कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण 500 ग्राम अथवा कापर हाइड्रोक्साइड 77% WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8004376051 800-43-76-051 800-43-76-051। किसान भाई अपने खेत की निगरानी करते रहें और इसमें मित्र कीटों का भी ध्यान रखें। उसमें यदि 2 भाग शत्रु है और 1 भाग मित्र कीट है तो हमें दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग करना है उसको आखिरी विकल्प के रूप में करना चाहिए। पहले जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए।
0: डॉक्टर NP मल्ल साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, कार्यक्रम में यहाँ आपकी सब जानकारी तो मिली। हाँ। लेकिन गौनाई कोई नहीं सुनक मिली।
3: अरे रत्ना बहनी, देखो अपने तखत पर यहाँ बाजा धरा हो और मूंगफली खात हो, चबैना चबात हो, ख्यात के काम करके लौटो और गौनाई सुनक मिल जाते तो जू एकदम प्रसन्न हो जाते।
2: सही बात कहा था, तो काहे ना पंच भाई बहन इनका एक गौनाई सुनवा दे जाए।
3: हाँ, तो चंद्र भूषण तिवारी भैया के स्वर में यह है विकास गीत, और सुना जाए, पंचो भाई सुने आनंद ले।

0: ओम भैया।
1: हाँ रत्ना बहनी।
0: देखो बहुत जने बढ़िया खेती कराते हैं, लगता है कि जैसे उनका देख के हम पंच कुछ सीखी और वैसे अपन काम नीक नीक करी, तो एक एक खातिन जो है आज के किसान भैया आए हैं वो भी बता रहे हैं अपने बारे में।
1: हाँ तो उनकी कहानी जान लें जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के रुपईडीह ब्लॉक के पूरे चैन कुंवर गांव के अनिल चंद्र पांडे भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया आप सफसली खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: डॉक्टर साहब मेरी पढ़ाई लिखाई आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, उसके बाद में फिर हम गांव गए तो देखा खेती पाती हमारी बहुत अव्यवस्थित थी, तो हमने सोचा कि नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना हम खेती पाती पर अपने ध्यान दें, तो खेती पाती अपने पास पर्याप्त मात्रा में थी तो इसी से अपने गांव का भी देख रेख करते रहे, गांव वालों के साथ में रहेंगे, माता पिता का देख रेख करते रहेंगे।
2: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: पहले जब हम खेती करना शुरू किए थे तो हमारे पास 7 एकड़ थी, 4 एकड़ जमीन हमने खरीदी है, अब इस वक्त हमारे पास 11 एकड़ है और लीज पर हमने लगभग 25 एकड़ जमीन ले रखी है।
2: तो कौन कौन सा फसल चक्र अपनाते हैं?
3: फसल चक्र में हम पहले गर्मी में धान लगाते हैं, धान के बाद फिर इधर आलू और गन्ना और आलू और चना, आलू और सरसों, आलू और मसूर सब लगाते हैं, साथ में सह फसली खेती करते हैं सारी।
2: और मिठास का भी उत्पादन करते हैं?
3: हाँ गन्ने का उत्पादन करते हैं, गन्ने के साथ सह फसली करते हैं और ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जिसमें एक फसल दूसरे फसल को नुकसान ना करे, नुकसान के बजाय ज्यादातर फायदा करे।
2: तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, क्या तैयारी है आप?
3: शरदकालीन में गन्ना बोने के लिए हमने अपने खेत में जो अगेती वैरायटी की धान और थोड़ा समय से पहले नर्सरी डाल दी थी, कुछ खेतों में सीधी बुआई भी की थी हमने। खेत तैयार करने के बाद उसमें हम गन्ना और आलू, गन्ना और चना, गन्ना और मसूर, गन्ना और सरसों ये सब लगाएंगे।
2: यानी मुख्य फसल गन्ने की होगी, उसके साथ सह फसली खेती में आलू होगा, चना होगा, मसूर होगी, सरसों होगी।
3: डॉक्टर साहब मुख्य फसल दोनों ही हैं, उसमें अपने जो क्षमता है उन फसलों की उससे वो कम उत्पादन नहीं देती हैं। जैसे आलू हमने लगाया था, कई साल पहले से लगा रहे हैं, तो आलू में 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन हमने लिया है, जो आलू की उत्पादन क्षमता इतनी ही होती है तो पूरा आलू भी उत्पादन लिया है।
2: और मिठास की फसल?
3: और गन्ना में हमने 600 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाला है, तो दोनों फसलें बराबर अपने क्षमता के अनुसार पैदा हो जा रही है, तो उसमें मुख्य फसल कोई नहीं, दोनों फसलें मुख्य होती है, दोनों उत्पादन बराबर दे जाती है।
2: तो जहाँ गन्ने के साथ आलू की सह फसली खेती की तैयारी है, तो बुआई और बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और आलू की खुदाई और फिर गन्ने की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: धान कटने के बाद उस खेत की हम गहरी जुताई करते हैं, गहरी जुताई करने के बाद उसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना दोनों डालते हैं,
2: गोबर की सड़ी खाद
3: के साथ ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डालते हैं, जिससे हमें कीटनाशक और फफूंदी नाशक नहीं डालना पड़ता है, लगभग वही जब आलू झुलसने का टाइम आता है तब डालना पड़ता है, और हम गन्ने में और आलू में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बवेरिया बेसियाना का प्रयोग करते हैं। तो जब हम जुताई करने के बाद ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना डाल देते हैं,
2: एकड़ पीछे कितना प्रयोग करते हैं?
3: एकड़ पीछे 2 किलो ट्राइकोडर्मा और 2 किलो बवेरिया बेसियाना डालते हैं।
2: और लगभग 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला दे?
3: हाँ 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में और 2 किलो बवेरिया बेसियाना 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला देते हैं। शाम के समय उसको डाल के फिर रात में ही जुताई कर देते हैं, क्यों उसमें धूप ना लगने पाए
2: जी। और फिर गन्ने के साथ जहाँ आलू की सफसली खेती है, तो वैरायटी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है।
3: ख्याति एक वैरायटी है और ख्याति ये वैरायटी ज्यादा टेम्परेचर में, जैसे हमें आलू अगर केवल लगाना हुआ तो देर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आलू जल्दी लगाना होता है तो टेम्परेचर सहने वाली वैरायटी होनी चाहिए। तो इसमें अगले साल मैं एक कुफरी नीलकंठ लाया था तो वो भी काफी टेम्परेचर में जमाव उसका अच्छा हुआ था, और कुफरी ख्याति जो है इसका भी काफी टेम्परेचर में जमाव अच्छा होता है, दोनों का उत्पादन भी बहुत अच्छा है।
2: और गन्ने की कौन सी प्रजाति?
3: गन्ने में तो हम अगले साल हमने 16202, 15023 और 14201 ये 3 वैरायटियां लगाई थी।
2: तो फिर बुआई में कौन कौन सी बारीकी करते हैं, दो गन्ने की लाइनों के बीच में कितनी आलू की लाइनें होती हैं?
3: दो गन्ने की लाइनों के बीच में एक लाइन आलू की लगाते हैं, लेकिन आलू थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि दो लाइन लगाएं, लेकिन दो लाइन के लिए हमें मशीन लानी पड़ेगी। साल बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मशीन बनी है कुछ जगहों पर, तो देख रहे हैं अगर वो मशीन आ जाएगी तो दो लाइन करेंगे। वैसे एक लाइन लगाते हैं, उत्पादन तो पूरा आता है लेकिन साइज बड़ी हो जाती है आलू की। और 4 फीट पर गन्ने से गन्ने की दूरी और 4 फीट पर आलू से आलू की दूरी करते हैं हम।
2: तो फसल की भूख मिटाने के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं?
3: सब फसली में डॉक्टर साहब आलू और गन्ना दोनों अच्छी खादों वाली फसलें हैं, ज्यादा खाद चाहती हैं, तो इसमें जितना गन्ने के लिए रिकमेंडेड है उतना गन्ने में डालते हैं, जितना आलू के लिए रिकमेंडेड है उतना आलू में डालते हैं।
2: अच्छा,
3: हाँ, दोनों की खादें अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि साफसली में कोई भी जब आप लगाओगे तो ज्यादा खाद लेने वाली फसलें हैं, अगर उनको खाद कम कर दोगे तो उत्पादन घट जाएगा।
2: यानी दोनों की भूख मिटाने के लिए जितनी संस्तुत मात्रा है
3: जी
2: उसका प्रयोग करते हैं।
3: उसका प्रयोग करते हैं।
2: फिर खड़ी फसल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं सफसली खेती में गन्ने के साथ आलू?
3: गन्ने के साथ आलू अगर सितंबर अक्टूबर में बोते हैं तो 1 हफ्ते में गन्ना जमाता है। गन्ने का शोधन जरूर करना चाहिए, गन्ने का शोधन नहीं करेंगे अगर हल्का भी पानी बरसा या ना भी बरसा तो जमाव खराब हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आलू और गन्ने के दोनों के बीजों का शोधन करें।
2: कैसे करते हैं?
3: एक दवा है हेक्साटॉप करके, तो उससे हम गन्ने के टुकड़े को उसमें डुबो लेते हैं और आलू को भी उसी में डुबो लेते हैं। और आलू और गन्ना बोने में जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो सबसे मुख्य बात यह है कि खेत जोतने के बाद तुरंत आलू बोना होता है। अगर आप खेत की जुताई किए और आलू का खेत सूख गया, ऊपर धूल आ गई, का आलू सड़ने लगेगा, तो एकदम हरा खेत होना चाहिए। तुरंत जुताई करके तुरंत आलू की बुआई शुरू कर दी जाए कि आलू के पास एकदम से नमी रहे, सूखी मिट्टी न जाए।
2: गन्ने में?
3: और गन्ने में तो आलू बोने के बाद फिर गन्ना डाल के लाइन में उसमें हल्की मिट्टी गिरा देते हैं।
2: और फिर क्या मेड़ बंदी?
3: नहीं, मेड़ उसमें बनी रहती है आलू में। जब हम आलू में बोते हैं एक डोरी रखते हैं, उसी के सहारे किनारे आलू रख देते हैं। फिर हमने टंच प्लांटर एक ले रखा है जो 4 फीट पर मिट्टी दोनों तरफ से एकदम से बीच में पहुंचा देता है। उस टंच प्लांटर से उसको आलू की लाइन को बीच में करके लाइन से टंच से खींच देते हैं तो वो आलू ढक जाता है। फिर बगल जो मिट्टी गिरती है उसी के बगल मिट्टी रख, फिर एक कुंड में ट्रैक्टर चलाते हैं, जो एक नाली बनती है एक बाहर करते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो हमें केवल आलू रखने के लिए मजदूर रखना पड़ता है, मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूर नहीं रखना पड़ता, ट्रैक्टर से चढ़ जाती है।
2: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है सफसली खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
3: पिछले साल हमने पेड़ी में भी साफसली खेती की थी। पेड़ी काट कर उसमें बुआई करके लाइन बना दी, तो लाइन से पानी देते थे बीच में कुंड से, तो उसमें हमने पेड़ी के खेत में चना, सरसों और गोभी लगाई थी, तो पेड़ी में भी हम साफसली लेने लगे हैं। हम सलाह यही देंगे कि अगर किसानों को खुशहाल रहना है और खुशहाल रहने के लिए साफसली खेती ही एक ऐसा उपाय है जो आपको घाटे से बचा सकती है।
2: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: मेरा मोबाइल नंबर है 9125086048, 9125086048।
2: अनिल चंद्र पांडे भैया आज आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: बहनी,
7: हाँ भैया,
6: देखो अपन जो खेती होते वह मौसम पर आधारित होते, और अगर हम पंचन के यहाँ मौसम के हाल पता चल जाते तो हम पंचे जो अपनी खेती में आगे क्या काम होते वो बड़ी आसानी से बड़े ढंग से कर पाए थे।
7: तो वही के खातिर मौसम की जानकारी देवा दीन जाए। मौसम की जानकारी जो प्राप्त हुई है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1 सितम्बर से लगाए के 7 सितम्बर तक में पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहूँ कहूँ स्थान पर बरखा होए की संभावना है। और जो चेतावनी की बात की जाए भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से लगा के 5 तारीख तक भारी से अत्यधिक भारी बरखा होए की संभावना है, और बाकी 6 और 7 तारीख का कोई चेतावनी नहीं है।
6: रत्ना बहनी, देखो पंच भाई अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है। अपन प्रतिक्रिया बतावे खातिर वही अपन पता नोट कर ले, अपन प्रतिक्रिया दे तो पता बताए दो।
7: तो पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन है 226001।
6: और जो अपने कार्यक्रम का ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। तो इस पर अपन प्रतिक्रिया भेजो भैया, ऐसे ही सुन रहो कार्यक्रम किसान वाड़ी। अब देखो बिरिया हो रही है, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत, कहा विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर, इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
5: उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। रसिन डैम का जलस्तर स्थिर रखने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ गंगा नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को बाढ़ गंगा और बागेन नदी के किनारे, घाटों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से गंगा और वरुड़ा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। वरुड़ा के जल भरवाव से प्रभावित कुछ परिवारों को पहले ही राहत शिविरों में रखा गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, जल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश और बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। उधर देवहा नदी की बाढ़ से कई गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए चित्रकूट और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।

0: भारत के आर्थिक वृद्धि को 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देश की संकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में अग्रणी हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके।
1: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वो आत्मनिर्भर हो।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 यूपीपीईटी के लिए पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह असुरक्षित स्थितियों को टालने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्कर के जोखिम को काफी कम करता है। यह पहल रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। उधर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कौशाम्बी के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और

0: सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडिया।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 7:32 होने को है। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए मोहम्मद जफर की गाई चंद गज़लें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद जफर की गाई चंद गजलें। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, कलाकार फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे धुन से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, मोहब्बत और चांद में एक अजीब सा रिश्ता है, क्योंकि चांद है ही इतना सुंदर कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की तुलना चांद की सुंदरता से करता है। और तन्हाई में दूर आकाश में चांद को देखकर अपनी प्रेमिका के अक्स को उसमें निहारने की कोशिश करता है और अपनी महबूबा की फरियाद करता है। तसव्वुर में ही सही एक चेहरा तो है, तसव्वुर में ही सही एक चेहरा तो है, तू मेरे साथ नहीं पर ख्यालों में तेरा पहरा तो है।

कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म से। गीतकार पी पंकज और संगीत दिया है राजकमल ने। श्रोताओं, प्रेमी अपनी प्रेमिका के चेहरे में चांद को देखता है, या यूं कह दें कि चांद में प्रेमी को अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखाई देता है। और तो और, प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर चांद की चांदनी को निहारने जैसा सुखद एहसास महसूस करता है। साथ ही प्रेमी को अपनी प्रेमिका के माथे की बिंदिया में उन सितारों की छवि नजर आती है जो चांद के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। घूंघट में चांद सा मुखड़ा, घूंघट में चांद सा मुखड़ा और मुखड़े में नैन सजीले, घूंघट में चांद सा मुखड़ा और मुखड़े में नैन सजीले, जो देखे वो जान से जाए, जो देखे वो जान से जाए, जो पाए वो जी भर जी ले।

कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका की खूबसूरती को लेकर अपने मन में कई तरह की कल्पनाएं करता रहता है कि उसकी महबूबा ऐसी होगी, वैसी होगी, और न जाने कितनी तरह की अच्छाइयों की कामना को लेकर वो अपनी प्रेमिका की तलाश करता है। मन ही मन बहुत खुश रहता है और एक अजीब सी धुन में खोया रहता है। फिजाओं में रंग बिखेरे तुम्हारा चांद सा चेहरा, फिजाओं में रंग बिखेरे तुम्हारा चांद सा चेहरा, मुझे बेचैन कर जाए तुम्हारा चांद सा चेहरा, मुझे बेचैन कर जाए तुम्हारा चांद सा चेहरा, मेरी खातिर सवरता है तुम्हारा चांद सा चेहरा।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, दिल एक मंदिर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और इसे संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, प्रेमी अक्सर छुपते छुपाते चांद की चांदनी में एक दूसरे को निहारते हैं और वो इस चांद से गुजारिश करते हैं कि चंदा तू थोड़ा सा ठहर जा, हमारे मिलन की ये बेला भी तेरे ठहरने से ठहर जाएगी और हमारी मुलाकात का वक्त यूं ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चांद कहां सुनता है, वो तो अपनी गति से मदमस्त होकर अपनी चांदनी को बिखेरता हुआ बस यूं ही निकलता चला जाता है। जो तेरे गुलाबी लब मेरे लबों को छू जाए, मेरी रूह का मिलन तेरी रूह से हो जाए, जमाने की साजिशों से बेपरवाह हो जाए, मेरे ख्वाब कुछ देर तेरी बाहों में सो जाएं, मिटाकर फासले हम प्यार में खो जाएं, मिटाकर फासले हम प्यार में खो जाएं, आ कुछ पल के लिए एक दूजे के हो जाएं।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे हमने लिया है पेइंग गेस्ट फिल्म से। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने। श्रोताओं, प्रेमी और प्रेमिका का प्यार चांद और चांदनी की तरह होता है। जहां चांद वहां चांदनी, जहां प्रेमी है वहां उसका प्यार है। लेकिन अगर कभी प्रेमी से उसका प्यार दूर होने लगता है तो वो अपने मन के जज्बातों को अपनी प्रेमिका तक शब्दों के जरिए पहुंचाता है और अपनी प्रेमिका से अपने प्यार का इजहार कुछ यूं करता है।

दिल में अजीब सा शोर क्यों है, दिल में अजीब सा शोर क्यों है, उलझी तेरे मेरे इश्क की ये डोर क्यों है। तेरे इश्क की गहराई और मेरे इश्क की तन्हाई, तेरे इश्क की गहराई और मेरे इश्क की तन्हाई। तेरे लबों में अरसों से कैद है, तो फिर तू इजहार इश्क से दूर क्यों है।

कभी कभी प्रेमिका अपने प्रेमी से शर्मा के अपने चेहरे को दोनों हाथों के बीच छुपा लेती है। तब दोनों हाथों से छुपे हुए चेहरे को देखकर प्रेमी मुस्कुरा उठता है। प्रेमिका के दोनों हाथों से छुपाए हुए चेहरे की खूबसूरती भी और बढ़ जाती है और प्रेमी कह उठता है, नजरों को मेरी ये गवारा नहीं कि वो किसी और को देखें, नजरों को मेरी ये गवारा नहीं कि वो किसी और को देखें, जब चांद ही मेरा जमीन पर हो तो फिर आसमां क्यों देखें।

हम दिल दे चुके सनम फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ ही गीत संध्या कार्यक्रम अब यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चिराग फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चिराग फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथी। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया था मदन मोहन ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुँचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
3: प्राइम मिनिस्टर फर्दर स्टेटेड दैट
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
6: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
7: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
8: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
9: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
8: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में MA की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protest. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Simi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
11: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
10: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports, India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration.
12: The declaration reaffirmed the idea of one earth, one family, one future for developing dialogue. SCO member states strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and said that double standards in combating terrorism are unacceptable. They also called for concerted efforts against terrorism, including the cross-border movement of terrorists. The declaration also stressed greater scientific, technical and innovative cooperation through active participation of young people, including the SCO Young Scientist Forum, an Indian initiative. Leaders welcomed the SCO Civilization Dialogue Forum to be held in India this year and noted India's initiative of the SCO Young Authors Conclave. The declaration also provides for including English as an official and working language of the SCO. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
10: The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions.
3: Besides the Bishkek Declaration, 4 MOUs and over 20 decisions and statements were adopted at the summit in the fields ranging from climate, nuclear safety, energy conservation, and combating drug addiction. India led and supported several initiatives in the Bishkek Declaration, such as English in SEO Charter as the official language, Civilization Dialogue Forum, Young Scientists Forum, and Young Authors Conclave.
10: The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SEO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from 31st August to 1st September. Prime Minister Modi has now left for New Delhi after concluding his successful visit to the two countries. This is Akashvani giving you the news.
13: For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on PB Shabd.
10: Welcome back. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the Progress of Watershed Development Component, WDC-PMKSY, of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes, and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification, and sustainable agricultural practices, among others. More from our correspondent.
14: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the 6 objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026, an improvement of 16.31 points. The ministry said that the scheme is being implemented through the convergence of 36 central schemes of 11 ministries and departments along with the state schemes and private sector participation. Dhan Dhanya Krishi Yojana was approved by the Union Cabinet last year and was launched on 11th October 2025. Shiva Mishra, Akashvani News, Delhi.
10: During the review of WTC-PMKSY, the Agriculture Minister called upon the states to ensure speedy implementation of projects and clear and measurable outcomes at the grassroots level. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to the 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to student protests mentioned in applications filed by the Centre, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The Apex Court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present in the Jantar Mantar protest as they had serious criminal antecedents. The bench recorded the statement of Solicitor General Tushar Mehta, who represented the centre. He said a policy to provide compensation to the families of students who died by suicide following the cancellation of NEET UG 2026 will be formulated within 3 months. The bench also recorded a statement by the Cockroach Janata Party, CJP, announcing the withdrawal of its proposed protest march in Delhi on the 5th of this month. CJP spokesperson Saurav Das told the bench that the decision was taken in view of steps initiated by the centre to withdraw cases registered against the protesters. The government has welcomed the decision announced by CJP to call off the protest scheduled for September the 5th. Talking to media in New Delhi, Union Minister Jagat Prakash Nadda assured that the cases registered against the protesting students would be withdrawn and that no harsh action would be taken against them in the future.
7: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए
15: Keeping the future of students in mind, we had assured that the cases registered against the protesting students would be withdrawn. In this regard, we had also held discussions with the governments of Bharatiya Janata Party ruled states, and we were committed to fulfilling that assurance. We welcomed the decision announced by the CJP spokesperson at the press conference to withdraw the proposed protest demonstration scheduled for September 5.
7: विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं.
10: The government has said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. The ministry has informed that 2 Kanda Express consignments have been dispatched from Nashik as part of this initiative. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. The new stock limit is aimed at curbing hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Goods and services tax or GST collections in the last month witnessed a significant rise to 1,99,853 crore rupees, marking a 14.8% year-on-year increase from 1,74,116 crore rupees in August 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic GST revenue stood at 1,37,249 crore rupees, up 9.3% from a year ago. GST collections from imports surged 29% to 62,604 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop-up. This is Akashvani. You're listening to News at 9. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates. Welcome back. You're listening to News at 9. Director General of Akashvani, Rajiv Kumar Jain, today inspected border area transmissions in Punjab, Jalandhar and Amritsar and reviewed working of both these stations and of the Union Territory of Chandigarh as well. He also reviewed the ongoing developmental projects of Akashvani in Punjab. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has crossed 1,000, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority said around 4,000 people still remain missing, including 583 foreigners and 83 security personnel, while nearly 12,000 people have been rescued. Nepal's hospitals are struggling to cope up with the growing number of unidentified bodies. Rescue teams are still trying to trace more than 600 workers and employees in various hydropower project sites in flooded areas, of which many are believed to be trapped in tunnels. Expert teams from India are assisting the Nepalese rescuers in these operations. The Ministry of External Affairs of India has said 163 Indian nationals have been rescued so far. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall is expected over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi at isolated places. In men's cricket, India's 15-member squad for the upcoming three-match T20 international series against Afghanistan has been announced. Shreyas Iyer will lead the Indian side with Tilak Verma as vice-captain. A report.
16: Jasprit Bumrah has returned to the squad subject to fitness clearance, with Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar and Harshit Rana also featuring in the squad. The series will be played at New Delhi's Arun Jaitley Stadium on the 13th, 15th and 17th of this month, with Afghanistan designated as the host. India's squad combines experienced campaigners and young talent like Vaibhav Suryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan, with Shreyas Iyer as captain and Tilak Verma as vice-captain. Besides Bumrah and Rana, the bowling attack includes Arshdeep Singh, Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi. With Swati Rakheja, Reshma Tiwari, News Desk.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi calls on SEO member countries to unite against entire terror ecosystem. SEO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 March following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East MP and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
17: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इको निजाम के खिलाफ मुत्तहद होने पर जोर दिया है। एससीओ समिट नताइज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वजीर आजम ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरहमी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर कल शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और मर्दों के

एनआरसीआर को आगे बढ़ाने की इजाजत दी है जो जंतर मंतर एहतजाज में मौजूद थे और जिनका संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया जो मरकज की जानिब से पेश हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। नेपाल में आए अचानक तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है। वहीं हिफाजती फोर्सेज की जानिब से मुल्क के 8 मुतासिरा जिलों से मजीद लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। कई जिलों की नदियों में सतह आब के बढ़ने की वजह से सैलाब के ताजा अलर्ट और रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से बचाव कारकुनों को फंसे हुए लोगों को निकालने के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मर्दों के क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे जबकि तिलक वर्मा नायब कप्तान होंगे। इस सीरीज के 3 मैच 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी टीम में जगह दी गई है। जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की वजह से जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेंजेन में जारी चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की उन्नति हुडा बाहर हो गई है। आलमी नंबर 25 हुडा को खवातीन के सिंगल्स के शुरुआती राउंड में आलमी नंबर 12 जुनूबी कोरिया की किम ग्वांग ने सीधे सेटों में 10-12 और 18-12 से शिकस्त दी। अब सारी तवज्जो मुकाबले में रह गए भारतीय खिलाड़ियों पर मरकूज हो गई है। कई सरकारदा बैडमिंटन खिलाड़ी कल अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से दहशतगर्दी के पूरे इकोनिज़ाम के खिलाफ मुतहद होने पर जोर दिया। SCO समिट नतायज पर मबनी 13 माहिदों के साथ इख्तिताम पजीर हुई जिसमें दहशतगर्दी, आबोहवा से मुतालिक इकदामात और डिजिटल इश्तराक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने PM धान्य कृषि योजना की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने नतायज पर मबनी निगरानी और किसानों को फवायद की बरवक्त फरामी पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तलबा के एहतजाज के सिलसिले में मुल्क भर में दर्ज FIRs को रद्द करने का हुक्म दिया है। CJP ने मरकज की जानिब से यकीन दहानी के बाद 5 सितंबर का अपना मुजवजा मार्च वापस ले लिया है। इसके साथ ही आकाश

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और श्री नरेंद्र वर्मा। गोष्ठी का संचालन किया है डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के स्टूडियो में आज आयोजित इस गोष्ठी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ हैं सहारनपुर से राजीव कुमार उपाध्याय जी, नरेंद्र कुमार मस्ताना जी, मुजफ्फरनगर से सुशीला शर्मा जी, बिजनौर से डॉक्टर अशोक कुमार जी और मैं स्वयं धामपुर से अनिल कुमार शर्मा। अनिल, आइए गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। मैं बुला रहा हूँ राजीव कुमार उपाध्याय को, जो सहारनपुर से आए हैं, उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ कि घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा, घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा, नल हिचकी लेकर उतरा है चल जाएगा। भाई राजीव कुमार उपाध्याय जी,
2: धन्यवाद। मेरी जो प्रथम रचना है वो रामायण के एक प्रसंग से है, जो अरण्य कांड में है। मैं प्रस्तुत करता हूँ। पशु पक्षी सहमे हुए थे, पर्ण कुटी सुनसान थी, भीतर बाहर नीरव सा था, बिन सीता वीरान थी। लक्ष्मण चिंतित हो गए, राम हुए भयभीत, लगे ढूंढने

0: राम फिर कहाँ गया मनमीत, बगिया उपवन नदिया झरना, राम ढूंढने लगे सिया को, नैनन चातक से भये ढूंढे अपनी प्राण प्रिया को। लगे कांपने पांव राम के, आशंका से मन घबराया, बिना जान की सूनी कुटिया, कैसा है ये संकट आया। कहने लगे राघव लखन को, देखो यहाँ फल बिखरे कैसे, पर्ण कुटी के इस आंगन में पुष्प लता से छितरे कैसे।
1: बहुत सुंदर चित्र, वाह वाह वाह।
0: कोई हरकर ले गया या हो गई हिंसा का शिकार, आंगन के चिन्ह बता रहे कि किया सिया ने प्रतिकार।
2: क्या बात,
0: तुम ही बताओ पशु पक्षियों, कोई यहाँ अनिष्ट हुआ था, रक्त हो गए नेत्र राम के, व्याकुलता में क्रोध छिपा था। जिसने किया है दुष्ट कर्म, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, जहाँ छिपा ज्ञात अज्ञात में, मैं उसको मार गिराऊंगा। कहीं हो न जाए राम के इस गुस्से का विस्फोट, दिन करने चुपचाप से ली बादल की ओट। निस्तब्धता सी छा गई, सुन हुआ आकाश, लक्ष्मण को होने लगा संकट का आभास। तन गई भ्रुकुटी राम की, कसकर थाम लिया कमान को, तरकस में हुए बाण सतर्क, जैसे आतुर हो प्रयाण को। सुनो लक्ष्मण ध्यान से देखो, बाण मेरा यह व्यर्थ नहीं है, जिस दुनिया में सिया नहीं है, उस दुनिया का अर्थ नहीं है। अपने पूर्ण श्वास खींचकर मैं इसका संधान करूंगा, बिन सीता बेकार सृष्टि, मैं इसको शमशान करूंगा।
1: क्या बात,
2: क्या बात।
0: वातावरण निस्तब्ध हो गया, भय से भरा हुआ परिवेश, राम बाण घर चल गया, शायद रहे कोई भी शेष। बोले लक्ष्मण सहस ने, अग्रज करो यह ध्यान, जन्म हुआ है आपका करने जन कल्याण, बाण आपका चल गया, होगा यह परिणाम, पापी मरेंगे निसंदेह, पर सब खोएंगे प्राण। स्मरण करें उस ज्ञान का, गुरुकुल में जो हमें मिला, सर्वे भवन्तु सुखिने में ही सच्चा मानव ज्ञान बसा। सनातन परंपरा जानते मुझसे बेहतर आप, न निर्दोष मरे कोई, न हो किंचित पाप, पेड़ पौधे जीव जंतु सबके रक्षक आप हो, ऐसा कर्म न कीजिए जो बाद में संताप हो। राघव सहज से हो गए, सुनकर लखन की बात, सत्य ही यह ठीक है बात तुम्हारी भ्रात, कहकर इतनी बात को तर्कस रखा बाण, तब जाकर आए सभी के फिर प्राणों में प्राण। सीख सनातन ज्ञान की है सर्वथा उपयुक्त, प्राणियों का साथ ले हम ढूंढे अभियुक्त, हम ढूंढे अभियुक्त मारकर उसे मिटाएं, दोषी को ही दे सजा, निर्दोषों के प्राण बचाएं, और जग में सज्जन ही बसें, दुर्जन जाएं प्राण से, दुनिया एक दिन सीख ले इस सनातन ज्ञान से, इस सनातन ज्ञान से, इस सनातन ज्ञान।
1: बहुत सुंदर राजीव जी, बहुत सुंदर। दुनिया एक सीख ले इस सनातन ज्ञान से, मेरा अनुरोध राजीव जी से, और
0: जी,
1: पढ़े थोड़ा सा।
0: एक रचना है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, एक शब्द है चल जाएगा, उस चल जाएगा शब्द को मैंने इसमें समाहित किया है। घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा, नल हिचकी लेकर उतरा है चल जाएगा
1: जी,
0: दीवारों पर सीलन है बस थोड़ी थोड़ी, चूहों ने सोफा कुतरा है चल जाएगा।
2: क्या बात,
0: घर
2: क्या
0: का
2: बात।
0: थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा।
1: मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत अच्छा चित्रण करा राजीव जी, बहुत सुंदर।
0: छज्जे से कल रेवट टूटा थोड़ा ही था, झरझर कर रंग भी छूटा थोड़ा ही था, अभी बहुत मजबूत दीवारें लगती घर की हैं, शायद अभी नहीं खतरा है चल जाएगा, घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा, और पायदान से निकल दरारें झांक रही हैं, शायद मेरी जिजी विशा को आंक रही हैं, और पायदान को बदल चटाई रख दी मैंने, बाकी फर्श साफ सुथरा है चल जाएगा, घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा।
2: बहुत सुंदर,
0: धन्यवाद।
1: घर का थोड़ा रंग उतरा है चल जाएगा, बहुत सुंदर पंक्तियां भाई राजीव कुमार जी। अब मेरा अनुरोध करता हूँ आदरणीय नरेंद्र कुमार मस्ताना जी से, उन्हीं के एक माहिया के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ।

0: भाई नरेंद्र कुमार मस्ताना जी।
1: धन्यवाद। एक लोकगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का, चौकीदारा करता दिखे घर के गेट का।
0: वाह।
1: गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का, चौकीदारा करता दिखे घर के गेट का। मेला ठेला एक न छोड़े रोज पीठ में जावे, मेला ठेला एक न छोड़े रोज पीठ में जावे, रंग बिरंगी चिलम ढूंढ कर जब देखो तब लावे। एक साल के पूरे गुस्से दो कड़िए में भर ले, पिला पिला कर दिन भर हुक्का सबको अपना कर ले। तम्बाकू बोला वे सबसे ऊंचे रेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन।

0: पर मारे जेठ का। और छंद देखिए कि जेठानी की एक सुने ना नखरे करे हजार, हल्का सा वा काम बता दे कर दे बंटाधार। जेठानी की एक सुने ना नखरे करे हजार, हल्का सा वा काम बता दे कर दे बंटाधार। दूध मलाई भर भर बेल्ले कितने उसे पिला दो, दूध मलाई भर भर बेल्ले कितने उसे पिला दो। मट्ठे के संग साग चने का हर दिन उसे खिला दो। चट कर जावे
1: माँ,
0: चट कर जावे पल में हलवा भरी प्लेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। और छंद देखिए
1: जी स्वागत
0: कि जो भी काम हाथ में ले वे रात उसी में कर दे, जो भी काम हाथ में ले वे रात उसी में कर दे। बात बनाने में है पक्का बातों से तर कर दे, लिखा पढ़ी में पूरा जीरो अक्षर एक न जाने। इसीलिए खेतों में जावे डंगर ढोर चराने, मुंह ना पोछा होगा उसने कभी स्लेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। मुंह ना पोछा होगा उसने कभी स्लेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का।
1: क्या बात है, वाह।
0: और अगर कहीं पर झगड़ा हो जा सबसे पहले जावे, अगर कहीं पर झगड़ा हो जा सबसे पहले जावे। कैसा भी हो किस्सा जाकर अपनी टांग अड़ावे, दिखे तो पतला दुबला सा हाथ चलावे पूरे। मार धाड़ में सबसे आगे घटके भांग धतूरे, ससु बोले मारा छोरा पक्के ढेठ का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। ससु बोले मारा छोरा पक्के ढेठ का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले दिन भर मारे जेठ का। और गीत का अंतिम क्षण दे रहा हूँ
1: स्वागत
0: कि फिरे कुंवारो जैसा गा में दिन भर दाना डाले, फिरे कुंवारो जैसा गा में दिन भर दाना डाले। डाल डाल की चिड़िया चहके कैसे हिया संभाल ले, फिरे कुंवारो जैसा गा में दिन भर दाना डाले। डाल डाल की चिड़िया चहके कैसे हिया संभाल ले। एक मरी तो पीछे पड़ जा घर तक पिंड न छोड़े, जेठानी को पता चले जब हाड़ गोड़ बातोड़े। यूं तो 40 का है पर छोटी अंगलेट का, गुड़ गुड़ हुक्का बोले।

0: बहुत सुंदर,
1: बहुत
0: बहुत सुंदर,
1: सुंदर
0: वाह वाह वाह
1: लाजवाब।
0: वाह, गुड़ गुड़ हुक्का बोले महाराज जेठ का। इस सुंदर लोकगीत के बाद मैं अनुरोध कर रहा हूँ बिजनौर से हमारे बीच पधारे डॉक्टर अशोक कुमार जी से, उन्हीं की चार पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, पढ़ेगा कोई क्या मैं जो लिख रहा हूँ, यूं कहते हैं लिखना हुआ ही अमर है, यूं कहते हैं लिखना हुआ ही अमर है, मैं चैनो अमन की दुआ लिख रहा हूँ, मैं चैनो अमन की दुआ लिख रहा हूँ भाई डॉक्टर अशोक कुमार।
2: धन्यवाद अनिल जी, मैं एक छोटा सा गीत आपके सम्मुख पढ़ता हूँ।
3: स्वागत।
2: जो मैंने अपनी कविता को ही समर्पित किया है।
3: वाह।

0: क्या बात है,
1: तुम
0: क्या बात
1: ही
0: है।
1: हो मेरे घर की रौनक, प्रियो मेरा आधार तुम ही हो।
0: क्या बात,
1: बहुत सुंदर
0: क्या बात।
1: गीत।

0: बार तुमने बहुत सुंदर समर्पण किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर। हमें कुछ दोहे जिनको दुमदार दोहा कहा जाता है,

हे सम्मुख शिष्टाचार खोजन उन्हीं न जाइए बिन खोजे भर मार देख कर मन भरमाए हंसी हम रोक न पाए देख कर मन भरमाए हंसी हम रोक न पाए। और होता क्या है आजकल आप देखते भी होंगे कि सम्मुख गलबैयां करें पीछे करें विरोध सम्मुख गलबैयां करें पीछे करें विरोध संबंधों पर आज के आता हमको क्रोध देख कर।

0: देख कर मन भरमाए, हंसी हम रोकी ना पाए,
1: वाह वाह वाह, बहुत
0: देख
1: सुंदर,
0: कर
1: बहुत सुंदर
0: भरमाए।
1: तुम दार दो है।
0: हमारे भी जो कुशल संचालन कर रहे हैं अनिल कुमार शर्मा जी धामपुर से, और आजकल वो एक नई विधा लेकर आए हैं, भाई को सुनाए अपनी रचना तुम्हारे लिए।
1: धन्यवाद अशोक जी। जैसा आपने जिक्र किया, फाइकू आज नई विधा हिंदी साहित्य में आई है। मैं दो चार फाइकू और एक और रचना यहाँ प्रस्तुत
0: स्वागत
1: करता हूँ।
0: स्वागत
2: स्वागत।
1: कि मेला देखो भरा हुआ सब खेल खिलौने तुम्हारे लिए, मेला देखो भरा हुआ सब खेल खिलौने तुम्हारे लिए, ये सर्कस तमाशा नौटंकी नर्तकी और बौने तुम्हारे लिए, टिकिया समोसे जलेबी भरे ये पत्ते दौने तुम्हारे लिए, कुकर कढ़ाई तवा चिमटा ये कटोरी भगौने तुम्हारे लिए, कालीन कंबल दरिया रिजाई ये चादर बिछोने तुम्हारे लिए। एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। राधा से बिछड़ने के बाद कृष्ण जी अंतिम समय में उनसे मिलते हैं। राधा जी का अंतिम समय है, और उस दृश्य को ध्यान में रखते हुए आप इस रचना का आनंद लें।

0: वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर।
1: धन्यवाद। इस गोष्ठी के शीर्ष पायदान पर मैं आमंत्रित करता हूँ मुजफ्फरनगर से हमारे बीच पधारी मधुर गीतकार आदरणीय सुशीला शर्मा जी को, उन्हीं के एक दोहे के साथ धार।

0: प्यासे होठ लगे हंसने,
1: वाह वाह वाह,
0: प्यासे होठ लगे हंसने।

सुख दुख आती जाती छाया माया ठगनी बन डोले। सुख दुख आती जाती छाया

0: वाह, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर, बहुत
0: बहुत
1: सुंदर।
0: सुंदर
1: मैं बन
0: अशरा।
1: जा रहा गली गली आवाज लगाता हूँ।
2: कुछ दोहे मैं प्रस्तुत करती हूँ जो बेटी पर लिखे हैं, सुनिएगा।
0: स्वागत है।

0: बहुत सुंदर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: समसामयिक दोहों के साथ हमारी गोष्ठी आज के शीर्ष पर पहुंचती है। आज की गोष्ठी में हमारे साथ थे बिजनौर से डॉक्टर अशोक कुमार जी, धामपुर से मैं स्वयं अनिल शर्मा अनिल, सहारनपुर से नरेंद्र कुमार मस्ताना जी, भाई राजीव कुमार उपाध्याय जी, और गोष्ठी को शीर्ष पर पहुंचाया मुजफ्फरनगर से पधारी आदरणीय सुशीला शर्मा जी ने। आप सबका बहुत बहुत आभार।
2: अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी। इसमें प्रतिभाग कर रहे थे श्री राजीव उपाध्याय, श्रीमती सुशीला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार और श्री नरेंद्र वर्मा। संचालन किया था डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
3: हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी लखनऊ है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण। प्रस्तुति आकाशवाणी वाराणसी की है।
4: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम खेल दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ता। पहली भेंट वार्ता का विषय है शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। जानकारी देंगे राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह। साथ ही आप सुनेंगे एक और भेंट वार्ता जिसका विषय होगा क्या है रेस वॉकिंग। जानकारी देंगी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव। तो कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से बातचीत कर रहे हैं चंदन सिंह।
5: श्रोताओं नमस्कार, निशानेबाजी यानी शूटिंग एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार का फैसला मात्र मिलीमीटर के अंतर से तय होता है। यह खेल एकाग्रता का है, शारीरिक स्थिरता का है और मानसिक दृढ़ता का है। और पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराकर देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन एक आम खिलाड़ी इस खेल को कैसे समझ सकता है और राष्ट्रीय स्तर का या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज कैसे बन सकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सत्यम सिंह जी। आप एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे हैं, साथ ही साथ आप एक शूटिंग कोच भी रहे हैं और वर्तमान में भारतीय टीम में चयन हेतु आप ट्रायल दे रहे हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद सर।
5: तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये शूटिंग या निशानेबाजी जो खेल है ये किस तरह की ये प्रतिस्पर्धा है, ये खेल क्या है, इसके बारे में बताएं।
6: प्रतिस्पर्धी खेल निशानेबाजी पूरी तरह से एक सटीक अनुशासन है और आपके सार्थक निर्णय का ये प्रमाण है कि अगर आपका निर्णय अनुशासित है तो आप सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भेदक बन सकते हैं
5: जी।
6: और एक चीज इसमें और भी हम जोड़ना चाहते हैं कि इसमें नियंत्रण और अनुशासन, ये दो चीज ऐसी है जो कि मुख्य रूप से इसका अनुपालन करते हैं
5: जी। अच्छा, निशानेबाजी की अगर हम बात करें या जिसे शूटिंग कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
6: सर, मुख्य रूप से निशानेबाजी में तीन तरह की प्रतिस्पर्धा होती है
5: जी।
6: एक राइफल, दूसरी पिस्टल और तीसरी शॉटगन, जिसे हम अपने भाषा में बंदूक भी कहते हैं
5: जी।
6: और इन तीनों प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि पिस्टल में हमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज में मैचेस होते हैं
5: जी।
6: जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल एंड 50 मीटर फ्री पिस्टल एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल
5: जी।
6: और उसी तरह से राइफल वर्ग में 10 मीटर राइफल, 50 मीटर राइफल प्रोन, 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन और 300 मीटर के लिए इस वर्ग में हमारी बिग बोर की प्रतियोगिता होती है जो कि 300 मीटर की दूरी से खेली जाती है। उसमें भी दो इवेंट होते हैं, एक 50 मीटर, एक 300 मीटर प्रोन और 300 मीटर थ्री पोजीशन
5: जी। अच्छा, जो मुख्य जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो किस तरह की होती है, जैसे आपने 10 मीटर की बात की एंड देन फिर बाद में आपने और अन्य प्रतिस्पर्धाओं के बारे में बताया, आपने कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में बताया, तो वो कैसी होती है, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें आप।
6: देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे इस खेल में प्रतिस्पर्धाओं को अलग अलग चैंपियनशिप, अलग अलग प्रतियोगिताओं के हिसाब से अलग अलग वर्ग के खेल को इसमें रखा गया है। जैसे कि चूंकि यह हमारा जो खेल है शूटिंग, यह 1907 में इसकी हमारे फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जबकि 1897 से यह ओलंपिक में खेला जा रहा है, ओलंपिक
5: जी।
6: इसमें मुख्य रूप से पहले जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई, जितने भी खेल मैंने बताए हैं, वो सारे होते थे। बट अभी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं और उसमें क्या हुआ है कि कुछ बाकी सारे वर्ग को हटा करके मुख्यतः सारे कैटेगरीज में से एक दो इवेंट्स को ही सिर्फ ओलंपिक में जगह दिया गया है। जैसे कि पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल मेन, 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन। ये चार कैटेगरीज हमारी पिस्टल में है, और राइफल में 10 मीटर एयर राइफल मेन, 10 मीटर एयर राइफल वुमेन
5: जी,
6: 50 मीटर थ्री पोजिशन मेन, 50 मीटर थ्री पोजिशन वुमेन
5: जी।
6: ये हमारी राइफल की चार कैटेगरीज हैं जो कि हम ओलंपिक में खेलते हैं। और शॉर्ट गन में हमारे ट्रैप है, ट्रैप मेन एंड ट्रैप वुमेन
5: जी,
6: स्किट मेन एंड स्किट वुमेन
5: जी। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, आपने ओलंपिक की बात की, और जब हम निशानेबाजी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम जान पाते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों पे या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर खेल हो रहा है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि निशानेबाजी में ये प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो आपने जैसे 10 मीटर के बारे में बताया, एंड देन 25 मीटर के बारे में आपने बताया, फिर आपने ट्रैप के बारे में बताया, ऐसा इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करना होता है, या जो और भी प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या करना होता है, उनका नाम के साथ आप बता दें।
6: सर देखिए, 10 मीटर प्रतियोगिता जो है ये मात्र इवेंट हमारी है
5: जी,
6: जिसमें कि मदर इवेंट हम इसको कहते हैं। बेसिक सारी यहीं से स्टार्ट होती है
5: जी,
6: और जनरली जो भी शूटिंग स्टार्ट करता है वो 10 मीटर पिस्टल या 10 मीटर राइफल से ही स्टार्ट करता है
5: जी।
6: और इसमें होता क्या है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में हमारी दूरी जो होती है वो हमारे हमसे 10 मीटर दूरी पे टारगेट को रखा जाता है। जो एयर पिस्टल में जो टारगेट जिसे हम जिस लक्ष्य को हमें भेदना होता है वो 0.5 मिलीमीटर के लिए हम उस लक्ष्य को भेजते हैं, वो अच्छा। होता है, और राइफल में 0.1 मिलीमीटर पे हमारा टारगेट होता है
5: जी।
6: उस टारगेट को हमें 1 घंटे 15 मिनट में 60 बार एक ही जगह पे हिट करना होता है, उसका अभ्यास हम करते हैं
5: जी।
6: ये एयर पिस्टल का हो गया। ऐसे ही 25 मीटर में दूरी 25 मीटर हो जाती है, जो हमारा कैलिबर है, जो हमारा एम्यूनिशन का कैलिबर है वो चेंज हो जाता है। एयर पिस्टल में 0.177 बोर का कैलिबर का हम लोग यूज करते हैं पैलेट्स, और 25 मीटर पिस्टल में 0.22 बोर का एम्यूनिशन हम लोग यूज करते हैं, जिसकी की मारक क्षमता ज्यादा होती है, तो और उसकी दूरी भी 25 मीटर हो जाती है, और इसमें आपके जो शस्त्र हैं वो भी बदल जाते हैं
5: जी,
6: वो अलग तरीके के शस्त्र हो जाते हैं। इसमें हम लोग मैगजीन भी यूज करते हैं इस इवेंट में
5: जी।
6: और इसके जो टारगेट होते हैं इसमें हम लोग 0.5 mm से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का हमारा लक्ष्य होता है, जिसे कि हमें इसकी टाइमिंग अलग होती है, इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें हमें उसको भेदना होता है
5: जी
6: जी। और ट्रैप शूटिंग बेसिकली सर ये आउटडोर शूटिंग है जी। जनरली हम लोग अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ओलंपिक्स या बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें जो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड होता है या जो भी हमारा फाइनल राउंड होता है, जनरली ये इंडोर खेला जाता है, 10 मीटर 25 मीटर एंड 50 मीटर
5: जी।
6: लेकिन जो ट्रैप है ये प्रॉपर हमारा आउटसाइड गेम है। और इसमें क्या होता है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, एक ट्रैप होता है, एक डबल ट्रैप होता है। पहले दोनों कंसीडर किए जाते थे, बट अभी रिसेंट चेंजेस हुए, डबल ट्रैप को हमारे बाकी सभी चैंपियनशिप से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और इवेंचुअली अभी कुछ दिनों के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर से ये नेशनल में भी ये हमारा डबल ट्रैप इवेंट नहीं रहेगा। बट ट्रैप में दो इवेंट फिलहाल खेले जाते हैं, ट्रैप और डबल ट्रैप
5: जी।
6: ट्रैप और डबल ट्रैप में बेसिक डिफरेंस ये है कि हम ट्रैप में हमें दो शॉट मिलते हैं एक टारगेट को हिट करने के लिए। जो हमारी क्ले बर्ड्स होती हैं वो एक मशीन के थ्रू एक निश्चित स्पीड में एक निश्चित दिशा में वो जाती हैं, और जिनकी दूरी मतलब टारगेट हम जहां तक अचीव कर सकते हैं वो लमसम 30 से 40 मीटर 50 मीटर इस तरह से तक हम उसको चेज कर सकते हैं। और डबल ट्रैप में क्या होता है कि हमें दो टारगेट को हिट करना होता है, दो शॉट मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रैप और डबल ट्रैप में। ये गेम क्या होता है, इसमें हम शॉटगन यूज करते हैं इसको खेलने के लिए। इसमें 5 प्लेटफॉर्म बने होते हैं
5: जी,
6: बेसिकली होते 6 प्लेटफॉर्म है, 5 हमारे फ्रंट पे होते हैं, और जो 6वां प्लेटफॉर्म होता है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जस्ट बिहाइंड पीछे होता है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें एक साथ में इसमें 6 लोग प्रतिभाग करते हैं, और जब हमारा पहला खिलाड़ी शूट करेगा तो वो अपने प्लेटफॉर्म से हट करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और जो 6वां प्लेयर रहेगा वो पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसी तरह से रोटेशन होता रहता है, और हमें हर एक प्लेटफॉर्म से, मतलब 5 प्लेटफॉर्म से फायरिंग करनी होती है, 6वां प्लेटफॉर्म हमारा वेटिंग एरिया होता है
5: जी,
6: और 5 अलग अलग जगह से खड़े होकर के हमें शॉट लेना होता है, टारगेट को हिट करना होता है। और डबल ट्रैप में भी सेम प्रोसेस होता है, बस उसमें हमें 2 चांस मिलते हैं ट्रैप में, और इसमें हमें 2 शॉट के लिए 2 टारगेट होते हैं
5: जी।
6: तो ये हमारा ट्रैप और डबल ट्रैप हो गया।
5: तो आपने जो कॉम्पिटिशन्स बताए, जो भी प्रतिस्पर्धाएं आपने बताई हैं, उसमें आपने बताया कि 10 मीटर मेल के लिए होता है और 10 मीटर फीमेल के लिए होता है, विमेन का जो होता है कैटेगरी होता है। अच्छा, लगाना तो सिर्फ निशाना ही है, तो फिर 2 कैटेगरी क्यों रखी गई है? क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा मस्कुलिन पावर यूज होना नहीं है, तो महिलाओं में और पुरुषों में ये अलगाव क्यों किया गया है, इसके बारे में बता दें।
6: सर, बेसिकली ये डिफरेंस बहुत सारी चीजों को देखते हुए किया गया है, जैसे कि जो हमारी महिलाओं का क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो हम लोगों से कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। चूंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा, मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो यूज होती ही है
5: जी,
6: और पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि थोड़ा सा गर्ल्स को, जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको इसमें मोटिवेट करें, ज्यादा मौका मिल पाए और उनकी एक अलग कैटेगरी हो, तो इसमें हमारा एक मिक्स इवेंट भी कराया जाता है जिसमें कि दोनों साथ में खेलते हैं, साथ में रिजल्ट बनता है, साथ में हम उनका मेडल लेते हैं, तो ये भी है हमारे यहाँ है। बट चूंकि हर जगह पे ऐसा है, इस वजह से इस गेम में भी मेल फीमेल का वो किया गया
5: जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा मैं कि एक सफल शूटर बनने के लिए किस किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरनी पड़ती है?
6: सर, सफल शूटर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप सही समय पे और सही जगह पे ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी ट्रेनिंग लेना, और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग को, मतलब शुरू में बहुत प्रॉपर टाइम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट बाद में वो जा करके उस चीज को फिर एज अ हॉबी ट्रीट करने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। शूटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले शूटिंग खेल के बारे में जाने, अन्यथा इसकी सिर्फ खूबसूरती को और इसमें सिर्फ इसके, मतलब अच्छी चीजों को, जैसे हमें फिल्मों में शूटिंग होती है उस तरह से कुछ इमेजिन करके ना जाएं, क्योंकि यह इस गेम में पूरी तरीके से आपकी सभी चीजों का परीक्षा होता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, और चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गेम में नहीं चाहते हुए भी इतना आप इकोनॉमिकल, ये गेम नहीं है, आपको उस तरह से माइंडसेट बना करके इस गेम को स्टार्ट करना चाहिए, और एक अच्छे कोच, एक अच्छे गाइडेंस में अगर आप करेंगे तो बेहतर करेंगे आप और अच्छा करेंगे
5: जी। अच्छा, जो युवा इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है?
6: जो भी युवा इस खेल को खेलना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी सरकारी क्लब या किसी भी एकेडमी पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, या किसी भी सीनियर खिलाड़ी से वो मिल सकते हैं, किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें बहुत ही मामूली प्रक्रिया होती है, जिसमें कि हम एक फॉर्म हमारा होता है एसोसिएशन का, उसे हमें फिलअप करना होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब हम वहाँ रजिस्टर करते हैं खुद को तो वो 600 रुपये उसकी उसका शुल्क होता है, 590 रुपये, उसे हम फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे 2 एसोसिएशन है, एक स्टेट एसोसिएशन है और एक मेरा नेशनल एसोसिएशन है, दोनों जगह आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद जितने भी कंपटीशन आते हैं, तो जब आप जिस पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पोर्टल पे उन सारे कंपटीशंस की सूची दी जाती है कि कब कौन सा कंपटीशन होने वाला है, और उसके बाद उसमें आप जिस भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसमें आप अपनी एंट्री कर करके और आप सीधे जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं
5: जी। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप जो निशानेबाजी जो खेल है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
6: मैं सभी श्रोताओं से निशानेबाजी के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग भी निशानेबाजी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं या खेलते हैं, आप सभी लोग इस गेम को सिर्फ इसलिए ना खेलें कि हमें इंटरनेशनल ओलंपिक या इस तरह से खेलना है, इसके बहुत सारे और भी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है। जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे जाकर रुक जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो एक मन में ये होता है कि हमने ये गेम क्यों चुना या अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बेसिक समस्या आती है। और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ये समस्याएं आती हैं आगे चल के, जो भी युवा हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके, अब हमारी जो शूटिंग है ये एक पीएसजी एस एस एच डी कोर्स में भी इसका इसमें आप उपयोगिता है, और ये कोर्स एज अ मतलब आप कर सकते हैं, इससे पीएचडी कर सकते हैं, और दूसरा मतलब इससे आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, आप ज्यूरी बन सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप बहुत सारे इसमें बहुत स्कोप है
5: जी।
6: तो आप अगर एज अ खिलाड़ी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका अदर सेगमेंट में जाकर के उसमें अपना करियर बना सकते हैं
5: जी। सत्यम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निशानेबाजी से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
4: अभी आप सुन रहे थे शूटिंग खेल में चुनौतियां और संभावनाएं। इस विषय पर राष्ट्र स्तरीय निशानेबाज व कोच सत्यम सिंह से चंदन सिंह की बातचीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है क्या है रेस वॉकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से बातचीत की है चंदन सिंह ने।
5: श्रोताओं, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर मुक्केबाजी की रिंग हो या फिर एथलेटिक्स का ट्रैक, खेल सिर्फ हमारी शारीरिक परीक्षा ही नहीं लेते हैं बल्कि हमारे अनुशासन की भी परीक्षा लेते हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रतिस्पर्धा की, जहां पे सख्त नियमों के अंदर ही आपको अपनी गति और अपने संतुलन का परिचय देना होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा की। तो क्या है रेस वॉकिंग और क्या कुछ है इसमें, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रानी यादव जी। आप अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका।
7: नमस्कार सभी को मेरा। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने ऐसा मंच हमको दिया
5: जी। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं, आप रेस वॉकिंग को अपने करियर अपना कैसे बनाया।
7: पहले तो मेरा स्टार्टिंग गेम जो था वो हैंडबॉल था, और हम लोगों का स्टार्टिंग स्पोर्ट्स का स्कूल से स्टार्ट हुआ। वहाँ हमारी गेम टीचर थी, अब नहीं है हम लोगों के बीच में, तो वो हम लोगों को हर गेम के लिए लेकर के जाते थे। तो पहले हमें पता नहीं था एथलेटिक्स में कितने इवेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें दिन प्रतिदिन हम लोगों ने अच्छा भी किया, प्लस उसके साथ साथ अपनी जागरूकता को भी इंक्रीज किया कि इवेंट है तो कैसे है, कैसे होता है, कहाँ होता है, और

0: चूंकि हम लोग स्कूल लेवल पे जब खेलते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें ओपन टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं, कहाँ जाना है, कैसे एंट्री करानी है, इसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है तो कहाँ जाना है,
1: जी
0: क्योंकि एक स्कूल का लाइन और स्पोर्ट्स का लाइन बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो स्कूल में जब सीजन आता है कि इंटर कॉलेज के नेशनल होने हैं, स्टेट होने हैं, तो आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है, अपने स्कूल के लिए मेडल जीत करके लाना है। लेकिन उसी बीच में कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाते हैं कि मतलब वो ऐसे टाइम पास में भी एक्चुअल खिलाड़ी बन जाते हैं। तो हमने कोई मतलब घर से ऐसा सोच के नहीं किया कि हमें स्पोर्ट्स करना ही है, और जब हम करना भी शुरू कर दिए तो हमें जब मेडल आना शुरू हो गया,
1: जी
0: सन 2000 से हमने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर दिया था। एथलेटिक्स में मैं 2002-2003 के आसपास आई, तो सिग्रा स्टेडियम में हमारे एक सीनियर थे जो ट्रेनिंग किया करते थे, उनको देख करके मतलब हम लोग जब स्टेडियम में जाते तो हैंडबॉल में क्या था कि शूटिंग पासिंग करने के बाद बिठा देते थे साइड पे कि आप गेम देखो, स्किल देखो, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। फिर हमें लगता था यार हम यहाँ आते तो हैं, इतना टाइम देते तो हैं, आके बैठने के लिए तो नहीं आते, तो हमें अपने इस टाइम को भी यूज करना चाहिए। तो एक दिन गए हम, बोले भैया ऐसे ऐसे हम ये इवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको और इवेंट के बारे में नॉलेज नहीं था कि एथलेटिक्स के अंडर में इतने इवेंट आते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट ये हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मतलब इसमें बहुत मेहनत है, कर लोगी? हाँ, मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। तो उस टाइम 116 में 3 किलोमीटर होती थी,
1: जी
0: तो फर्स्ट टाइम मैंने बात करके फिर ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेडल भी आने शुरू हो गए थे। तो पहला मेरा नेशनल में 2004 में मेरा मेडल था।
1: जी यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि आपने रेस वॉकिंग में कौन कौन से कंपटीशन में आपने भाग लिया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, वो भी उसके बारे में बता दें आप।
0: मैंने 2004 से लेकर के 2008 तक जूनियर कंपटीशन जितने भी होते थे, एक साल में 3 से 4 कंपटीशन होते हैं, तो वो 2004 से लेके 2008 तक सारे कंपटीशन में मेरे गोल्ड थे। 2008, 9, 10 कंटिन्यूअस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं,
1: जी
0: और मेरी एजुकेशन इधर विद्यापीठ से थी। प्लस उसके साथ 2009 में सीनियर नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट
1: जी
0: हुई मैं। तो मेरा मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी किसी हॉस्टल और किसी बड़े कोच के उससे नहीं था, अपना मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, देखते गए जहाँ ट्रेनिंग अच्छा होता गया। तो सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिला सीनियर्स का इसलिए कि वो लोग ट्रेनिंग करते थे, उनसे अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, हम लोग बात करते थे, तो वो मतलब जो जूनियर बच्चे उनके पास थे या जूनियर बच्चे ट्रेनिंग करते थे, तो उनके साथ हमें भी जगह देते
1: जी
0: थे कि चलो करने में इंटरेस्टेड है लड़की, तो उसको भी जगह देना है इधर करने के लिए। तो उसका बेनिफिट यह होता था ना कि एक लड़के के साथ अगर आप प्रैक्टिस कॉम्पीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा होगा।
1: जी
0: 2010 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में 6th पोजीशन था, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप भी मैंने पार्टिसिपेट किया, रशिया में, जापान में, चाइना में। बाकी सीनियर जूनियर के मिला करके लगभग 45-50 के एवम में मेडल होंगे हमारे।
1: जी अच्छा, हम एथलेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो एथलेटिक्स में विभिन्न तरह के कंपटीशंस हैं, अलग अलग तरह की प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसमें रनिंग आ जाता है, फिर और भी तरह के इवेंट्स होते हैं। तो ये रेस वॉकिंग जो होता है ये रनिंग से कितना अलग है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: पहले तो वॉकिंग रेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या,
1: जी
0: और वो भी एक मतलब रनिंग टाइप सा ही है, लेकिन उसमें रनिंग में और वॉकिंग में इतना अंतर है। जैसे कि रनिंग जो करते हैं हम टो पे करते हैं, और जो वॉकिंग करते हैं हम हील बॉल टो करते हैं, मतलब वो इसकी लैंडिंग होती है कि हील पहले लगाएंगे फिर बॉल से टो होते हुए, ये ऐसे चलता रहता है।
1: जी
0: इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वॉकिंग करने के टाइम में एक पैर हमेशा ग्राउंड के टच में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, अगर वो ग्राउंड का टच छोड़ता है तो

0: कि आप रनिंग कर रहे हो,
1: अच्छा
0: तो ये अंतर होता है। स्पीड वैसी ही होती है क्योंकि भाई रनर भी ट्रेनिंग कर रहा है और वॉकर भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो जब किसी चीज पे हम अभ्यासरत रहते हैं तो वो बढ़ती है, घटती तो है नहीं।
1: अच्छा जी अच्छा, इसके नियम भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें जल्दी जल्दी में कि जो रेस वॉकिंग कंपटीशन है इसके क्या क्या नियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: इसमें ये है कि जैसे कि नी बैंड नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से फॉल होता है। अगर रेस हो रहा है तो इसके टेक्निकल जज होते हैं जो देखते हैं। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो रनिंग कर रहा है कि वॉकिंग कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्लियरली भी रनिंग करते हैं वो तो एक आम जनता पकड़ सकती है, लेकिन जो इसका टेक्निकल पॉइंट होता है वो टेक्निकल जज ही देख सकते हैं। तो इसका भी एक होता है कि आपको जोन बना देते हैं, पेनाल्टी जोन, वो स्टार्टिंग लाइन से 70 मीटर पीछे होता है। और उसमें जैसे कि 3 रेड कार्ड जब आ जाता है एक खिलाड़ी को, तो उसको जितना ड्यूरेशन होगा, जैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड या 1.5 मिनट, तो उस हिसाब से उसको उतनी देर तक के लिए उस बॉक्स में खड़ा कर दिया जाता है। और
1: अच्छा
0: उसका एग्जिट पॉइंट भी बना होता है, उसको इधर उधर से कहीं से भी नहीं कि आ गए और कहीं से भी चले गए, एक प्रॉपर उसका पाथवे बनाया होता है, वहां से ही जाना है और उधर से ही निकलना है। तो जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है, चीफ जज उधर से सिग्नल देता है, फिर खिलाड़ी निकल के फिर शुरू कर देता है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि रेस कर रहे हैं और ट्रैक में ही आपको वार्निंग मिलती थी, और उसके बाद अगर 3 वार्निंग आ गई तो डिस्क्वालिफाई हो जाता था बंदा। अब चांस मिलता है खिलाड़ी को।
1: अच्छा, ये जब किसी को चेतावनी दी जाती है तो क्या ये संभव है कि ये मान लेना चाहिए कि वो खिलाड़ी जो है वो चेतावनी देने के बाद जब वहां पे इतनी देर तक वो खड़े रहेगा तो उसके बाद वो जीत नहीं सकता है।
0: नहीं, अभी जैसे एकाएक चेतावनी तो देते नहीं है, जैसे उसको कॉशन दिखाएंगे, नी बैंड का दिखाएंगे, या जो भी फॉल्ट हो रहा है उसका पहले कॉशन दिखाएंगे, तुरंत दिखा करके नहीं करते। जैसे येलो कार्ड देंगे, 2 येलो कार्ड के बाद एक रेड कार्ड देते हैं, तो वो जब 3 रेड कार्ड आता है तब उसको पेनाल्टी जोन में जाना पड़ता है।
1: अच्छा
0: और उसमें भी जो पेनाल्टी जोन में आ गए वो तो खिलाड़ी के जीवन पंती पे है। जैसे कभी कभी कोई खिलाड़ी गिर के भी उठ के अच्छा चलता है, तो वैसे ही कभी कभी लीड पे है प्लेयर, 1 राउंड की लीड दिया हुआ है सेकंड वाले को, तो ज्यादा से ज्यादा आधे घर राउंड का लीड कवर हो जाता है, आधे का बचा रहता है, तो वो आधे पर से भी रेस को कंप्लीट करता है। और कोई कोई खिलाड़ी होते हैं नर्वस हो के वहीं रेस भी छोड़ देते हैं कि अब तो बहुत पीछे हो गए।
1: अच्छा, ये जो रेस वॉकिंग जो प्रतिस्पर्धा है इसके लिए रोजाना क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या दिनचर्या होती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएं।
0: अगर इसके ट्रेनिंग के पर्पज से आप जाएंगे तो ट्रेनिंग तो इसकी कम से कम, अगर आप 42 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं या 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का टारगेट रख के चल रहे हैं तो ऑब्वियस जो भी कोच होता है वो 20 किलोमीटर का टारगेट रख के चलता है प्रैक्टिस में। और ये नहीं है कि सुबह शाम केवल 20 किलोमीटर भगा रहे हैं, उसका हफ्ते भर का एक शेड्यूल होता है, और पूरे हफ्ते भर में हमको लग रहा है कि 10 किलोमीटर वाले को 200 से 250 किलोमीटर का एवरेज निकाल देते हैं एक पीक पे रेस भागने के लिए। एथलीट को इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि ये नहीं है कि 10 किलोमीटर है तो हम उसको एवरेज कम कराएंगे या डिस्टेंस 10 किलोमीटर के हिसाब से कराएंगे। अगर 10 किलोमीटर हमें भगाना है एथलीट को एक टॉप लेवल पे, तो उसके लिए 250-300, अब जैसा वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं ऑफ सीजन से लेके फुल सीजन और कॉम्पिटिशन पीरियड, मतलब पूरे 1 साल का वो उस हिसाब से प्रोग्राम अपना बना करके कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, उसी में हमारी पावर ट्रेनिंग होती है, रिहैब होता है, मसाज होता है, सोना बात होता है, तो हमको विदाउट ट्रेनिंग ब्रेक किए हुए ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं।
1: जी
0: तो जैसे 5 सेशन ट्रेनिंग हो गई, मंडे मॉर्निंग इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग इवनिंग, फिर वेनेसडे मॉर्निंग, और वेनेसडे इवनिंग में रेस्ट देंगे, क्योंकि 5 सेशन के बाद बॉडी में इतनी फटीक हो जाती है कि उसको एक रेस्ट चाहिए ही चाहिए।
1: जी चलते चलते हमारे जो युवा खिलाड़ी रेस वॉकिंग कर रहे हैं और उसमें अपना करियर तलाश रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी।

0: जब ट्रेनिंग एज होती है, बायोलॉजिकल एज नहीं बता रही हूँ, ट्रेनिंग एज, जब इतना अगर आप कंटिन्यूअस ईमानदारी से कर रहे हैं तो 8 साल 9 साल जा करके आप नेशनल में बेस्ट ऑफ 4 में, बेस्ट ऑफ 3 में, बेस्ट ऑफ 2 में घुसना शुरू कर देते हैं।
1: रानी यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और रेस वॉकिंग से संबंधित इतनी सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर रानी यादव से चंदन सिंह की ये बातचीत अभी आप सुन रहे थे, जिसका विषय था क्या है रेस वॉकिंग। इसी के साथ कार्यक्रम खेल दर्पण संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में वाचन आकांक्षा सिंह का था, संपादन और प्रस्तुति चंदन सिंह।
3: राज्य स्तरीय प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत है येसुदास और हेमलता की युगल आवाजों में, जिसे हमने लिया है चितचोर फिल्म से। गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारुख अली खान फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा ने। तहसील रोड गंज डुंडवारा से के अचराही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्मा जमील ने। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी ने। गांव फरासी जिला हिसार से गीत सुनना चाहते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट से मोहम्मद वक्काल फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। नरेंद्र मेहता, सुनीता मेहता, हनी मेहता, सिमरन मेहता और प्रेमलता मेहता गीत सुनना चाहते हैं बुढ़लाडा पंजाब से। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत येसुदास और हेमलता की युगल आवाजों में चितचोर फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा ने। जिला अमरोहा पतेई खालसा से गीत सुनना चाहते हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, अफ़ान सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी। भोपालगढ़ राजस्थान से गीत सुनना चाहा है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। दीदा रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद असलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान ने। असालतपुरा मुरादाबाद से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी। कांठ रोड लदावली से गीत सुनना चाहते हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से गीत सुनना चाहते हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, शायना, महवश और मोहम्मद अफ़ान। परिमहल कासगंज से गीत सुनना चाहते हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और इनके सभी साथी। मीर सराय बदायूं से गीत सुनना चाहते हैं आफरीन खान और जमीर खान। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में कालीचरण फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में राम और श्याम फिल्म से। गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह ने। गंज डुंडवारा से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और शमशुल यासीन। बीजना मुरादाबाद से गीत सुनना चाहते हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से गीत सुनना चाहते हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नागदेव। वडिंगखेड़ा से गीत सुनना चाहते हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आजादनगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। स्वर्ण सिंह गांव दोलेवाला जिला मोगा पंजाब से गीत सुनना चाहते हैं, इन्होंने हमारे श्रोता ने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन पता लिखा है तो हम इनकी फरमाइश भी शामिल कर लेते हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से गीत सुनना चाहते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा और मैंडी शर्मा। असालतपुरा मुरादाबाद से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी, रिया, रेणु और रोनिका यादव ने। कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। राही नगर गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और ताबिश खान ने। कोली नांदेड़ से गीत सुनना चाहते हैं नारायण गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और साई गायकवाड़। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से गीत सुनना चाहते हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहाम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी। कोठागुडेम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से गीत सुनना चाहा है राकेश खन्ना, चाइना पासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना और अमित खन्ना ने। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से गीत सुनना चाहते हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में कल आज और कल फिल्म से।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और इनके सभी साथियों ने। चंडीगढ़ से गीत सुनना चाहते हैं राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु, रिधान और इनके सभी साथी। बठिंडा रोड मंडी डबोवाली से गीत सुनना चाहते हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनके सभी परिवार वाले। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से गीत सुनना चाहते हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना बिंदल, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में शर्मीली फिल्म से।

शर्मीली फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said, The Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
4: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
3: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in the areas of security, connectivity and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from August 31 to September 1. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the progress of Watershed Development Component, WDC, PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification and sustainable agricultural practices, among others. During review of WDC PMKSY, the Agriculture Minister called upon the states to ensure speedy implementation of projects and clear and measurable outcomes at the grassroots level. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to student protests mentioned in applications filed by the Center, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The Apex Court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present in the Jantar Mantar protest as they had serious criminal antecedents. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has crossed 1,000, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. And that is the end of this news bulletin.
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

हुए हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।